0: 102.8 FM पर यह विविध भारती का मुंबई केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से होगी। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से गणना सुबह 8:30 बजे शुरू होगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। निर्वाचन आयोग ने सुव्यवस्थित मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। ये मतगणना असम की 126, केरलम की 140, तमिलनाडु की 234 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए होगी। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना होगी। फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्य में इस महीने की 21 तारीख को दोबारा वोटिंग होगी और मतगणना 24 मई को की जाएगी।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
3: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
3: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
3: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रिक्वेंसी पर सुनिए।
2: जनादेश 2026।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के क्षेत्रीय

0: के संबंध में कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि ऐसे दावे ना तो उचित हैं और ना ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं। इससे पहले नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल झारखंड के रांची में उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से न्यायिक व्यवस्था में चुनौतियों, सुधारों और अधिवक्ताओं की भूमिका पर चर्चा की। इस दौरान श्री मेघवाल ने अधिवक्ताओं से न्याय प्रणाली को सुलभ और सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। इसके बाद उन्होंने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला के समापन समारोह में भाग लेकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। होर्मुज की खाड़ी में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ और असंबद्ध देश प्रभावित हुए हैं और अमरीका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने में सहयोग करेगा। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका सहमत होता नहीं दिखता है। ईरान सरकार के प्रवक्ता इस्माइल बागेई ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिकी प्रत्युत्तर की समीक्षा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की मीडिया से कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत में कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। आइए सुने भक्ति संगीत।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको जानकारी दे दें विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर बाद 6:35 से आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 178। 6:45 से आप सुनेंगे संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आज आप इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी सुन सकेंगे और यही कार्यक्रम आप संध्या 6:45 पर भी सुन सकेंगे। 7 से आनंद लीजिए भूले बिसरे गीतों का और 7:30 से हम लाएंगे हम है राही प्यार के। 8 का समय रहेगा समाचारों के लिए। त्रिवेणी कार्यक्रम का प्रसारण समय है 8:15 से और 8:30 से आपके लिए प्रसारित होगा कार्यक्रम चित्रलोक। पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी पर केंद्रित होगा कार्यक्रम आज के फनकार आप सुन सकेंगे 9:30 से। 10:00 पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के। इसके अंतर्गत आपको सुनवाएंगे निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। 11:00 कार्यक्रम का आनंद लीजिए 11:00 से और 12:00 आप सुनेंगे समाचार। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 2 पर सुरीला सफर प्रसारित होगा दिन में 1:00 से और 2:00 से कार्यक्रम त्रिवेणी। दोपहर 2:15 का समय रहेगा समाचारों के लिए। 2:30 से लुत्फ उठाइए गुजरे जमाने के सदाबहार नगमों का और 3:00 का समय रहेगा आपका चहेते कार्यक्रम सखी सहेली का।

चार बजे और आज के पिटारा में होगा सेहतनामा। आप सुनेंगे त्वचा रोग और उपचार, डॉक्टर जी एस मूर्ति से बातचीत। त्वचा रोग के बारे में वो बताएंगे और उसके उपचार के बारे में बातचीत की जाएगी। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छाया गीत आप सुनेंगे 5 बजे से और 5:30 से तराने नए पुराने। 6 बजे का समय रहेगा समाचारों के लिए और 6:05 से कार्यक्रम तराने नए पुराने का शेष भाग। संध्या रंजन कार्यक्रम होगा 6:35 से। जयमाला कार्यक्रम का प्रसारण होगा संध्या 7 बजे से और 7:45 से इंद्रधनुष में आज होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कोरा चेक, जी हाँ साथियों, ये नाटिका है जिसे आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत। लेखक हैं डॉक्टर चंद्रकांत डी पटेल, निर्देशक पुरुषोत्तम दारवेकर। रात्रि 8:15 से कार्यक्रम प्रसारित होगा चित्रलोक और 8:45 से समाचार। आपके लिए कार्यक्रम का प्रसारण रात्रि 9 बजे से और 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम सुनिए, जो केंद्रित होगा पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी पर। रात्रि 10 बजे से छाया गीत और 10:30 से ढलती जाए रात। तो अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के झरोखा के अंतर्गत जानकारी। लीजिए अब सुनिए रामचरितमानस का भाग 178।

चित्रकूट के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा चर अचर प्राणियों के भाग्य से देवताओं को ईर्ष्या तो होती है, किंतु वे उनका जय जयकार करते हैं, उन्हें धन्य मानते हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ श्री राम और सीता जी लक्ष्मण के साथ आकर रहे, उस स्थल की शोभा का बखान तो हजार मुंह वाले भी नहीं कर सकते। फिर भला कवि की वाणी की क्या बिसात। चित्रकूट प्रवास में श्री राम का स्नेह पाकर लक्ष्मण को अन्य आत्मियों के स्वप्न में भी याद नहीं आती। सीता जी भी घर द्वार भूलकर बहुत सुखी हैं, मानो राम रूपी चंद्रमा को देख देख कर चकोरी का प्रेम दिन दूना बढ़ता जा रहा है। पर्णकुटी प्रिय लगती है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का भाग 178। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। महिला रचनाकारों की बंदिशें इस श्रृंखला को लेकर आज हम फिर उपस्थित हैं। इसकी दूसरी कड़ी आज प्रस्तुत है। कल्पना जी और अनुजा जी एक बार फिर से विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी, यति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो इस कड़ी को शुरू करने से पहले कल्पना जी, हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन सा समय था, वो कौन सी बाध्यता हुई कि महिला रचनाकारों की बंदिशें बनाई जाने लगी, क्यों आवश्यकता पड़ी?
2: बहुत पहले जब गुरु शिष्य परंपरा में तालीम दी जाती थी
1: जी,
2: उस समय घरानों का बहुत बंधन था और गुरु ने सिखाई हुई और उनके घराने की बंदिशों को ही गाया जाए, ये एक नियम था और उसके लिए प्रतिबद्ध थे गायक भी और गुरु भी शिष्य भी।
1: जी जी।
2: तो उस समय उतनी आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई क्योंकि वो विचार ही ऐसा था कि जो गुरु ने सिखाया वो शिष्य गाएं।
1: जी।
2: लेकिन जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता गया, सोच में परिवर्तन हो गया, गायकी में भी कुछ बदलाव आना शुरू हुए। हर कलाकार की जो अपनी एक विशिष्ट सोच है, गायकी है, जो उनके मनन चिंतन द्वारा जो वो अर्जित करते हैं उसे एक अलग स्वरूप देने की भी कोशिश होती है। कुछ अलग अलग घरानों या कलाकारों का भी उनकी गायकी पर असर होता है, जो उनको अपने हिसाब से उस गायकी को पेश करने की आवश्यकता या इच्छा महसूस हुई होगी और तभी इस रचनाकार या बंदिशकार के स्वरूप में जो बदलाव आया। और पुरुष स्वर तो हम सुनते ही हमेशा कि वो लोग तो हमेशा ही बंदिशें बनाते आ रहे हैं, लेकिन महिलाओं को भी अपने मन की इच्छा या अपनी गायकी या मधुरता उसके हिसाब से उनको भी कुछ बंदिशों में ऐसा लगा होगा। कुछ साहित्य भी ऐसा होता था पहले
1: जी,
2: कि जो पुरुष प्रधान गायकी भी थी और शब्दों में भी पुरुषों की जो भावना
1: था उनका ही
2: जी। तो उस हिसाब से महिलाओं को भी ये अंदर से महसूस हुआ कि हमें भी कुछ रचनाएं बनाना चाहिए
1: और उनको भी आजादी मिली इस बात
2: जी
1: की।
2: आजादी भी और अपने हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से, उस राग की आवश्यकता के हिसाब से वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर सके
1: जी। तो आज की इस कड़ी में क्या डॉक्टर प्रभा अत्रे की चर्चा करना चाहेंगी?
2: जी जी जरूर। डॉक्टर प्रभा अत्रे एक बहुत ही परिचित नाम है संगीत के क्षेत्र में
1: जी।
2: आपने गुरु शिष्य परंपरा में किराना घराने की तालीम पंडित सुरेश बाबू माने और श्रीमती हीराबाई बड़ोदेकर जी से प्राप्त की। उस्ताद अमीर खान साहब की गायकी का प्रभाव आपकी गायकी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, खास करके सरगम का बहुत अच्छा प्रयोगशील उपयोग करके अपनी गायकी को उन्होंने समृद्ध किया है। आपकी गायकी में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के गायन का भी प्रभाव उनकी ठुमरी गायन में हमें दिखाई देता है
1: जी। तो आज क्या प्रस्तुत करेंगी, कौन सी बंदिश?
2: आज एक प्रभा जी का बनाया हुआ एक तराना पेश करेंगे।
1: अरे वाह।
2: जो कि राग मधुवंती में निबद्ध है
1: जी।
2: तो अब सुनते हैं राग मधुवंती का चलन और उसके बाद प्रभा जी ने बनाया हुआ एक तराना। राग मधुवंती एक बहुत ही सुमधुर राग है। इसकी जाति ऑर्डर संपूर्ण गायन समय दोपहर का करीब 12 से 5 बजे तक के बीच में गा सकते हैं। इस राग में गंधार कोमल एवं मध्यम तीव्र लगता है। इसके आरोह में ऋषभ एवं धैवत वर्ज्य होता है
1: जी।

0: वाह, बहुत सुंदर तराना आपने प्रस्तुत किया। और अब बताइए क्या सुनवाएंगे, कौन सी बंदिश प्रस्तुत करेंगे?
1: वैसे तो प्रभा जी ने कई बंदिशों का निर्माण किया है, लेकिन आज हम उनका बहुप्रचलित राग मारुबिहाग, उसमें हम आपको एक विलंबित ख्याल सुनवाएंगे और एक द्रुत बंदिश।

0: महिला रचनाकारों की बंदिशें इस श्रृंखला की ये थी आज दूसरी कड़ी। कल तीसरी कड़ी के साथ कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: महिला रचनाकारों की बंदिशें, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

श्रोताओं नमस्कार। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हसरत जयपुरी के लिखे गीत से, शंकर जयकिशन की संगीत रचना, मुकेश का स्वर। आइए सुने दीवाना फिल्म का ये गाना।

दीवाना फिल्म का ये गाना था, बड़ा ही मीठा और खूबसूरत सा। जैसे खूबसूरत इस गाने के बोल थे, वैसी ही आवाज़, वैसा ही संगीत। चलिए एक बार फिर हसरत जयपुरी की रचना सुनी जाए। शंकर जयकिशन का ही संगीत है इस गाने में भी, लेकिन इस बार फिल्म भी अलग, आवाज़ भी अलग।

102.8 FM पर ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और कार्यक्रम के बाकी गाने हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद।

हेमंत कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर थे। अनारकली फिल्म का ये गाना आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार सी रामचंद्र ने। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसमें हर गीत अपनी एक अलग कहानी कहता है। आइए सुने अगला गाना क्या कहता है।

लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों के स्वरों में आप सुन रहे थे शैलेंद्र की रचना, सलिल चौधरी का संगीत। फिल्म का नाम था दो बीघा जमीन और यही गाना बना आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप जुड़े रहिए, आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपोर्ट।
1: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

सीता और गीता फिल्म का ये गाना था, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, राहुल देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था। चलिए अब एक बार फिर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों की ओर बढ़ते हैं।

दिल की बातें दिल ही जाने, यही गाना था रूप तेरा मस्ताना फिल्म से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, असद भोपाली के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गाना आपने सुना। फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी। SH बिहारी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार OP नैयर ने। जी हाँ, घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि यहाँ एक छोटा सा अंतराल।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा आनंद बख्शी का लिखा ये गाना हमने लिया था फिल्म पिया का घर से। आवाजें थीं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आगे बढ़े उससे पहले ये संदेश।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।

मोम की गुड़िया फिल्म से ये गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाज़ें थीं। इस गीत को आनंद बख्शी ने ही लिखा था और संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

पाकिजा फिल्म का ये गाना था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर, कैफ भोपाली के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार गुलाम मोहम्मद ने।

0: 102.8 FM पर ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती की जाएगी। शुरुआती रुझान दोपहर तक मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
2: कुछ घंटों में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किस्मत तय होगी। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे राज्य भर में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई। 293 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिन भर आने की उम्मीद है, जबकि फलता निर्वाचन क्षेत्र में इस महीने बाद में पुनः मतदान होगा। राज्य भर की 77 मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल में सीसीटीवी निगरानी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चुनाव अभियान और रिकॉर्ड मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें आज के फैसले पर है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: तमिलनाडु में मतगणना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में हमारे संवाददाता सुशील तिवारी के पास। सुशील, मतगणना के बीच राज्य में सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं?
3: देखिए मुकेश, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और रूट को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु जो है वो राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय जो है प्रदेश है, तो बड़ी संख्या में जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो भी जो बाहरी दायरा है उसके आसपास खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी उत्कंठा है, उनकी इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी जान सकें कि उनके राजनीतिक नेता, उनके नेताओं का क्या भविष्य हो रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचने लगे हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले जो है चेन्नई में जो 3, वैसे तो पूरे राज्य में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन चेन्नई में 3 मतगणना केंद्र है, लॉयला कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी और क्वीन मैरीज कॉलेज। तो हम क्वीन मैरीज कॉलेज के पास थे, वहां जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम थे। लेकिन ये मरीना बीच के पास है, बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं और लोगों में जबरदस्त उत्कंठा है।
1: जी सुशील, ये भी बताइए कि आज जो मतगणना हो रही है उसमें किन किन प्रमुख उम्मीदवारों की साख दांव पर है?
3: देखिए मुकेश, अगर हम बात करें तो डीएमके का जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है एसपीए, उसके जो नेता है वो एमके स्टालिन, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री, भी निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाए, वो कोलाथुर सीट जो कि चेन्नई में ही है

0: वहां से लड़ रहे हैं तो उनके चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें होंगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ई पलानीसामी, वो इडापड्डी जो है सेलम डिस्ट्रिक्ट में है, सेलम जिले में है, वहां से लड़ रहे हैं। और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन जो है वो अविनाशी सीट से लड़ रहे हैं जो की तिरुपुर में है। इसके अलावा अगर अन्य प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो जोसेफ विजय जो है टीवीके पार्टी का उनका तमिल वेत्र कड़गम जो पार्टी है उनके नेता दो सीटों से लड़ रहे हैं, पेरम्बूर जो कि चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में ही है और त्रिची जिले की त्रिची ईस्ट त्रिची पूर्व की जो सीट है वहां से वो दो जगह से लड़ रहे हैं। जो डिप्टी सीएम है उप मुख्यमंत्री है उदयनिधि स्टालिन वो चेपक सीट से लड़ रहे हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण नाम डॉक्टर तमिल ईसाई सौंदरराजन का है जो कि महिलापुर जो चेन्नई की ही सीट है, ये वर्तमान ये पूर्व में तेलंगाना और पुडुचेरी की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो वो भाजपा नेता हैं, वो इस बार चुनाव लड़ रही हैं मैलापुर जो चेन्नई की सीट है वहां से। तो ये महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस बार चुनाव मैदान में हैं, जिनके नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुकेश
1: जी सुशील, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 6 केंद्रों पर मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। केंद्र शासित प्रदेश में 294 उम्मीदवारों की राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में सभी 6 मतगणना केंद्रों पर 17 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की जाएगी। इनमें पुदुचेरी क्षेत्र के 12 निर्वाचन क्षेत्र, कराईकाल के 3 और माहे तथा यानम का एक एक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों की गिनती दूसरे चरण में की जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह लगभग 9:30 बजे तक आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल और डाक मतपत्रों के लिए 35 टेबल स्थापित किए गए हैं। मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण के उपाय लागू हैं। चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी QR कोड आधारित पहचान पत्रों के सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था भी की गई है। पुदुचेरी से विभिन्न एसनाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: और असम में मतगणना से जुड़ी जानकारी के लिए रुख करते हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश जी, राज्य में मतगणना के बीच क्या माहौल देखा जा रहा है?
3: जी, असम में विधानसभा चुनाव के मतगणना कुछ समय पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई है। राज्य में इस बार 85.96% मतदान दर्ज किया है, जो पिछले विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। राज्यभर में 40 मतगणना केंद्रों पर गिनती की जा रही है। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया, जोरहाट में 2-2 तथा दोगांव में 3 मतगणना केंद्र है। पूरी प्रक्रिया पर 126 मतगणना प्रेक्षक कड़ी निगरानी रख रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए लगभग 6000 मतगणना कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। 126 सदस्य असम विधानसभा के लिए कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 64 है। जी
1: राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर केरल में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में आज 293 सीटों की मतगणना हो रही है।
4: जनादेश 2026।
1: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
4: आज सुबह 8:30 बजे से
1: मतगणना की पल पल की खबर,
4: हर सीट की सटीक जानकारी,
1: संवाददाताओं से ताजा हाल
4: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण,
1: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
4: जनादेश 2026।
1: पांच राज्यों की 7 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों की मतगणना भी शुरू हो गई है। ये 7 सीट गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे, दक्षिण महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कुरीडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि यह दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है और दशकों से इस मार्ग से यात्रा जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संदर्भ में नेपाल के विदेश मंत्रालय के सीमा संबंधी दावों के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संबंध में भारत का रुख स्पष्ट है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे दावे न तो न्यायसंगत हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों

0: तथा सबूतों पर आधारित हैं। प्रवक्ता ने कहा कि भारत द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर नेपाल के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। होर्मुज में फंसे जहाजों के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस परियोजना से सैकड़ों जहाजों और लगभग 20,000 नाविकों को सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से तटस्थ देश प्रभावित हुए हैं और अमेरिका इन देशों के जहाजों को प्रतिबंधित जल क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकालने में सहयोग करेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इसके लिए मिसाइल नाशकों 100 से अधिक विमानों और 15,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वालों के लिए सख्ती से निपटा जाएगा। फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने होर्मुज से जहाजों की आवाजाही लगभग बंद कर रखी है। उधर अमरीका ने भी ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। समझौते के लिए ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका सहमत नहीं है। ईरान के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिकी जवाब की समीक्षा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो अपने 14 सूत्री प्रस्ताव पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि योजना का उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना है और इसमें परमाणु मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित मांगों को पूरा नहीं करता। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच युद्ध विराम के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है और इसराइली सेना ने हाल के दिनों में हिजबुल्ला से जुड़े दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच हिजबुल्ला भी इसराइली सैनिकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले जारी रखे हुए है। उधर मध्यस्थों के माध्यम से राजनयिक प्रयास भी जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमन।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रक्षा त्रिवेणी संगम विषय पर 3 दिन की उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संगोष्ठी परिचालन संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन और एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण मंच है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, नतीजे आज, निगाहें बंगाल पर। पत्र के अनुसार मतदान केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, देश की राजनीतिक दिशा तय करेंगे तमिलनाडु बंगाल के चुनाव परिणाम। पत्र के अनुसार जनादेश आज, 5 प्रदेशों में दलों की धड़कनें तेज। हिंदुस्तान ने फलता में पुनर्मतदान शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, निर्वाचन आयोग के इस निर्णय की अनुगूंज पूरे देश में पहुंचनी चाहिए कि बाहुबल के सहारे मतदाताओं को डराने और मतदान को बाधित करने का क्या नतीजा हो सकता है। दिल्ली में एसी से लगी आग में 9 लोगों की मौत पर हिंदुस्तान का शीर्षक है, एसी बना काल, 9 को लील गया। नव भारत टाइम्स के अनुसार बुजुर्ग पेरेंट्स को बचाने अंदर दोबारा गई फिर लौट ना सकी। दैनिक जागरण ने आग का सिलसिला शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, गर्मियां बढ़ते ही घरों, कारखानों और अन्य स्थलों पर आग लगने की घटनाओं का सिलसिला तेज होना इसलिए चिंताजनक है क्योंकि अभी तो तापमान और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण हो रही है। राजस्थान पत्रिका ने नया सवेरा शीर्षक से लिखा है, जब आक्रोश बन गया राष्ट्र संकल्प तो आतंक पर फिर हुआ निर्णायक प्रहार। पहली बार तैनात हुई ऑल वुमन कॉम्बैट टीम ने मोर्चे पर दिखाया जोश, दुनिया को बताया अब और नहीं। ऑपरेशन के बाद सामने आई शौर्य गाथाएं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लिपुलेख पर भारत की नेपाल को 2-2। पत्र के अनुसार विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए एक तरफा और अनुचित बताया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब हर तरह के मौसम में धरती के कोने कोने पर भारत रख

0: देखेगा दृष्टि। दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि कैलिफोर्निया से हुआ लॉन्च। चीन पाक सहित हर देश की छोटी बड़ी गतिविधि की होगी निगरानी। देशबंधु के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बोले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंतोनियो गुतरश, तमाम तरह की स्वतंत्रता प्रेस की आजादी पर टिकी, इसके बिना ना तो मानवाधिकार संभव है ना ही शांति। पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम, पश्चिम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों की भी मतगणना जारी। भारत ने लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति खारिज करते हुए इसे अनुचित बताया। मौसम विभाग ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत में आज गरज चमक के साथ वर्षा और ओले पड़ने का अनुमान जताया। अमरीका हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आमतौर पर हम लोग मकान और घर को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ी गहराई से सोचें तो ईंट पत्थरों से बना निवास मकान होता है, और उससे जब हमारी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, भावनाएं जुड़ जाती हैं, आशा आकांक्षा और यादें जुड़ जाती हैं, तब वही मकान हमारा घर बन जाता है। और हर किसी की हसरत होती है कि जिसे हम बेहद चाहते हों, पसंद करते हों, उसके घर के निकट अपना भी घर हो।

जब हम अपने मकान को अपना घर बनाते हैं तो अपने पसंद की हर छोटी बड़ी चीज़ों से उसे सजाते हैं, फर्नीचर हो, पर्दे हों या दीवारों पर तस्वीरें और पेंटिंग्स। घर का हर कोना, घर की हर चीज़ जैसे हमसे हौले हौले गुफ्तगु करती मालूम होती है। इस गुफ्तगु को कोई भी सुन सकता है, बशर्ते उसके पास मोहब्बत में धड़कता दिल और प्यारी सी नज़र हो।

प्यार का सूरज प्यार का चंदा प्यार के दिन और रातें प्यार का सूरज प्यार का चंदा प्यार के दिन और रातें प्यार का अंगना।

छोटी छोटी आशाएं हैं, छोटे छोटे सपने। छोटी छोटी

0: रंग हजार, मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। नजर लगे ना दुनिया की, यूं ही हंसती रहे बाहर, मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार, छोटा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार।
1: दोस्तों, घर भी हमसे अपेक्षा रखता है कि हम घर में प्यार और सद्भावना की सुगंध फैलाते रहें। हम खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे तो घर की दरों दीवारें भी मुस्कुरा उठेंगी और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी, है ना? आज त्रिवेणी का ये सफ़र आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

102.8 FM पर ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 8:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे राष्ट्रीय मराठी समाचार।

भानु मलिक का म्यूजिक था। जावेद अख्तर ने इस गाने को लिखा था। अभिजीत, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे मैं हूं ना फिल्म का गाना। चलिए संकेत हो गया कि इस कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल हो जाए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: कियन का फिल्म से ये गाना था। ढेर सारी आवाजें शामिल थीं इस गाने में, मीत ब्रदर्स फेट, जयज धामी, अदिति सिंह शर्मा और यो यो हनी सिंह।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम

बड़ा ही मीठा सा ये गाना था, मोनाली ठाकुर की आवाज़, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत और फिल्म का नाम था लुटेरा। साथियों, अपनी ज़िंदगी में गीत संगीत का साथ हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि ये हमेशा ही खुशी और सुकून देने वाले होते हैं। प्रीतम का म्यूजिक है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अरिजीत सिंह की आवाज़।

तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तो गीत संगीत को अपना साथी बना लीजिए। बहरहाल ऐ दिल है मुश्किल फिल्म का ये गाना था और अरिजीत सिंह की आवाज। जी हाँ, संकेत मिल चुका है एक छोटे से अंतराल का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।

विशाल भारद्वाज का ये म्यूजिक था, गुलजार के बोल, उषा उथुप और रेखा भारद्वाज की आवाजों में आपने सुना सात खून माफ फिल्म का।

0: आना। साथियों, आज 4 मई का दिन विशेष है। आज है कोयला खनिक दिवस। इस दिन को मनाने का उद्देश्य उन कोयला खनिकों के श्रम साध्य प्रयासों को पहचानना और सम्मानित करना है, जो चुनौतीपूर्ण और खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हुए ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक कोयले का खनन करते हैं। कोयला खनिक दिवस केवल एक औपचारिक तिथि से कहीं अधिक है। साथियों, ये उन गुमनाम नायकों की हार्दिक पहचान है, जिनके अथक प्रयासों से भारत में ऊर्जा और उद्योग का पहिया चलता रहता है। और अब हम कार्यक्रम में बढ़ेंगे अगले गाने की ओर, लेकिन उससे पहले ये संदेश हो जाए।
1: सुनिए,
2: सुनिए एक खुशखबरी।
3: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

एक अलग ही खनक है सुनिधि चौहान की आवाज में, और इन्हीं का गाया ये गाना था चमेली फिल्म से। इरशाद कामिल ने लिखा था इसे और संदेश शांडिल ने म्यूजिक तैयार किया था। एक और स्वीट सा ड्वेट आपको सुनवाते हैं शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

मीठा संगीत शांतनु मोइत्रा का स्वानंद किरकिरे के बोल थे। शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में आप सुन रहे थे पीके फिल्म का गाना। एक छोटा सा अंतराल,

0: शांति ओम फिल्म का ये गाना था राहत फतेह अली खान और ऋचा शर्मा की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, विशाल शेखर का म्यूजिक।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: और अब समय आ गया है कि चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश पेश की जाए। तो चलते चलते राजेश रोशन का संगीत, इंदिवर के बोल, कुमार सानू और अलका याग्निक के साथ साथियों की आवाजें।

कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए करण अर्जुन फिल्म के इस गाने के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम तो यहीं पूरा होता है। और साथियों, जिंदगी के हर पल को मुस्कुरा के जीने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। अब आज के लिए शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ ब्यूटीफुल डे। कीप स्माइलिंग। बाय बाय।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये फनकार

इनका जन्म हुआ 18 जुलाई 1945 को पश्चिम बंगाल के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में। गाने का शौक बचपन से ही था, सो परिवार ने भी इस कला को बढ़ावा दिया। उस समय इनकी उम्र लगभग 14 या 15 साल की रही होगी, जबकि इन्होंने ऑल इंडिया म्यूजिक टैलेंट प्रोग्राम में गाना गाने का फैसला किया और इन्हें मौका मिल भी गया। और तभी तालियों और वहां मिली प्रशंसा ने मन में ये ख्वाहिश जगा दी कि एक दिन मुझे भी हिंदी सिने संगीत में अपना वही मुकाम बनाना है जो लता मंगेशकर का है।

0: कम उम्र में ही आरती मुखर्जी ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तालीम लेनी शुरू कर दी और उसी का नतीजा था कि आरती मुखर्जी ने जीता मेट्रो मर्फी कॉन्टेस्ट। अब इस प्रतियोगिता की एक खासियत ये थी कि इसे जज कर रहे थे उस जमाने के नामचीन संगीतकार अनिल बिस्वास, नौशाद, बसंत देसाई और सी रामचंद्र। बस यहीं से आरती मुखर्जी के पार्श्व गायन के क्षेत्र में जाने का रास्ता बन गया और 1958 में आरती मुखर्जी को पहला ब्रेक मिल भी गया। फिल्म मीना कुमारी अभिनीत थी, नाम था सहारा।
1: अचकन मटकन दही चटोकन धम्मड़ दुस्सा ठूंठ गुस्सा कड़वी कड़वी बात फुलाना मैया से नहीं गाल फुलाना तू मेरा बेटा मैं तेरी मैया हंसते हंसते किशन कन्हैया बिल्ली बजाए बाजा

इस फिल्म के संगीतकार थे हेमंत कुमार, लेकिन बदकिस्मती से फिल्म का संगीत कुछ खास चला नहीं। उसके बाद 1959 में एक बार फिर मीना कुमारी की ही फिल्म थी दो दिल चार राहें। 1961 में एक और फिल्म मिली। इस फिल्म की हीरोइन थी मधुबाला और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था बॉयफ्रेंड।

तक पहुंचते पहुंचते आरती मुखर्जी को ये बात समझ में आ गई कि हिंदी सिने संगीत के क्षेत्र में इस समय अपने लिए एक अलग जगह बनाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि वो समय लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी पूर्व स्थापित गायिकाओं का करियर का पीक का टाइम था। लिहाजा आरती मुखर्जी ने एक बड़ा ही समझ

हरी का निर्णय किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान बांग्ला फिल्मों की तरफ लगा दिया और इसका बड़ा पॉजिटिव असर भी हुआ। 70 के दशक तक आरती मुखर्जी बांग्ला फिल्म संगीत की टॉप की सिंगर में शुमार रही। यहाँ उन्होंने बांग्ला फिल्मों की तमाम टॉप हीरोइंस के लिए अपनी आवाज दी। शर्मिला टैगोर, संध्या, अपर्णा सेन, देवश्री राय, तनुजा, सभी के लिए आरती मुखर्जी ने गाने गाए। और सिर्फ बांग्ला ही नहीं, उड़िया, असमी, गुजराती और मणिपुरी भाषा के गीतों को भी सफलतापूर्वक आरती मुखर्जी ने गाया। सन 70 से 80 के बीच का समय आरती मुखर्जी की सफलता का समय था और इसी समय यानी 1975 में आरती मुखर्जी को एक ऐसी हिंदी फिल्म मिली जिसने हिंदी सिने संगीत में भी आरती मुखर्जी का नाम स्थापित कर दिया। फिल्म थी गीत।

गीत गाता चलका ये गीत भी अन्य गीतों की तरह मकबूल हुआ। राशि प्रोडक्शंस की फिल्म थी, संगीतकार थे रविंद्र जैन। इसी प्रोडक्शन हाउस की अगली फिल्म तपस्या, जिसे एक बार फिर रविंद्र जैन ही स्वरबद्ध कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक बार फिर आरती मुखर्जी को एक गीत दिया और इस बार गाना था किशोर कुमार की आवाज़ में और फिल्म थी तपस्या।

ये गीत भी संगीत प्रेमियों ने खूब सराहा। अब आपको ये भी बता दें कि हिंदी फिल्म संगीत जिसे छोड़कर आरती मुखर्जी चली गई थी, उसी के एक हिंदी गीत ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलाया। लेकिन उस गीत से पहले एक और हिट गाना आपको सुनवाते हैं, आरती मुखर्जी ने जिसे मोहम्मद रफी साहब के साथ गाया 1965 में, और उसे भी आपने बेहद सराहा था। सुनिए दो दिल फिल्म का ये गाना।

हाँ, तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय पुरस्कार की। बात उन दिनों की है जबकि आरती मुखर्जी को लगभग सभी भाषाओं में गीत गाने के मौके मिल रहे थे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 70 से 80 का दशक आरती मुखर्जी की सफलता का दशक था, तो हिंदी फिल्मों के गीत भी उस समय मिल रहे थे, हिट हो रहे थे। उसी दौरान 1983 में आरती मुखर्जी से राहुल देव बर्मन ने अपनी फिल्म मासूम के लिए एक गीत गवाया। ये था

0: पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले, शोध आलेख और स्वर आपके दोस्त अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977 दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981 बसेरा।

0: 1984 दुनिया
1: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का बंजारा
0: 1985 जमाना
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
0: क्या 1993

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए दूसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: हम जब ने कहीं और दूसरी जगह यूनिवर्सिटी में भी कोई होता है इस किस्म का एक प्ले खेला जो जिसमें अमजद को ऐ मेरे वतन के लोगों नाम से प्ले खेला था अमजद खान ने, उसको वहाँ ट्रॉफी मिली थी। तो कादर खान ने फिर कहा, यार रमेश तुम हमेशा ट्रॉफी ले जाते हो। मैंने कहा भाई मैं क्या, स्क्रिप्ट अच्छी होती है, ये होता है होता है। तो मैंने कहानी पढ़ी थी कृष्णचंद्र की, जामुन का पेड़। मैंने कहा यार इस पे बड़ा अच्छा प्ले बन सकता है। तो सागर साहब और कादर खान दोनों साथ में खड़े थे
2: जी।
1: तो कादर खान हमारे प्ले में, मैं आग होता हूँ, मैं मेन रोल करता था, मैं कॉमेडियन का रोल करता था, मेन हीरो का रोल करता था।
2: अच्छा।
1: तो वही हम खड़े थे चर्च गेट पे गेल आउट के बाहर, और मैंने कहा यार ये देखो बड़ा अच्छा। कहते यार मुझे दो, मैं लिख के दूंगा। मैंने कहा ले लो। जब उसने प्ले लिखा तो मैंने कहा भाई वो प्ले दो यार, कंपटीशन नजदीक आ रहा है। चल रमेश प्ले बहुत अच्छा बन गया, तुम साले हर बार ट्रॉफी जीतते हो, इस बार मैं ट्रॉफी जीतता।
2: हाईजेक हो गया प्ले।
1: हाँ। तो वो प्ले ले लिया उसने।
2: हाँ।
1: अब मैंने दूसरा, मैंने तीन बंदर प्ले खेला
2: जी,
1: तो जिसमें मेरे एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला लेकिन ट्रॉफी कादर खान को मिली।
2: इस बार वो ले गए,
1: ले गए लास्ट। और इसी साल जो है फिर झगड़े हुए, मारामारी, खून खराबा हुआ। मुंशी जी की वाइफ आई स्टेज पे।
2: हाँ।
1: के एम मुंशी की वाइफ
2: जी,
1: भारतीय विधान की मालकिन, उन्होंने कहा भाई बस लास्ट ईयर है, आइंदा यहाँ कंपटीशन नहीं होगा।
2: हाँ।
1: और 13-14 साल से 52 से

0: ओरिजिन चलता आ रहा था या 50 से चलता आ रहा था, और ये ईयर था 68 या 69, वो कंपटीशन बंद कर दिया 68 में।
1: बाद में फिर शुरू हुआ,
0: फिर वो उधर, फिर बहुत बाद में किया, अभी किया
1: जी।
0: फिर वो किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि फिर क्या हुआ कि मैं जब इप्टा में काम करना शुरू हो गया, कि ये हुआ कि आखिरी क्षमा प्ले हो रहा था जो मैं जिक्र कर चुका था आपसे
1: जी,
0: कि ये प्ले था यादगार मुशायरा, दिल्ली का यादगार मुशायरा।
1: तब तक आपकी उम्र क्या थी?
0: अब मैं कॉलेज में पढ़ चुका था, समझिए 23 साल।
1: और ये जो टीनेज रोल और बच्चों के रोल,
0: वो तो बंद हो चुके थे, बहुत पहले पुरानी बात होगी। तो अब ये जो इनके साथ 68 में मैंने कुछ एक दो प्ले पंजाबी में किए, जो मैं हिंदी में ट्रॉफी ले चुका था, मनमोहन कृष्ण जी के साथ, अचला सिद्धेव के साथ, इनके साथ वो किए, और पंजाबी में वो तुझे आए तुझा पाशी, शतरंज के मोरे को पंजाबी में शतरंज दे मोरे के नाम से खेला
1: जी।
0: और बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा देखने आए थे, और बी आर चोपड़ा ने बहुत हंसते रहे, यश चोपड़ा फर्स्ट रो में बैठे थे, जोर से हंसते थे, और प्ले ख़त्म होते उन्होंने कहा बेटा तुम आ जाओ, बी आर चोपड़ा साहब ने कहा मुझसे मिलने आप। मैं मनमोहन जी के साथ उनके ऑफिस चला गया, बोले तुम पंजाबी पिक्चर मेरे लिए डायरेक्ट करो। उन्होंने पंजाबी में प्ले देखा था। मैंने कहा साहब मुझे तो ग्रामर आती ही नहीं फिल्म की, तो मुझे आप असिस्टेंट रख लीजिए, मैं ग्रामर सीख लूँगा फिर करूँगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तो कोई पिक्चर चल नहीं रही हमारी, जब कोई अनाउंस होगी तो तुम आ जाना। तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी, और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
1: बिल्कुल।
0: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है, और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे, एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आँख से, तो मैं काफ़ी
1: चमागे।
0: तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो, मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रखो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा पांचवा असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
1: जी।
0: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात। नेक्स्ट डे मैंने जाके वो गुजराती में प्ले देखा, धुम्मस। संडे था, संडे इनका प्ले होता है जैन कॉलेज में, और अरविंद जोशी रोल कर रहे थे, और उसमें उनका बेटा जो आज हीरो है, तो उसने उसमें अरविंद जोशी मेन रोल भी कर रहे थे, डायरेक्ट प्रवीण जोशी ने किया था शायद। और अरविंद जोशी कौन है, ये शर्मन जोशी के फादर, शर्मन जोशी जो अभी हीरो है इनके फादर। तो वो प्ले मैंने सारा गुजराती में देख लिया, बम्बई में रहता हूँ इसलिए गुजराती सब समझ आती रही, गुजराती दोस्त भी थे, अमृत पटेल मेरा दोस्त था गुजराती का, मेरे नाटकों में उनके साथ काम भी करता था, हिंदी में मेरे साथ खालसा में काम करता था। मैं आया सेट पे, वहाँ कोने में स्क्रिप्ट पड़ी थी हिंदी की, कॉपी लेके पढ़ डाली कोने में, अभी लाइटिंग वाइटिंग चल रही है, एक सेट था बंगले का जिसमें पूरी पिक्चर उस बंगले में ही है, वो पढ़ डाली। अब मैं एकदम क्लियर कट, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
1: यस,
0: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में, फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला, एक आने का टिकट वहां जाता, 5 आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, ठन्नी में पिक्चर
1: काम बन जाता था,
0: काम बन जाता।
1: कौन कौन सी फिल्में देखी होंगी?
0: सब, कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो मैंने देखी है, बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में, बी आर चोपड़ा की सारी, विश्वनाथन की सारी, सारी फिल्में जो अच्छी फिल्में कहलाती थी वो सारी फिल्में मैं छोड़ता नहीं था। पहले दिन जाता था, लाइन लगाता था 5 आने में, वहां पे आगे कई बार ब्लैक वाले उठा के पीछे फेंक भी देते थे, छोटा सा दिखता था उठा के पीछे कर देते थे, जो मैं पहला नंबर था तो 25वां नंबर हो जाता था, लेकिन टिकट मिल जाता था। तो वो 5 आने का लेके बैठता था, देखा करता था।

क्रिटिक भी बन चुका था तब तक, बहुत सी बातें, मतलब इस सेट पे जब मैंने सब देख लिया तो पांच चार राइटर वहां थे, अख्तर मिर्जा, अख्तर उलेमान, शीजे पावरी, ये सब वहां पे थे, बी आर चोपड़ा जी भी सेट पे कई बार आते थे, यश चोपड़ा जी खुद थे, तो ये सेट पे सब रहते थे, क्योंकि एक महीने की पिक्चर है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, देख लो कोई लास्ट मोमेंट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो सबकी ड्यूटी थी कि आप सुबह टाइम पे आ जाओ 9:30 और शाम तक 8 बजे तक चलती है शूटिंग, रहो सब। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया, कहाँ अटका हुआ है, तो मैं भी अपना, क्योंकि मैं धूमच भी देखा, ये भी देखा, और वो क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम क्या समझ रहे हैं, ये क्यों नहीं हो, ऐसे क्यों, उनकी क्वेश्चन जो थे उसका आंसर मैं सोचता जा रहा हूँ, और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। अचानक वो बी आर चोपड़ा साहब ने मुझे डांट दिया, कब कल का बच्चा, मैं कोने में चला गया, मतलब मैंने कोई गलत बात कर दी, बड़े बड़े राइटर आप डिस्कस कर रहे हैं, बीच में अपनी होशियारी दिखा रहा हूँ, ये उनके हिसाब से था, कोने में बैठ गया मैं। जब सब डिस्कशन हो गई, बात बनी नहीं उनकी, फिर उन्होंने कहा यहाँ किसी ने कुछ बोला था, मैंने स्कूल के बच्चे की तरह हाथ ऊपर किया, सर नीचे ही रखा, और उन्होंने कहा हाँ बोलो, तो मैंने कहा ऐसा कर ले, तो कुछ जो भी छोटी मोटी, तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे, यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती 5 बार रखकर कोने में बैठा, साहब आगे चले, फिर एक जगह और रुक के कहीं इसी तरह डिस्कशन हुई, मैं भी अपने उस तरह सोचने लग गया, जब ये सब बोलते रहे इनका, मैं जल्दी कंप्यूटर दिमाग की तरह, राइटर बड़े क्या कह रहे हैं, इसमें से चीज निकालूं, करते करते करते करते मेरी चीज मुझे समझ आई, कुछ कुछ समझ आई।

0: तो मैंने फिर चुपचाप बोला नहीं, शोर नहीं किया, हाथ ऊपर किया तो चोपड़ा साहब ने कहा हाँ बोलो बेटे। मैंने कहा ऐसा कर ले तू। सारे राइटरों ने कहा बहुत अच्छे बेटा, वाह
1: वाह
0: यही चाहिए था।
1: क्या बात है।
0: और वो सब सीनियर राइटरों ने अप्रूव किया, ओके होगी चीज। अब साहब लास्ट डे जब था तो सुबह से हम लोगों ने काम शुरू किया, सेट टूटना था नेक्स्ट डे।
1: हाँ हाँ।
0: और एंड में लोग सब थक के सो गए। कुछ शॉट यश जी ने लिखवा दिए थे, ये शॉट भी लेने हैं विदाउट आर्टिस्ट है।
1: हाँ।
0: उस वक्त मैं और ऑपरेटिव कैमरामैन रोमेश भल्ला जी थे।
1: जी जी।
0: हम दो रह गए थे, बाकी सब सो चुके थे, मतलब फुल 24 घंटे काम कर चुके थे ना।
1: हाँ।
0: लेकिन हम तो अभी अलर्ट थे
1: जी,
0: हम तो अभी बच्चे थे जोश वाले। तो हमने वो शॉट यश जी के पेपर लिया।
1: हाँ।
0: और वो शॉट ले लिए।
1: वाह वाह।
0: तो यश जी की अचानक आंख खुली तो उन्होंने कहा ये वो यार वो शॉट ले लो। तो यश जी हमने लिए आप देख लीजिए, पर वो तो उस वक्त तो देख नहीं सकते। तो उनका जी जैसा आपने लिखा वैसा लिया है, ऐसा घुमाया कैमरा, ये यूं गोल गोल कैमरा घूमता है सेट के ऊपर। तो नीचे लोग सोए थे इसलिए हमको थोड़ा ऊपर रखना पड़ा, ये बताया उनको कैसा किया है। और ये भी ले लिया, वो चीज उसका क्लोजअप भी ले लिया, उसका भी दरवाजे का जो आपने कहा वो ले लिया, ये ले लिया, सब ले लिया। और रमेश वाला पुराना आदमी था उनका ऑपरेटिव कैमरा, उनको भरोसा था कि ये झूठ नहीं बोल रहे होंगे। और जो कुछ जो बातें मैंने बोली भी थी उनको मेरी समझ में थोड़ा सा यकीन भी हो चुका था।

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात हाऊस लिस्टिंग आणि हाऊसिंग सेन्सर्स म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होईल. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: नहीं, तो वहाँ शशि कपूर शूटिंग नीचे कर रहे थे, उनके पास भी गया. मुझे पता है थिएटर के बहुत वो हैं, तो मैंने कहा शशि जी ऐसा प्ले है मेरा, आप देखने आइए. तो कह रहे हैं बेटा मैं पहले शो पे कभी आता नहीं हूँ, चार पांच शो के बाद आता हूँ. बोला आज देख लीजिए, फिर पाँचवा मेरा फिर देख लीजिए, गलतियाँ ही पता चल जाएंगी हमको, समथिंग लाइक दैट. तो अलबत्ता वो भी आ गए देखने. प्ले तेजपाल हॉल में खेला
2: जी.
1: तो प्ले देखने के बाद यश जी ने बोला बेटा तुम कल राजकमल स्टूडियो आ जाओ. फिर आहिस्ता से कहा मैं भाई साहब से अलग होके कंपनी अपनी खोल रहा हूँ. तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा ऐसे फॉरेन का एक आदमी आया, वो चाहता है कि फिल्म बनाऊँ यहाँ पे. नहीं नहीं बेटा तुम आओ मेरे पास. तो नेक्स्ट डे में आया, इन्होंने अपनी यशराज फिल्म शुरू करनी थी. वहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐसे पिक्चर बना रहा हूँ, मैं तीन पिक्चर बनाऊंगा. एक में ये मेरा चीफ असिस्टेंट होगा फलाना आदमी, फिर दूसरा बताया ये असिस्टेंट है मेरा, ये दूसरी पिक्चर में जो प्राण मेरा डायरेक्ट करेंगे उसमें ये चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, और एक पिक्चर मनमोहन कृष्ण डायरेक्ट करेंगे जिसमें तुम चीफ असिस्टेंट होगे.
2: ओके.
1: तो मैंने कहा मैं असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ. चीफ असिस्टेंट बनने से मेरा कोई नहीं, मुझे आप थर्ड असिस्टेंट रख लीजिए, पांचवा रख लीजिए, मैं आऊँगा. तो मैं उनको फॉरेन वाले को मना कर दिया कि साहब मैं इनकी रेगुलर कंपनी शुरू हो रही है तो मुझे नौकरी मिल रही है, मैं जा रहा हूँ.

0: तो जैसी तप यहाँ पे पालील पे रहने आ गए थे
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे इतने पैसे मिलेंगे तुम्हें उसके लिए, असिस्टेंट के लिए। तो मैंने हल्का सा, मैं बीच में थोड़ी देर, मैंने बताया आपको सच्चे वाले में नौकरी की, जब मैं प्ले डायरेक्ट करता था ना, शफी नामदार, फारूक शेख वगैरह, तो सच्चे वाले में नौकरी भी करता था, वो टेम्परेरी जॉब था
1: जी।
0: तो वो 15 महीने मिला, 3-3 महीने का एक्सटेंशन होता था
1: जी जी जी।
0: तो 15 महीने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमको नहीं चाहिए आप। तो मैंने पार्टी दी लोगों को कि मैं फ्री हो गया, ये कुलदीप वगैरह सबको पार्टी दी कि अब मैं फ्री हूँ।
1: हाँ,
0: तो फिर मैं आके इप्टा में आके मैंने ये नाटक शुरू किए थे कि आज़ाद हो गया, मेरे को कोई ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं। तो अब जो मैं ये सब कर रहा था ऑलरेडी, तो मुझे वो जो 400 रुपये महीना मिलता था सचिवालय में, तो जो भी यश जी ने मुझे तनख्वाह बोली, तो मैं यश जी वहाँ क्लर्की के 400 रुपये मिला करते थे, यहाँ तो असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, तो देख लीजिए जो देना आप दे दीजिए, मैं ले लूँगा। तो उन्होंने मेरी तनख्वाह 400 रुपये रखी
1: जी। वाह वाह।
0: तो 400 रुपये का ये फायदा था कि कोलीवाड़ा से पाली हिल तक 1 रुपया लगता था टैक्सी का।
1: अच्छा।
0: मैं टैक्सी में बैठ के आता था उनके घर में 1 रुपये में, तो 30 रुपये महीने का मेरा वो खर्चा था। बाद में उनकी गाड़ी होती थी।
1: हाँ।
0: उनके साथ राजकमल स्टूडियो जाते थे उनकी गाड़ी में बैठ के, वापस उन्हीं के घर पालील पे आते थे, फिर मुझे जाना होता साधना स्कूल में रिहर्सल के लिए ड्रामे की। वो अपनी गाड़ी भेजते थे, बेटा रामचंद्र को ले जाओ गाड़ी का, तेरे को छोड़ के आ जाएगा। वो मुझे माँ छोड़ देता सर, मैं आ जाता। तो इन चीजों में जो लिंक वाले बातें याद आती है याददाश्त में, हुआ ये कि कुछ बम्बई बंद हो गई, हम वापस जब जाते थे ना, तो ड्रामे की जो रिहर्सल कर रहे थे उसमें फारूक शेख, भरत कपूर,
1: हाँ,
0: रमन कुमार,
1: हाँ,
0: तो ये सब काम कर रहे थे। तो हम लोग बस की स्ट्राइक हो गई तो ट्रक में जाया करते थे, तभी एक जमाना था थोड़ी देर तक BST की स्ट्राइक हो गई थी
1: जी जी।
0: तो ट्रक वाला 4 लेता था या 8 लेते थे, और भरत कपूर ने उन दिनों एक फिल्म में हीरो का रोल किया था, वो पिक्चर का नाम था गुप्त ज्ञान, वो सेक्स के बारे में कुछ, ये डॉक्टर थे। जैसे हम ट्रक में बैठते थे, कुछ लोग ऐसे मजदूर टाइप के लोग पास आते थे इनके, डॉक्टर साहब हमने आपसे कुछ पूछना है। तो एक्चुअल

0: साथ में ये यश चोपड़ा का ये काम शुरू हो गया।
1: ये दाग फिल्म थी,
0: ये पहली स्वीट दाग।
1: और आप दाग चीफ असिस्टेंट थे?
0: नहीं, पहले मैं चौथा असिस्टेंट था, तीसरा। तो वो क्या हुआ, जो चीफ असिस्टेंट साहब थे बड़े वाले जो नंबर वन थे, वो उनको इंटीरियर डेकोरेशन कास्ट्यूम की बहुत समझ थी, वो ज्यादा उस तरफ का करते थे। तो काम जो है वो मुझे, क्योंकि नाटक वाला हूँ, डायलॉग देना, रिहर्सल करवाना,
1: चेंजेस करना
0: वो सब मुझे वो था। कलर की करना मैं लिखता था, कंटिन्यूटी वो सब करना, तो ये सारा काम मैं करता था। अलबत्ता एक साहब गए, उसका जो दूसरे साहब थे वो यश जी के साथ बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते रहे, वो नाटक वाले नहीं थे, सिनेमा वाले नहीं थे। उधर बीए जब इन्होंने इनके संग की थी, वहां नौकरी कर रहे थे, यश जी ने बुला लिया, अपना दोस्त है, बचपन से साथ में थे उनके।
1: हाँ हाँ।
0: तो वो यहाँ आ गए। अब उन्होंने कहा देखो वासुदेव धीर,
1: हाँ
0: भाई देखो पैसे का मामला है, मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता, ये तुम संभालो। तो उनको कैश, ये सब प्रोडक्शन, वो सब पैसे का मामला उन पे डाल दिया। वो बाकी चीजें कर, कास्ट्यूम वगैरह कर रहे थे और सेट का देखते थे और कलर स्कीम का सोचते थे, और ये सारा काम आता था मुझे, टेक्निकल मेरे ऊपर आ गया। क्लैप भी देता था, कंटिन्यूटी भी लिखता था, डायलॉग भी देता था।
1: हाँ।
0: तो वो सारी चीजों से मेरी जो है ना
1: ट्रेनिंग होती,
0: ट्रेनिंग हो गई।

अब चाहे लग जाए गड़िया मैंने तेरी बाह पकड़ ली मन तुझ पे नियत कर ली।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नाराज हो रहा है रमेश, तू क्या कर रहा है? मैं खाना खा रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तेरे लिए खाना मंगाया, उसने डब्बा घर से आया हुआ है, वो ले गया मुझे वहाँ पे। तो वो जो हम साथ लंच में खाना खाते थे, जो हमारी गपशप होती थी, सिनेमा की बातें होती थी, चीज़ों की बातें होती थी, और मैं जैसे ही थर्ड बेल बजे, उससे पहले मैं दरवाजे पर जाके अंदर लेट ना हो जाऊँ। और एक दिन मैं लेट हो गया तो मुझे रवि चोपड़ा ने पकड़ लिया था कि देखो काका के साथ खाना खाते हो, उसका मतलब ये नहीं कि तुम लेट आओ। सॉरी आंदाजी तो ये आप फिर पिक्चर दाग में राजेश खन्ना
4: हीरो हो गई।
3: हाँ, और दाग जो चल रही है तो मेरी इम्पोर्टेंस बहुत थी, बिकॉज राजेश खन्ना बात सुनता है, डायलॉग करता है, रिहर्सल करवा रहा है मेरे साथ। कई बार बहुत लंबी चीज है तो बोलो रमेश लिख दो वहाँ पे सामने, रीडिंग करवा लो मुझसे और सामने लिख भी दो। अचानक में नजर मुझे पड़ेगी, बहुत लंबे लंबे डायलॉग है, कोर्ट सीन में लंबे डायलॉग थे, तो वो मैंने लिख दिए वहाँ पे। उन्होंने कोर्ट सीन में आता था ग्लांस करके वो देख भी लिया। अगर आप मैं बोल चुका हूँ तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि राजेश खन्ना की यूँ क्यों गया। तो ऐसा भी था, तो अलबत्ता खैर वो दोस्ती का जो है पूरा फायदा जो हुआ मुझे राजेश खन्ना की। अब मुझे यशजी ने कहा कि तुम पिक्चर डायरेक्ट करो, मैं
4: तो लेकिन दाग जब रिलीज हुई तो वो तो सुपर हिट हो गई,
3: सुपर
4: बहुत चली
3: बहुत चली
4: के गाने बहुत चले
3: बहुत चले।

0: और साथ में गुलशन राय जी ने जो फाइनेंस करते थे
1: जी,
0: उन्होंने अपनी पिक्चर यश जी को दी जो शीला बनाने के लिए,
1: सेकंड जो दाग के बाद,
0: दाग के बाद उसमें देवानंद साहब थे, और देवानंद साहब, राखी, हेमा मालिनी जी, और हम दार्जिलिंग में शूटिंग वूटिंग करने गए, प्राण साहब थे, प्राण एक्टर साहब, इन सब के साथ मेरी बड़ी तालमेल, क्योंकि मैं डायलॉग करवाता था तो हो गया, तो खैर उसमें जो भी एज स्टेज का आदमी कुछ बातें बोलता था तो मुझे जवाब ये मिलता था, कमर्शियल पिक्चरों में ऐसा होता है
1: जी जी,
0: तो मेरे कोई क्रिटिक वाली बात मैं बोलता था ना तो वो मुझे वो कर दिया जाता था। तो वो जब पिक्चर रिलीज हुई तो बोले पहले जब हम देखने जाते हैं शोज थोड़े से अटेंड करते हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ काट डालें, कुछ अभी भी ऐड कर डालें,
1: ट्रायल शोज।
0: तो वही जगह जो मैं बोला करता था कि ये चीज ऐसी क्यों, ये क्यों, ये आदमी बम्बई में पुलिस वाला है, वो दार्जिलिंग क्यों आएगा, ऐसा कुछ अजीब से बोलते थे पॉइंट मेरे, वो थिएटर के पॉइंट थे, मतलब मीन मेक निकालने वाले, जानबूझ के आप गलती निकालते ना, वो कहते हैं आटा गूंथते हुए हिलती क्यों हो, उस तरह के पॉइंट होते थे
1: जी जी,
0: तो वैसे ही पॉइंट मैं बोल दिया करता था। तो वो गुलशन राय जी ने, मैंने कहा था वो पॉइंट जो मैं आप लोगों से कहता भी था वो तो वो ही है, तो इतनी ज्यादा नहीं चलेगी पिक्चर, क्योंकि मैं 5 आने में पिक्चर बहुत देखी है, ये जो आप अप्लॉज समझ रहे हैं हूटिंग हो रही है, ये क्यों होगा ऐसा, ये हंस नहीं रहे हैं, ये ऐसा है, ये आपको हूट कर रहे हैं
1: जी जी,
0: तो इंटरकॉलेजेट में भी हूटिंग होती थी हम लोगों के प्ले में,
1: बिल्कुल
0: हमको पता था। तो अलबत्ता एनीवेज वहां देवानंद साहब के साथ दोस्ती हो गई थी, देव साहब ने कहा यश तुम रमेश को पिक्चर दे रहे हो या मैं नवकेतन में दूं,
1: अरे बाप रे,
0: तो जय जी ने कहा पूछिए रमेश से, मैंने ऑलरेडी बोला है सब्जेक्ट, उन्होंने बोला हुआ था,
1: हाँ।
0: पहले मुझसे बोला हुआ पूछो, मैंने बोल दिया कि भाई तुम अपनी अभी स्क्रिप्ट ढूंढो, तो बोले ठीक है।

0: रमेश में बैठा हूँ। अलबत्ता अगली पिक्चर अब वो नहीं चली, तो अब गुलशन राय की पिक्चर पहले बनानी थी हमने।
1: हाँ,
0: तो दीवार पिक्चर की पहले तो ये सोच रहे थे कि राजेश खन्ना के साथ अगली पिक्चर बनाए। तो सलीम जावेद ने सब्जेक्ट सुनाया।
1: आप थे वहां पर जब
0: मैं था?
1: नरेशन हुआ,
0: नरेशन में था मैं।
1: तो दीवार का पहला नरेशन हो रहा है?
0: पूरा पूरा नरेशन में था मैं थ्रू आउट
1: जी।
0: और मैं ऐसा थोड़ी देर में बोलता था, एक चीज हुई, उन्होंने हाथ पे लिखा मेरा बाप क्यों रहा, लिखा बच्चे के हाथ में। मैंने 15 हफ्ते श्योर ऐसा बोलता था मैं। तो सब जितने लोग थे मेरी तरफ लुक करते थे कि चमचागिरी कर रहा है। फिर आगे कुछ गया, एक और हाईलाइट आई। मैं यहाँ बैठा हूँ फाइट वाले गोडाउन में बैठा हूँ,
1: तुम मुझे
0: कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं यहाँ बैठा
1: यहाँ बैठा हूँ,
0: समथिंग लाइक दैट। मैंने 25 हफ्ते फिर मुझे मेरे एडिटर साहब ने चुप कराया, रमेश प्लीज नरेशन में ये सब मत बोलो, चुप रहो, पहले सुन लो, एंड में डिस्कस करेंगे। ऐसा करते करते मैं 50 हफ्ते तक जा चुका था सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट सुनते सुनते
1: 50 हफ्ते फिल्म चलवा दी जी।
0: अब था कास्टिंग की बात आई, राजेश खन्ना की उस डेटे नहीं थी। और इन्होंने कहा कि भाई ये अमिताभ बच्चन उन दिनों मिलने आया करते थे राजेश जी को पालील पे, और मुझे भी कहा करते थे, मेरे को स्वॉर्ड बुलाते थे, तलवार का इंग्लिश
1: स्वॉर्ड,
0: स्वॉर्ड बोलो यार, एक पिक्चर मेरे साथ करें, अब तो मैं बड़ी बड़ी पिक्चर, फिर इनकी पिक्चर हिट भी होगी थी वो
1: जंजीर,
0: अब तो मैं हीरो हिट होगा। तो यश जी ने ऐसा गुलशन राय से कहा, तो उन्होंने अपना हिसाब से कहा कि यार वो बड़ा हीरो है राजेश खन्ना, वेट ना कर लें, समथिंग कुछ छोटा मोटा। सलीम जावेद भी साथ में थे, हमने कहा लेकिन ये शूट ज्यादा करता है अमिताभ बच्चन, अगर आप जंजीर देखें उस हिसाब से ये ज्यादा शूट करेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मान गए, और इनकी डेटे भी हमको खूब मिल गई अमिताभ बच्चन की। शशि कपूर जो थे
1: वो तो बड़े थे, लेकिन
0: बड़े थे वो ही था, उनको छोटे भाई का रोल करना था। अब रोल उनका थोड़ा सा छोटा था इनके कंपैरिजन में, मेन हीरो ये थे। तो जो हम लोग फिल्म वाले जो थे थोड़ी सी कारिस्तानी करते हैं
1: जी,
0: एक दो आदमियों को भेजा गया जहाँ कहीं शशि कपूर शूटिंग कर रहा है। अरे साहब दीवार की स्क्रिप्ट सुनी, जैसा दीवार का आपका सब्जेक्ट था ना, उससे बेटर रोल है कभी कभी मैं आपका, दोनों पिक्चर जैसा चोपड़ा कर रहा है, खुद के लिए एक
1: गुलशन राय की,
0: ऐसा कुछ लोग बोल देते
1: कन्विंस करने के लिए।
0: हाँ कोई बोल देता, बीज डाल रहे हैं कोई भी गया
1: जी जी जी,
0: जो सीनियर किस्म का आदमी है, जो बोलने में ऐसा ना लगे कि मैसे बनावटी। तो वो साहब फिर शशि जी ने कहा यार तुम मुझे रोल सुनाते नहीं हो, तो उनको रोल सुनाया गया। कि भाई देखिए लेंथ वाइज हुआ है, पर छोट लो मैं इनका बड़ा भाई लगू छोटा भाई लगूंगा कहीं, वो ऐसा कर लेंगे, बालों का ये कर लेंगे, उसका ये कर लेंगे, जो यश जी ने कन्विंस किया वो मान गए। ये तुम्हारे पास बड़े अच्छे सीन है, इन लोगों ने भी सलीम जावेद ने कहा अगर आपको ट्रॉफी ना मिलेगी हम लाइन छोड़ लेंगे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ना मिला, तो उनको मिला,
1: बिल्कुल
0: रोल भी मिला उसमें।
2: ये भाई मैं हूँ और ये भाई तुम हो, हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ गया। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
3: मेरे पास माँ है।
0: अमिताभ बच्चन का भी निकलाया तो पिक्चर हमारी सुपर डुपर हिट हो गई साहब।
1: और आप इस फिल्म में असिस्टेंट थे?
0: असिस्टेंट नहीं, इसमें चीफ असिस्टेंट हो गया था ना, अभी
1: आप चीफ असिस्टेंट हो,
0: अब हो गया सब जगह, क्यों वो मैंने कहा ना पहली पिक्चर करते करते दाग में चीफ असिस्टेंट का टाइटल मिल गया था मुझे, जो सब काम मेरे ऊपर जब आ गए थे
1: तो सारी चीजें सब
0: सारे उसमें मेरा टाइटल है चीफ असिस्टेंट रमेश तलवार।
1: दीवार में गाने नहीं थे शुरुआत?
0: गाने में शुरू में दो गाने थे, एक नौकरी मिलती है और एक नौकरी छूट जाती है, दो गाने थे उसमें, शशि कपूर और पूनम बिल्लो, दो ही गाने थे। कौन थे उसमें उनकी हीरोइन?
1: नीतू सिंह।
0: नीतू सिंह बाद में उन्होंने पूनम के साथ भी काम किया, तो इसलिए मुझे शशि कपूर पूनम। हमने ट्रायल किया इनके लिए, क्या होता था जब पिक्चर कंप्लीट हो जाती है तो राजकमल में ट्रायल होता था प्राइवेट, सिर्फ री रिकॉर्डिंग के लिए इनके लिए अपने
1: मंगेश देसाई री रिकॉर्डिस्ट, बहुत बड़े
0: मतलब लोग उनके मानते थे, उनकी जजमेंट कमाल की थी
1: जी,
0: जो कहते थे उतनी पिक्चर उतनी चलती थी।
1: वाह वाह वाह।
0: और उस ट्रायल में किसी को बुलाया नहीं जाता था, अकेले होते थे और मेरे जैसा कोई एक असिस्टेंट और यश जी खुद बस। उन्होंने पिक्चर देखी तो जैसे हुए तो हम निकले बाहर, जैसे बात वो करते होते फौरन कहने लगे भाई पिक्चर तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन 15 हफ्ते से ऊपर नहीं चल सकती।
1: अरे बाप रे।
0: तो यजी ने कहा क्यों भाई? बोला म्यूजिक नहीं है, हमारी फिल्म में म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो मैंने कहा एज इट इज मुझे लगता है 50 हफ्ते तक चलेगी।
1: हाँ, वो जो आपने नरेशन के समय
0: वही कर। तो कहने लगे नहीं बेटा, वो थ्योरी वाइज ठीक है, लेकिन इस टाइम पे रिस्क नहीं लेना होता है। अभी भी गाने डाल दो। तो हम लोगों ने 3-4 गाने रिकॉर्ड किए, 3 गाने और रिकॉर्ड किए। एक डॉक्स में होता है देवन और हमारे गेस्ट आर्टिस्ट बुलाएंगे, डॉक्स में गाना शूट किया, एक और गाना था और एक कवाली।

परफेक्ट।

0: एक जो इनका था देवन वर्मा वाला, वो लगता है जबरदस्ती घुसाया हुआ है, हम लोगों ने वो काट लिए,
1: कवाली भी काट
0: लिए, लेकिन कवाली हमको पसंद आई थी
1: जी।
0: तो सलीम जावेद को पिक्चर दिखाई, उन्होंने कहा साहब ये कवाली तो इसमें नहीं रह सकती, वो निकाल दीजिए। तो यशजी ने कहा भाई वैसा है मंगेश जी, नहीं नहीं नहीं हम पीछे हम तो ये। अब साहब उस वक्त क्या था, यशजी बड़े भले आदमी थे, गुलशन राय भी बड़े भले आदमी थे, ये ज़्यादा वो सब बोलते नहीं थे, लेकिन सलीम जावेद सुपर हिट थे उस वक्त
1: जी,
0: और ये बोलते थे, इनका अपनी बात कहलवाते थे और करवाते थे
1: और मनवाते थे,
0: मनवाते थे। तो अब उनके सामने सिर्फ मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा देखिए जावेद साहब, सलीम साहब, मैंने उस टाइम भी आपसे कहा था ये पिक्चर इतनी चलेगी, 15 हफ्ते, 25 हफ्ते, 50 हफ्ते कहा था, बोले लेकिन चली तो 104 हफ्ते ना।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो मैंने कहा चलिए वो सही।
1: हाँ।
0: तो आप, मैं भी ये चाहता हूँ कि ये पिक्चर भी 50 हफ्ते जरूर चले।
1: हाँ।
0: तो आप प्लीज। तो कहने लगे ठीक है, हम आपके अगली पिक्चर नहीं करेंगे, गुलशन राय से भी कह दिया और यश चोपड़ा से भी कहा,
1: सिर्फ इस कबाली की वजह से।
0: हाँ, हम फिर अगली, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मत कीजिए, आपको भी बहुत प्रोड्यूसर मिलेंगे, हमको भी बहुत राइटर मिलेंगे।
1: अरे बाप रे।
0: अब ये बात यश जी भी चुप है, गुलशन जी भी चुप है, और मैंने कह दिया ये बात। और देखिए साहब, जैसे हम बाहर निकल रहे हैं साथ में, तो जावेद साहब कहने लगे, रमेश जी बुलाते, रमेश जी आप कैसे इप्टा के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, आपने तो हमारे पांव पे कुल्हाड़ी मार दी।
1: ओ,
0: कवाली के बदले कवाली मार दी, कुल्हाड़ी मार दी के बदले बोला आपने तो हमारे पांव पे कवाली मार दी।
1: अरे गजब, क्या डायलॉग,
0: ये डायलॉग बोला
1: जी।
0: मैंने कहा साहब मजबूरी है, और फिर बाद में उन्होंने देखा, बाद में माने भी, और अगली पिक्चर उन्होंने हमारे साथ की भी,
1: लेकिन कवाली तो हटा दी थी ना।
0: नहीं हटाई
1: जी,
0: ने कवाली नहीं हटाई, रही
1: जी,
0: वो बाकी दो गाने काटे देवन वर्मा का, शुरू में रिलीज से पहले काट दी, कवाली रही। तो वो इस बात पे माने, वो मतलब अंदर से हमारी आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट शुरू हो चुकी थी। अब जब इन्होंने मेरी, मैंने फिल्म कर रहा था तो जमाना के लिए उन्होंने सोचा, जमाना फिल्म के लिए, कि भाई ये फिल्म जो है, ये पिक्चर पहले शायद बना रहे थे मोहन कुमार,
1: हाँ हाँ,
0: प्रेम जी के लिए, और उसमें अमिताभ बच्चन थे और शशि कपूर थे शायद, या कोई और थे, अमिताभ बच्चन शशि कपूर शायद थे, और प्रेम जी प्रोड्यूसर, वो अनाउंस हुई है स्क्रीन में, उसके फुल पेज भी आया था, और नाम कुछ और रखा था
1: जी,
0: ए से नाम रखा था, मोहन कुमार की पिक्चरों का नाम ए से होता था, बाद में कुछ आपस में जो भी होगा नहीं बनी पिक्चर, इनके पास स्क्रिप्ट थी,
1: और आप तो ऑलरेडी डायरेक्टर बन चुके
0: थे। मैं बन चुका था,
1: तब तक तो बसेरा
0: बसेरा आ गई थी।
1: हाँ।
0: बसेरा आ गई थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे, तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है, करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए।
1: हाँ।
0: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं, आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन्होंने बहुत फिल्में कर रहा था।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ऋषि कपूर इसमें होगा, और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिम्पल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी
1: जी जी,
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में।
1: हाँ।
0: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है, ये उनके जहन में था, और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी

0: नहीं, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था। खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही। और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
1: हाँ हाँ
0: भाई, जब आप फिल्म करेंगे और सलीम जावेद की स्क्रिप्ट होगी तो आप सोचिए, डायलॉग नहीं लिखे होते, स्क्रीन प्ले तैयार था।
1: जी जी,
0: अब तो डायलॉग लिखने हैं, डायलॉग लिखे होंगे तो फिर आप सोचिए।
1: जी जी जी।
0: तो साहब मैंने कहा फीस क्या देंगे? कहने लगे भाई फीस तो कोई डायरेक्टर हमसे हमारे पास है ऑलरेडी जो 2-2.5 लाख रुपए ले रहा है, तो आपको भी वही दे देंगे। तो मैंने कहा आपने हमसे अभी कितने पैसे मांगे थे पिक्चर के? बोले 21 लाख। तो मैंने कहा 21 लाख, 10.5 लाख सलीम साहब के, 10.5 जावेद साहब के, और डायरेक्टर 2-2.5 लाख देंगे तो पिक्चर अच्छी कैसे बनेगी?
1: क्या गजब बात है। फिर
0: तो साहब आप सोचिए। बोले नहीं, हमको 21 अभी मिले नहीं है, हम 21 मांग रहे हैं, अभी तक 14 मिले हैं। अच्छा 7 लाख दे दीजिएगा। ये उसमें पार्टनर भी थे उसको।
1: अच्छा अच्छा,
0: क्योंकि जो फाइनेंसर था वो इनके पास आया था।
1: हाँ।
0: क्या आप कोई प्रोड्यूसर खड़ा कर दीजिए, आप खुद प्रोड्यूस भाई? तो इन्होंने बाद में खुद प्रोड्यूस भाई नहीं करना चाहा, किसी और जगदीश शर्मा जी को पिक्चर दे दी। लेकिन छत्र चाहे इनकी कंपनी, ऐसा कहना चाहता है इनकी पिक्चर। तो मैंने कहा भाई मैं, मुझे 7 ही दे दीजिएगा, मैं जाता हूँ। तो बोले आपने कहीं जाना था क्या? कहा आपने मिलकर नाटक की रिहर्सल है, जाइए ना रिहर्सल पे, जाइए ना, फिर क्यों बैठे हैं? मैं थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन करके कुछ ऐसा डायलॉग मार के, एक वन लाइनर मार के मैं भी चला गया। तो अलबत्ता उन्होंने, मैं सागर सर्दी का फ्लैट था जुहू पे,
1: जी
0: टेरेस फ्लैट था, वहाँ कुछ रीडिंग वीडिंग थी वगैरह, सब लोग आए हुए थे। जावेद साहब को पता था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, और जावेद साहब वहाँ पे आए
1: पीछे से।
0: हाँ, थोड़ी देर के बाद जब मेरे हो गया काफी बाद में, उन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया होगा
1: जी
0: कि ये पिक्चर के लिए बेटर तो यही है अगर ये करे तो। और मेरी बहुत ज्यादा इच्छा भी नहीं थी, सच बात यह है।
1: हाँ।
0: प्राइस इसलिए बोला था कि मेरी ज्यादा इच्छा नहीं थी।
1: करेक्ट है।
0: और मैंने बाकी पिक्चर जो की थी वो परसेंटेज पे की थी कि पार्टनर बना लो। अपना बसेरा में भी 1/3 पार्टनर था मैं, और यजी ने भी मुझे सवाल में 1/3 पार्टनर बना लिया था
1: जी।
0: और ऐसा ऐसा इस तरह का काम, और जो आएगा खा लेंगे आपस में ऐसा। तो आए और उन्होंने कहा भाई प्राइज लेना तो कोई आपसे सीखे।
1: ओए ओए।
0: मुझे समझ नहीं आया। अब मैं थोड़ा सा उदास था कि वो मान गए, और थोड़ा सा ये था कि मेरे टाइप की पिक्चर नहीं है।
1: हाँ।
0: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
1: जी,
0: ये पिक्चर अच्छी बने। और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
1: अरे बाप रे।
0: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
1: ये लो।
0: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
1: हीरोइनें भी हैं,
0: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए। अब साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी।
2: रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत आपने सुनी। ये बातचीत अभी अधूरी है, बातचीत जारी रखेंगे अगले हफ्ते उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में। चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जुबैर खान।
3: उजाले उनकी यादों की। चाली।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

0: शकील बदायूनी की लिखी ये कवाली थी, रवि का संगीत था, आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथियों की आवाजों में चौदहवीं का चांद फिल्म की ये कवाली आपने सुनी।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे थे पामिला सिंह की आवाज में कफील अहमदाबादी की लिखी ये गजल, परवेज मेहंदी की तर्ज थी।

राजस्थानी लोकधुन पर आधारित एस एन त्रिपाठी का सर्वाधिक यह गीत आपने सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। वीर दुर्गादास फिल्म का यह गीत था, भरत व्यास की रचना थी। विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग।

सुखविंदर सिंह, मुर्तजा मुस्तफ़ा और कादिर मुस्तफ़ा की आवाज़ें थीं। जुनैद वासी का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे झोले LLB 2 फिल्म से, विशाल खुराना की तर्ज थी। विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग।

0: लाल दुपट्टा मलमल का इस फिल्म का दो गाना था अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे आनंद मिलन का संगीत था।
1: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
2: क्यों?
1: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थीं विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
1: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
1: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
1: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

नशा ही नशा है इस एल्बम का गीत है सुखविंदर सिंह की आवाज में, तर्ज और आवाज और साथ ही संगीत भी सुखविंदर सिंह के, और यही है श्रोताओ आज की रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 281 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 184 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 94 सीटों पर आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता

0: बनर्जी अब भवानीपुर सीट पर आगे हो गई हैं। वाम दल 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं, अन्य 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है, जहां 21 मई को मतदान होगा। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 99 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 2 सीट पर आगे हैं। केरलम में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 96 सीटों पर आगे है। LDF 42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी TVK 109 सीटों पर आगे है। AIADMK गठबंधन 73 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। DMK गठबंधन 52 सीटों पर आगे है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं चेन्नई में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास। सुशील, कहा जा रहा था कि TVK के विजय इन चुनावों में एक्स फैक्टर साबित होंगे और वही होता दिख रहा है। जीत के प्रति आश्वस्त TVK ने सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ा और अब क्या लग रहा है कि विजय MG रामचंद्रन के इतिहास को दोहराने जा रहे हैं?
1: देखिए कनक, विजय की ये जो विजय है राजनीतिक मैदान में वो जबरदस्त है। जिसे आप कहते हैं कि फिल्मी पर्दे पर ब्लॉकबस्टर रिलीज होती है, वैसे इस बार के राजनीतिक मैदान में, इस बार के चुनाव में उनकी ब्लॉकबस्टर रिलीज हुई है और जबरदस्त सफलता मिल रही है। जो आपने तुलना की MGR से, MGR के बारे में कहा जाता है, वो एक विचारधारा से एक राजनीतिक आंदोलन की उपज थे, लेकिन विजय को ये बात उनसे अलग करती है क्योंकि वो किसी राजनीतिक आंदोलन की उपज नहीं है, लेकिन उनका एक करिश्मा है, युवाओं में उनकी एक अपील है, सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं। तो इस तरीके से विजय का एक अपना करिश्मा और जो सरकार के खिलाफ एक माहौल था, जो सरकार के खिलाफ लोगों की इच्छा थी, एक बदलाव की जो इच्छा थी, वो बदलाव हमें विजय के रूप में सत्ता के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से देखें तो वो थोड़ा सा जो जादुई आंकड़ा है 118 का, उससे कुछ पीछे रह सकते हैं, लेकिन अभी ये आने वाले कुछ वक्त समय में स्पष्ट हो जाएगा कि उन्हें कितनी सीटें मिल पाती हैं। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुशील। पुदुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 24 के रुझान मिल गए हैं। AINRC 15 सीट पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 6 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य 3 सीट पर आगे हैं। चुनावों के शुरुआती रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और वहाँ पे हम लोग 180 भी पहुँच सकते हैं। ये पहली बार होगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसके साथ ही अंग बंग कलिंग, मतलब कि हमारी सरकार बिहार में, हमारी सरकार बंगाल में और हमारी सरकार उड़ीसा में, और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। असम में भी अगर आप देखो तो हमारी तीसरी बार सरकार बन रही है।
0: इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डॉक्टर गिरीश ने दावा किया है कि केरलम में उनकी पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि तमिलनाडु में परिणाम DMK पार्टी के पक्ष में रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित रहेगा। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की मतगणना भी जारी है। ये 7 सीटें गुजरात में उमरेठ, कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण, महाराष्ट्र में राहुरी और बारामती, नागालैंड में कोलडांग और त्रिपुरा में धर्मनगर हैं। इनमें से 4 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज सुबह के कारोबार में 1% की बढ़त देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों से इन सूचकांकों को मजबूती मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 808 अंक उछलकर 77,721 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे बस कुछ ही पलों में।

0: दुश्मन फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। इस गीत से पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया था जाने दुश्मन फिल्म का गीत और उसकी भी तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: सावन को आने दो, इस फिल्म में आप सुन रहे थे आनंद कुमार सिंह की आवाज, फौक जामी का लिखा ये गीत था राज कमल की तरफ थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: कलियां, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल। फिल्म फकीरा, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, गीत और संगीत रविंद्र जैन के।

प्यार ही प्यार, इस फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज थी, हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का था। फिल्म जूली, किशोर कुमार की आवाज, राजेश रोशन की तर्ज, आनंद बख्शी का लिखा ये नगमा है।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

माले की गोद में इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, उषा तिमोथी और साथियों की आवाज़ों में आनंद बख्शी के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। और श्रोताओं, यही है आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। विविध भारती से आपने सुना कार्यक्रम

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आन मिलो सजना फिल्म का ये नजराना था आपके लिए इश्वताओं, और गीतों का नजराना तो हम लेकर आते हैं सुरीला सफ़र कार्यक्रम में। और हमने आपसे पूछा है कि क्या यादें हैं रेडियो की, रिकॉर्ड्स की, रिकॉर्ड प्लेयर्स हुआ करते थे उनकी, तो अगर आपके जहन में कोई याद है तो आप हमसे ज़रूर साझा कर सकते हैं। और वैसे ये सुरीला सफ़र तो तभी सुरीला सफ़र बनता है जब हम और आप मिलते हैं साथ साथ, और होती है एक प्यारी सी मीठी सी इबारत, और होते हैं बहुत सारे नगमे। तो कुछ शब्दों को चुनकर हमारे श्रोताओं ने इसमें चिन्हित किया है और बताया भी है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत इस तरह के संकेतों से ही सुरीला सफ़र का मज़ा बनता है। जिंदगी, प्यार, मिलन, यादगार, याद, दिल, सुकून, वादियां, पहाड़, मौसम, कोयल, आम की डाली, बसंत, बहार, पाजेब, नजराना, फूल, मुस्कुराना, तो ये सारे शब्द इन्होंने बनाए हैं। एक हमारे श्रोता ने करवटें शब्द जो है उसे

कुछ इस तरह से लिखा है कि करवटें बदलते रहे सारी रात, हम इस गीत को इन्होंने गेस किया है। और पल भर में कोई हमें प्यार कर ले, इन हसीं वादियों, पतझड़ सावन, पल पल दिल के पास। तो देखते हैं कि कौन से गीत जो हैं आज आपके गीतों से और हमारे शब्दों से मेल खाते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि छम छम बाजी रे पायल या पायल की झनकार, उस रेशमी इस रेशमी पाजीब की झनकार। तो ये गीत इन्होंने जो हैं अपनी तरफ से निकाले हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि पहाड़ों की वादियों में अपने प्रीतम के साथ का अनुभव प्रकृति और प्रेम का एक यादगार पल होता है। हरी भरी वादियों में, देवदार के जंगलों में और खिले हुए फूलों में विचरण करना, किसी सपनों को सपने को हकीकत में बदलते हुए देखना जैसा लगता है। ये समय प्रकृति की गोद में एक दूसरे को समझने और नई यादें बनाने का होता है। और फिर इन्होंने हवाओं बादलों के बारे में भी लिखा है। जी हाँ, मिलना तो बहुत ज़रूरी है श्रोताओं। वैसे हम भी जब कहीं जाते हैं तो किसी न किसी से हमारी मुलाकात जरूर होती है। क्या कोई ऐसा वाकया आपको याद है कि जब आपसे कोई मिला हो और उसे आज तक आप ना भूल पाए हों?

0: अगर आप बताना चाहें श्रोताओं तो आप जरूर बताएं कि इस गीत में कौन सी अभिनेत्री नजर आती हैं और एक बड़ी सुंदर सी सफेद रंग की जो घास है वो कौन सी घास है। हीर रांझा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, कैफी आजमी का लिखा। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आम की डाली याद रखने की चीज़ है। श्रोताओं जी हाँ बिल्कुल, जब हम बात करते हैं सुरीले सफ़र पर जाने की तो बस वादियाँ हों या फिर जो गांव की वादियाँ हैं वो हों या फिर पहाड़ों की वादियाँ हों, इसमें बहुत ही जो एक अलग सा एहसास है वो होता है जहाँ दिल को सुकून मिलता है। और ऐसी जगहों पर जब आप सेल्फी लेते हैं तो उन्हें किस तरह से संजो कर आपने रखा हुआ है, ये बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। और वैसे हर मौसम अपने आप में कोई ना कोई नजराना हमारे लिए ज़रूर लेकर आता है और तभी तो इसे कहते हैं कि ये प्यार का मौसम है। मौसम चाहे कोई भी हो श्रोताओ, लेकिन चेहरे पर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती ही हैं कि हंसी खिला जाता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र आज पहाड़ियों के पर्यटन क्षेत्र से हो सकता है कुछ बातें मिलें इसमें। तो कुछ साल पहले हम नैनीताल गए थे, वहाँ की हसीन वादियाँ, नौका विहार आज भी हमें याद है। ऐसे ही कुछ पर्यटन के स्थान जहाँ आज का ये सुरीला सफ़र पूरा करने का ऐसे ही वक्त कभी कभी जो है वो मिलता है और कभी कभी ज़िंदगी के साथ निभाने वाले दोस्त भी मिल जाते हैं। मौसम मधुवंती बसंत पहाड़ के गीत सुनता हूँ, कुहू कुहू बोले कोयलिया ये गीत इन्होंने याद किया है। वैसे जो हमने अभी आपको गीत सुनवाया ही रांझा फिल्म का, ये गीत भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। आगे ये लिखते हैं कि ऋतु बसंत की प्रथम कली खुलती है, प्रेम अपनी प्रतिमा के लिए जो है गजरे लाता है, एक फूल तेरे जूड़े में कह दो तुम्हें लगा दूँ। गाँव में दिन भर गर्मी रहती है लेकिन रात को फूल और पत्ते पेड़ ठंडी हवाएँ, तो इस तरह की बातें इन्होंने लिखी हुई हैं। एक और हमारे श्रोता ने पसंद किया है जो गीत जो इन्होंने अंदाज़ा लगाया है वो है हुस्न पहाड़ों का, शायद ये गीत आज ज़रूर शामिल होगा। वैसे इस जो लाइन है यानी जो हमारी इबारत है इसमें हमने दिल की बात भी की है श्रोताओं, जो वादियों में अक्सर रह जाता है। हम तो चले आते हैं लेकिन हमारा दिल जो है अक्सर उन्हीं वादियों में घूमता रहता है, सोचता रहता है उन्हीं वादियों के बारे में। और अगर कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ ये वादियाँ और भी सुकून भरी हो जाएं, तो फिर कहने ही क्या। और ऐसे में अपने होते हैं, अपनों का साथ होता है।
1: मेरे दिल में आज

श्रोताओ, अगर आपको ये कहा जाए कि आप किसी एक जगह को चुनिए जहां आप घूमने जाना चाहते हैं, तो वो जगह कौन सी होगी?

दाग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मिलो तो प्यार से, फिल्म हीर रांझा का गीत इन्होंने जो है वो उस गीत के बारे में अंदाज लगाया है, और लिखते हैं कि बेहद लोकप्रिय और रोमांटिक गीत है ये, लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया, और प्रिया राजवंश और राजकुमार नज़र आते हैं, यानी पूरी जो एक डिटेल है वो इन्होंने लिखी है, और कुछ और गीतों को इन्होंने अनुमान लगाया है। आपकी कसम फिल्म का गीत जिसमें किशोर कुमार जी की आवाज़ है, और एक और श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार इन्होंने लिखा है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि नजराना या नजराना भेजा है किसी ने प्यार का, इन हंसी वादियों से हुस्न पहाड़ों का, इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके, और रूठे रब को मनाना आसान, कोयल क्यों गाए। जी हाँ, तो कुछ कुछ जो गीत हैं वो तो मिल ही रहे हैं श्रोताओं, और आपने बहुत सही बहुत ठीक अनुमान लगाया है कि ठीक है, बहुत सारे गीत का अगर मिलान न हो पाए तो भी शब्दों को आप बिल्कुल सही परख रहे हैं, ये बात तो कहनी पड़ेगी। एक हमारे और श्रोता देश परदेश के गीत को जो है वो सोच रहे हैं, और लैला मजनू फिल्म का गीत इस रेशमी पाजेब की झनकार ये इन्होंने सोचा है और लिखा है इस बारे में। और हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि रूठे हो सनम तो फिर क्या है, रूठे सैयां हमारे सैयां क्यों रूठे, न रूठो रूठो, और तुमने किसी से प्यार किया, और भी कुछ एक रूठने से इन्होंने गीत बताए हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत पर छोटी सी कविता याद आई है इनको कि जिंदगी प्यार का एक नजराना है, हर मिलन में छुपा अफसाना है, वादियों में दिल को जो सुकून मिले वो मौसम भी जैसे दीवाना है, कोयल की तान में

श्रोताओं, जरा ये तो बताइए कि आप मीना बाजार से क्या समझते हैं, क्योंकि आज ये शब्द भी हमारी इबारत में है, क्योंकि लोग छुट्टियों का मौसम है और ऐसे में जो सर्द वादियाँ हैं, जो पहाड़ी वादियाँ हैं, या फिर अपने गांव की सैर पर निकल चुके हैं और बातें करें अगर कुछ ख़ास अंचलों की, तो वहाँ मीना बाज़ार सजते हैं। मीना बाज़ार के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। क्या ये मीना बाज़ार आज भी लगते हैं, इस बारे में हमें बताइए। आप सुन रहे थे ये गीत आप आए बाहर आई, इस फिल्म से मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर के।

युगल स्वरों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वर्ष 1964 में से रेडियो मेरा सबसे प्यारा दोस्त बना, जो इस जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक नहीं भूल पाए, और उसमें सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन विविध भारती सुरीली धड़कन है। जी हाँ, विविध भारती तो सुरीली धड़कन है ही, जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। ये सुबह में कार्यक्रम जागो सुबह हो गई उठती है मेरे साथ, और छाया गीत कार्यक्रम के समापन के बाद सोती भी है मेरे साथ, जिससे मैं हर दिन अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता हूँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि रिकॉर्ड से जब गीत सुनते थे तो कैसेटों के समय मैंने सीरीज़ की 320 कैसेट रिकॉर्ड से पुराने सदाबहार गीत भरवाए थे, बाद में 8 सीडी में डाउनलोड करवाए, फिर अब मेरे पास पेन ड्राइव में सेव है सारे गीत इस रिकॉर्ड से, यहाँ तक कि गीतों का जो सुरीला सफ़र है वो तय किया है। एक और श्रोता ने करवटें बदलते रहे इस गीत की बात करी है, और एक और श्रोता ने लिखा है कि आपकी इस जादुई और रूहानी इबारत ने फिजाओं में जैसे एक अलग सी मिठास घोल दी है। कोयल की कूक और वादियों में सुकून को समेटते हुए मधुवंती और बसंत बहार जैसे शास्त्रीय रागों का जिक्र, साथ ही मीना बाजार जैसी चमकदार दुनिया का एहसास, ये सब मिलकर एक ऐसा कोलाज रचते हैं जो दिल को छू जाता है। आज इन शब्दों से गीत हो सकते हैं। जिंदगी, प्यार, नजराना, वादियाँ और तमाम शब्द जो हैं इन्होंने लिखे हुए हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि प्यार का नजराना, वादियाँ, सैर, मीना बाजार, बसंत बहार, रूठना, मौसम, फूल, कोयल की कूक, पाजीब आदि शब्द होंगे। ये वादियाँ, ये फिजाएँ बुला रही हैं इस रेशमी पाजीब की झनकार के सदके। वैसे आजकल ये बात भी है श्रोताओं कि देखिए कहीं कोई रूठे ना।

शोभा गुट्टू की आवाज में ये ठुमरी दादरा आप सुन रहे थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप आए तो जुड़ना हो रहा है आज। इबारत को पढ़कर आज दिल को थोड़ा सुकून मिला कि आज किन शब्दों से सजे हुए गीत होंगे। आज का सुरीला सफर इन शब्दों के इर्द गिर्द घूमेगा। जिंदगी नजराना मिलो बना चलें वादियां आजकल मौसम करवटें बाजार कोयल सज गीत किसी रूठे पाजेब की बात इतनी अंत में और प्रेम प्यार मुस्कुराहट के साथ समापन होगा। जी हाँ होगा तो और भी मौसम की भी बातें होंगी क्योंकि हाँ कोई भी मौसम हो श्रोताओ थोड़ा कष्टदायक तो होता है। जैसे बारिश के मौसम की ही बात करें या सर्दी के मौसम की ही बात करें या फिर गर्मी के मौसम की बात करें लेकिन हर मौसम का अपना लुत्फ है। हमें चाहे ये मौसम अच्छे लगें या न लगें शरीर को सुकून दें या न दें लेकिन इस मौसम के बारे में कभी कोयल से जाकर पूछिए इसके साथ ही जो पपीहे की पुकार है उससे पूछिए तो ये मौसम उनको कैसा लगता है। बड़ा सुहावना लगता है कोयल को और किसानों से पूछिए जो हमारे लिए मीठे मीठे आम बहुत सारे कह सकते हैं कि जैसे ढेर सी लगा देते हैं। और ये मौसम तमाम खूबसूरत फलों का भी होता है फूलों का भी होता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि कभी पहाड़ों पर जाओ तो चीज़ सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वो है वादियाँ। वादियों में अजब सा सम्मोहन है जो हमें खींचता है धुंधली सी वादियों में खो जाने का मन करता है। वादियों में जाओ तो न जाने कितने गीत जाने कितनी कविताएं मन में बजने लगती हैं। पहाड़ों को कभी गौर से देखा है प्रकृति के सारे रंग वहीं आकर सिमट गए हैं। जब गर्मी के दिन परवान पर होते तो मौसम की पाजेब ध्यान से सुनिए इसमें छुपे कलरव और कुदरत के रंग जो होते हैं वो समाये होते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है इस इबारत में शामिल शब्दों में प्यार नजर आना जिंदगी मिलो चले सुकून दिल जैसे अनेक संज्ञा सरनाम विशेषण परक ही नहीं अभी तो क्रिया परक शब्दों के साथ ही संबोधन भी है और इस दृष्टिकोण से संभावित गीतों के चयन में ही पूरा दिन क्या और भी अधिक समय लग सकता है। फिर भी जितना समय है देखते हैं कितने लिख पाते हैं। और इसके आगे भी इन्होंने कुछ शब्दों के बारे में भी लिखा है कि कुछ शब्द जो होते हैं उनकी पुनरावृत्ति भी हो रही है। जी हाँ वैसे भी आप देखें श्रोताओं अगर अपने वाक्यों को भी देखें तो जीवन में बहुत सारे वाक्य बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसकी पुनरावृत्ति कई बार होती है।

श्रोताओं, हमने आपसे मीना बाजार के बारे में पूछा था, आज भी लगते हैं क्या ये मीना बाजार कहीं कहीं पर, और आपने क्या चीजें यहाँ से खरीदी हैं, अगर आप बताना चाहें तो आप जरूर बताएं। और आपके हालिया सफर के बारे में हमने पूछा था आपसे, यानी कि हाल में अगर आपने कोई सफर किया है तो।

अभिनेत्री रंजिता पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। हमने आपसे पूछा था मीना बाजार के बारे में श्रोताओं। जी हाँ, मीना बाजार तो आज भी लगते हैं। वैसे जो मीना बाजार की एक परंपरा है वो बहुत पुरानी परंपरा है, जो मुगल काल में ही शुरू हुई थी। और यहाँ अगर आप दिल्ली में देखें तो ये बाजार अभी भी लगता है। हस्तशिल्प, अगर कपड़े आप अच्छे अच्छे जो हाथ से बुने हुए कपड़े होते हैं उन्हें अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं यहाँ से। और भी जो देश की हाथ से बनाई चीज़ें हैं वो भी यहाँ मिलती हैं, और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो भी मिलती हैं। और अगर बात करें आगरा की तो आगरा में भी मीना बाज़ार लगते हैं, और यहाँ पर मिडनाइट बाज़ार भी लगते हैं। रात में भी शॉपिंग आप कर सकते हैं, और बच्चों के खेलकूद के लिए यहाँ बहुत सारे झूले भी लगाए जाते हैं। तो मीना बाज़ार की अपनी रौनक है। आजकल वैसे छुट्टियों का समय है तो खूब ये बाज़ार सजे हुए हैं। मौसम कोई भी हो श्रोताओं, प्यार का मौसम होता है। हर मौसम आपके लिए कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप ज़रूर ले आता है, और प्यार इसका सबसे बड़ा उपहार है जो अलग अलग शक्लों में होता है।

सुरीला सफ़र, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में आपकी शिरकत करने के लिए, आपके बातों के लिए, आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आमतौर पर हम लोग मकान और घर को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ी गहराई से सोचें तो ईंट पत्थरों से बना निवास मकान होता है, और उससे जब हमारी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, भावनाएं जुड़ जाती हैं, आशा आकांक्षा और यादें जुड़ जाती हैं, तब वही मकान हमारा घर बन जाता है। और हर किसी की हसरत होती है कि जिसे हम बेहद चाहते हों, पसंद करते हों, उसके घर के निकट अपना भी घर हो।

जब हम अपने मकान को अपना घर बनाते हैं तो अपने पसंद की हर छोटी बड़ी चीज़ों से उसे सजाते हैं, फर्नीचर हो, पर्दे हों या दीवारों पर तस्वीरें और पेंटिंग्स। घर का हर कोना, घर की हर चीज़ जैसे हमसे हौले हौले गुफ्तगु करती मालूम होती है। इस गुफ्तगु को कोई भी सुन सकता है, बशर्ते उसके पास मोहब्बत में धड़कता दिल और प्यारी सी नज़र हो।

हमारा घर हमारी यादों का और भविष्य के सुनहरे ख्वाबों का पिटारा होता है। घर सिर्फ हमारे शरीर को ही आराम नहीं देता, बल्कि हमारे मन को, हमारी आत्मा को भी सुकून पहुंचाता है। घर छोटा हो या बड़ा, हमारी भावनाओं से जुड़कर हमारे सुख दुख का साथी बन जाता है, हमारी पूरी जीवन यात्रा का साक्षी बन जाता है।

का सूरज प्यार का चंदा प्यार के दिन और रातें प्यार का सूरज प्यार का चंदा प्यार के दिन और रातें प्यार का अंगना।

0: छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार।
1: दोस्तों, घर भी हमसे अपेक्षा रखता है कि हम घर में प्यार और सद्भावना की सुगंध फैलाते रहें। हम खुश रहेंगे, मुस्कुराएंगे तो घर की दरों दीवारें भी मुस्कुरा उठेंगी और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी, है ना? आज त्रिवेणी का ये सफर आपने पूरा किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर। 293 सीटों में से 193 सीटों पर आ गए। तृणमूल कांग्रेस की 93 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके तीसरे स्थान पर। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों से भविष्य के राजनीतिक दिशा तय होने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरलम में सत्ता परिवर्तन तय नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने जा रही है और वो पहली बार इस पूर्वी राज्य में सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटों में से 292 के रुझान मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है और वो 193 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 93, AJUP 2, AISF 2, कांग्रेस 1 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर आगे है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहां 21 मई को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कल्याण लाहा से। कल्याण, भाजपा पश्चिम बंगाल में जीत की ओर अग्रसर है। पश्चिम बंगाल की टीएमसी से मुक्ति का नारा अब वास्तविकता में बदलता दिख रहा है। टीएमसी के पिछड़ने के क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं?
1: देखिए, हम अभी जो दिख रहे हैं ग्राउंड में, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी आगे है।

0: और जो आप बोल रहे हैं क्या का कारण हो सकता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बहुत बड़ा सिचुएशन है इधर, और आर्टिकल जो इंसिडेंट है हुआ है उसके बाद उसके सेम टाइप का बहुत सारे इंसिडेंट है, लैक ऑफ जॉब है, और आपका जो डिससेटिस्फेक्शन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके अंदर जो डिससेटिस्फेक्शन है, और आपको जैसे मैं पहले बोल रहा था जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब ऐसा नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, और आपका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जो उसका जिक्र मैं पहले किया था, वो जो आम जनता है उनका गवर्नमेंट के ऊपर जो विश्वास था, जो फेथ है, वो पूरे तरह से ध्वस्त हो गया है। इसका जो रिजल्ट आपको अभी ग्राउंड में दिख रहा है, बीजेपी बहुत सारे सीट में अभी लीडिंग है और एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ सामने आएगा।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद कल्याण। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सत्तारूढ़ एलडीएफ से बहुत आगे निकल गया है। वहां विधानसभा की सभी 140 सीटों में से 9 के परिणाम मिल गए हैं। 6 सीटें कांग्रेस, 2 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और 1 सीट आईयूएमएल ने जीती हैं। पुतुपल्ली सीट कांग्रेस के चांडी ओमन, हरिपद सीट रमेश चन्नीतला, नीलांबुर सीट आर्यदन शौकत, त्रिशूर सीट राजन जे पल्लन और कोल्लम सीट बिंदु कृष्णा ने जीती। अलतूर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के टीएम शशि विजयी रहे। रुझान इस प्रकार है, कांग्रेस 54, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 26, आईयूएमएल 22 और सीपीआई 9 पर आगे। पुदुचेरी में परिणाम और रुझानों में एआईएनआरसी की सत्ता बरकरार रहने के साफ संकेत हैं। भाजपा प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में हैं और पार्टी असम तथा पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से जीत हासिल करने जा रही है। श्री सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को नकार दिया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के रुझान भाजपा के पक्ष में उभर रहे हैं।
2: पश्चिम बंगाल में जो रुझान दिख रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि बंग भूमि में राष्ट्रवाद की तरंग उठी है और रुझान दिखा रहे हैं कि वो निरंतर एक ज्वार में परिवर्तित हो रही है, और जब वो परिणाम में परिवर्तित होंगे तो वो सुनामी के रूप में दिखाई पड़ेगी। 12 वर्षों के सतत प्रयत्न और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दूरदृष्टि के साथ, कार्यकर्ताओं के संघर्ष बलिदान के साथ हम इस मुकाम तक पहुंचते हैं। असम में 2011 के चुनाव में हमारी 3-4 सीटें, आज लगातार तीसरी बार सरकार है, ये अपने आप में दिखाता है कि पूर्वोत्तर में कितना बड़ा बदलाव आया है।
1: भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने विधानसभा चुनावों के रुझानों में ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए असम और पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके विकास मॉडल को वोट देना बताया है। भाजपा नेता रवि त्रिपाठी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को स्पष्ट जनादेश दिया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये केवल शुरुआती रुझान है और पूरी तस्वीर साफ होने पर ही कुछ कहना उचित होगा। असम में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम में विधानसभा की 126 सीटों में से 2 के परिणाम मिले हैं। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो ने मजबूत सीट जीती है। धेमाजी सीट से सत्तारूढ़ भाजपा के डॉक्टर रनुर पेगू विजयी रहे हैं। भाजपा 78, कांग्रेस 24, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 9, असम गण परिषद 8, एआईयूडीएफ 2 और अन्य 3 सीट पर आगे हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश डोले से। राकेश, असम में एनडीए अपने उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। असम सोनमलेता मोर्चा पिछड़ गया है, खुद गौरव गोगोई हार गए हैं। श्री गोगोई की हार के पीछे क्या उनके परिवार पर लगे आरोप भी एक कारण है?
3: जो परिवार आप जो बोल रहे हैं, परिवार पर लगे आरोप कारण है, ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। बट द थिंग इज दैट जो वेलफेयर स्कीम्स और जिस तरह की चीजें एनडीए गवर्नमेंट ला रही थी यहाँ पर, दिस कैन बी अ बिग रीजन, ये बहुत बड़ा एक रीजन बन सकता है,
1: खासकर महिलाओं के लिए जो वहाँ चलाए गए थे कार्यक्रम जी, और उनका भी योगदान रहा है जीत में।
3: जी, आप अरुणोदय की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक स्कीम है। अभी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि वो जो 1250 रुपीस मिल रहे थे मंथली, वो बढ़ा के 3000 कर देंगे। फिर अब हम लोग अब जब देखेंगे लास्ट इलेक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, अपर असम गढ़ था बीजेपी के लिए, वहाँ पे 36 सीट में से उन लोगों ने एनडीए ने जीता था अराउंड 31, वो वहाँ पे वो गढ़ था। पर अभी आप इस तरह के रुझान देख रहे हैं पूरे असम में बीजेपी जो है

0: लीड लेकर बैठे हुए हैं, दो तो जीत चुके हैं, फिर एक बीपीएम जो उन्हीं के घटक पार्टी है जो अलायंस पार्टी है बीटीआर रीजन से, वो भी एक जीत चुकी है। तो इन टोटल 80 बीजेपी जो है 78 सीट पे लीडिंग है अभी, और कांग्रेस मात्र 23 सीट में।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद राकेश। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों में से 3 के परिणाम मिल गए हैं और तीनों ही भाजपा के खाते में गए हैं। गुजरात की उमरेड सीट भाजपा उम्मीदवार हर्ष दभाई गोविंद भाई परमार ने जीती। कर्नाटक की बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार उमेश हुलाप्पा मेती और दावणगेरे दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ शमनूर मल्लिकार्जुन आगे हैं। महाराष्ट्र की राहुरी सीट से भाजपा उम्मीदवार अक्षय शिवाजीराव करदिले और बारामती सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनेत्रा अजित पवार बढ़त बनाए हुए हैं। नागालैंड की कोरिडांग सीट भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई एम चेन ने जीती। त्रिपुरा की धर्मनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार जाहर चक्रवर्ती विजयी रहे। नागालैंड में भाजपा उम्मीदवार दाउचीर आई हिमचेन ने 28 कोरिडांग विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में 3,123 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें 7,317 वोट मिले। उन्होंने निर्दलीय प्रतिद्वंदी तोशिकाबा को हराया, जिन्हें 4,194 वोट मिले। इस सीट के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। निर्दलीय उम्मीदवार इमते वापांग को 3,633 वोट मिले, जबकि राष्ट्रीय जनता पार्टी के आई अबेन जांग को 3,219 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार इमचाटोबा इमचेन को 147 वोट मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार टी चालुकुम्बा आओ को सबसे कम 144 वोट मिले। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके ने सभी को चौंकाते हुए 112 सीटों पर बढ़त बना ली है। एआईएडीएमके 58, डीएमके 47, पीएमके 5, कांग्रेस 4, सीपीआई 2, भाजपा 1 और अन्य 4 सीट पर आगे हैं। चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। सुशील, वर्ष 2024 में बनी अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी की अप्रत्याशित जीत ने तमिलनाडु में वर्षों से चले आ रहे डीएमके या एआईडीएमके की सरकार बनाने की परंपरा को तोड़ दिया है। इस जीत के पीछे क्या प्रमुख वजह है?
2: देखिए कनक, जो आप अगर इसकी वजह के उसमें जाएंगे तो पहली चीज तो ये है कि मतदाता ने एक नए सिरे से, खासतौर पे नए मतदाता जो यंग वोटर्स हैं और युवा मतदाता हैं, नए यंग वोटर्स यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार वोट डाल रहे थे, वो 14 लाख के आसपास थे और 1 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता 30 से कम की उम्र के थे। इनके बीच विजय का एक करिश्मा था, एक जादू था। उसके साथ ही जो सरकार के खिलाफ माहौल था, विजय ने उस माहौल को पूरी तरह से भुनाया और जयललिता के जाने के बाद इस तरीके का एक फिल्म स्टार या उस तरीके के करिश्मे वाले विपक्ष के नेता की कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को भरने में विजय जो है वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से ये वादा भी किया था, उन्होंने कोई द्रविड़ियन पॉलिटिक्स के जो सिंबल्स थे उनको भी अपने साथ अपने प्रचार में जरूर कैरी किया, लेकिन उसका कहीं पर खुले तौर पर सामने जिक्र नहीं आया। वो किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो किसी आंदोलन की उपज नहीं थे, लेकिन सरकार के खिलाफ गुस्सा और नई जनरेशन, यंग जनरेशन, जेंजी जो है और युवा जो है, उनकी नई सोच ने तमिलनाडु में ये राजनीतिक परिवर्तन दिखाया है जो द्रविड़ियन राजनीति से अलग दिखता जाता हुआ नजर आ रहा है।
1: धन्यवाद, धन्यवाद सुशील। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जमैका के प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। दोनों पक्षों के बीच खासकर बुनियादी ढांचे, मानव विकास और तकनीक आधारित शासन तथा उद्यमिता पर विमर्श

0: दीपेंद्र से। दीपेंद्र, इन चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से पार्टी मुख्यालय में खुशी का माहौल होगा, क्या देख रहे हैं आप वहाँ?
1: बिल्कुल कनक, असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए अब पार्टी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। अब पार्टी कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए हुए और जीत की खुशी में नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। इसके अलावा आतिशबाजी भी हो रही है और ढोल नगाड़े की धुन पर जो है जश्न नाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं कि जो बीजेपी के पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता है, इस जीत को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा के सुशासन मॉडल पर जनता के भरोसे को बता रहे हैं। और रुझानों के अनुसार बीजेपी पहली बार जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई दिख रही है, वही लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाएगी। और आपको बता दूं कि शाम में प्रधानमंत्री मोदी पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनके स्वागत के लिए पार्टी मुख्यालय में तैयारियां चल रही हैं। जी,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। भारत ने लिपुलेख दर्रे पर नेपाल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि दर्रा वर्ष 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत लगातार कहता रहा है कि ऐसे दावे अनुचित और ऐतिहासिक तथ्यों से परे हैं। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल ने कहा है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार में आता है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 159 अंक की बढ़ोतरी के साथ 77,073 पर, जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 24,056 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से देश भर में आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी जीत की ओर अग्रसर, 293 सीटों में से 192 सीटों पर आगे, तृणमूल कांग्रेस की 95 सीटों पर बढ़त। असम में भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को तैयार। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बनने विजय की पार्टी टीवीके की अपने पहले ही चुनाव में जबरदस्त सफलता। सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी तीसरे स्थान पर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर। पुदुचेरी में एनडीए की सत्ता में फिर वापसी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने त्रिपुरा, नागालैंड और गुजरात में एक एक सीट जीती। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती।

0: कोहरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, तर्ज थी हेमंत कुमार की। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। तीन देवियां इस फिल्म का गीत है, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल।
1: अरे यारू

0: जरा ओढ़ो हो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: मखदूम मोहिनुद्दीन की रचना आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म है चा चा चा।

चा चा चा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और यही थे आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का ये प्रोग्राम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।

0: भी उन्हें सांस से संबंधित बहुत सारी समस्या भी हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये दिन उनके जीवन में सुधार हो उसके प्रति प्रोत्साहन को भी बढ़ाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा, क्योंकि कोयला खनिक दिवस हम सभी के लिए एक ऐसा अवसर है जब हम रुककर कोयला खनिकों के प्रयासों से संभव हुई अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों की सराहना कर सकते हैं।
0: जी, और इसे मनाने का सबसे अच्छा तरीका कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा खदान है जहाँ पे कि इस तरह से कोयला क्या या किसी और धातु का खनन होता हो तो वहाँ आप अपने बच्चों को ले जाइए, खुद भी जाइए, देखिए सामने से कि किस तरह से और कितनी मुश्किल हालात में वो काम करते हैं।
1: चलिए, जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना हमने समझ रखा है। हालांकि ठीक है, जिंदगी को आसानी से जीना चाहिए, लेकिन कितना संघर्ष करते हैं लोग।
0: जी,
1: है ना,
0: तो ये पता भी तो चले उन्हें कि इस तरह का भी काम होता है।

0: हाँ, तो दीपा बहुत ही सुंदर गीत था ये
1: जी।
0: और काला पत्थर फिल्म का गीत था ये और ये फिल्म इन्हीं कोयला खदानों के ऊपर बनी हुई फिल्म थी, है ना।
1: और कितने अच्छे से हमें देखने को मिलता है उसमें कि कितनी दिक्कतों में, कितनी मुश्किलों में हमारे जो खनिक हैं
0: वो काम रहते
1: करते
0: हैं,
1: वो काम करते हैं। और यही बात एक संदेश कहता है कि आज के दिन समस्त विश्व में कोयला खनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन कोयला खनिकों की कठिन मेहनत और समाज में उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। साथ में एक और संदेश कहता है कि जो खदानों में अत्यंत जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करने वाले खनिकों के साहस, समर्पण और राष्ट्र के विकास में उनके योगदान को सम्मानित करता है। तो ये सारी बातें हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी।
0: एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि ये उन मजदूरों के सम्मान में मनाया जाता है जो कोयले की खदान में खतरनाक काम करते हैं। कोयले की खदान में काम करना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और ये दिन उन मजदूरों की मेहनत और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को याद करने का दिन है, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। वहीं एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि कोयला खनिक दिवस ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में से एक है और उनके आपूर्ति हेतु प्राकृतिक रूप से खदानें पाई जाती हैं और उनके खोदने हेतु श्रमिक से लेकर मंत्रालय तक की समुचित व्यवस्था है और इस खनिज के उत्पादन में लगे श्रमिकों के हित का यह दिवस है। इस दृष्टिकोण से तो इस दिवस का महत्व है, लेकिन अब देखना यह है कि खनिज या फिर खनिक शब्दों में से कौन सा शब्द है, क्योंकि शब्द के अनुसार ही भावार्थ हुआ करते हैं। तो आज है खनिक दिवस।
1: हाँ। कोल माइनस डे इसको अंग्रेजी में कहते हैं और
0: कोयला खनिक दिवस इसको
1: हिंदी में कहते हैं। तो भाई देखिए ना, खनन की गहराइयों में से अब हम निकल करके चलते हैं दिल की
0: दुनिया में।
1: और देखिए ना,
0: हाँ।
1: बात एक कई बार आ जाती है ना, दिल की माने या दुनिया की। और एक और बड़ा प्रसिद्ध सा जुमला है, लोग क्या कहेंगे।
0: हर जगह है ये जुमला,
1: है ना,
0: हर परिस्थिति मारे भाई, लोग क्या कहेंगे, तुमने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे। और इस लोग क्या कहेंगे के चक्कर में हम जो है अपनी जिंदगी कई बार खराब भी कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया के डर से।
1: वो ही जब आप ये कह रही थी तो मुझे ये विचार आ रहा था कि कितने सारे सपने टूटते हैं।
0: बहुत सारे खाब टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इतना दबाव बना दिया जाता है दीन दुनिया का कि दुनिया क्या कह देगी। बल्कि जबकि दुनिया को तो कहना ही है, दुनिया का काम है कहना, और कहने के बाद वो चुप हो जाती है, अपने अपने रास्ते चली जाती है। और अगर आपने अपने सपने चकनाचूर कर लिए तब भी दुनिया को कोई मतलब नहीं होता कि आप अपनी जिंदगी को बोझ समझ कर जी रहे हैं या अपने सपनों को जी रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: और दुनिया तो ये चाहती है कि बस एक निश्चित समय तक पढ़ाई करो, उसके बाद शादी कर लो, उसके बाद आपका घर संसार बस जाए और फिर बस उसी ढर्रे पे चलते चले जाइए
0: जो बरसों से हमारे यहाँ ढर्रा चल रहा है। अरे उसमें कुछ परिवर्तन अगर कोई लड़की खासतौर से या कोई बच्चा लाना चाहता है, कोई युवा, तो देखिए वो गलत तो नहीं कर रहा है।
1: सही बात है,
0: ये देखिए ना उसके सपने हैं। अगर वो सही समय पर पढ़ के फिर शादी विवाह करना चाहता है या गृहस्थी बसाना चाहता है तो लोग उसको चैन की सांस नहीं लेने देते।
1: सही बात,
0: घर वाले भी कई बार हालांकि दीन दुनिया के डर से वो भी डर मारे ही बच्चों को दबाव बनाते हैं कि भाई दुनिया क्या कहेगी, है ना, इस दुनिया क्या कहेगी के चक्कर में जो है जिंदगी बहुत अजीबोगरीब हो जाती है।
1: बिल्कुल। और एक सवाल ये आता है कि कब दुनिया की माने और कब दिल की माने। तो हम अपने श्रोताओं से भी जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि कब दुनिया की माननी चाहिए और कब दिल की माननी चाहिए। वैसे उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी भी हैं। वैसे हमें जो लगता है कि भाई जब सुरक्षा की बात आए, नैतिकता की बात आए,

0: या अपनों के हित के लिए कुछ अगर करना पड़े तो शायद आप बड़ों का अनुभव को आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो परिस्थिति आपके सामने आई वहां आप बड़ों की बात को ले सकते हैं, उनका कोई पुराना अनुभव है उससे आप कुछ सीख ले करके
1: बिल्कुल
0: अपनी जो दिल की बात है उसको साथ में मिला करके
1: काम कर सकते हैं। हाँ, मतलब कोई मध्यम मार्ग निकलना चाहिए
0: जी,
1: ना
0: जी।
1: ऐसा नहीं कि आपने जिद में आकर कुछ भी कर लिया, आप चाहे जो डिसीजन ले लें वो समाज के हित में नहीं भी हो सकते हैं डिसीजन, ऐसा नहीं है। लेकिन लोग क्या कहेंगे वाला जो जुमला लेकर जब हम अपने सपनों का गला घोट लेते हैं, और क्योंकि दुनिया हम एक सांचे में ढालना चाहती है जैसा तुमने कहा, और क्या हमने कभी गौर किया कि हमारे भीतर एक प्यारी सी आवाज है, वो आवाज जो गूंजती है तब आप अपनी पसंद की कोई काम करना चाहते हैं, आप अपने पसंद पे गुनगुनाना चाहते हैं, आप अपनी पसंद से नृत्य करना चाहते हैं, पेंटिंग बनाना चाहते हैं, है ना, दुनिया में नाम करना चाहते हैं, लीक से हटकर आप चाहते हैं थोड़ा सा लीक से हटकर मैं अपनी जिंदगी बिताऊं, और वो है आपके दिल की आवाज।
0: बिल्कुल। और एक कहानी है छोटी सी, हमारे एक श्रोता ने लिख भेजी है, ये पढ़ के बताना चाहते हैं कि पंचतंत्र की कहानी में उन्होंने पढ़ा था कि एक गधे को लेकर एक बाप और बेटा
1: जा रहे थे
0: देश के घूमने के लिए निकले थे। कभी बेटा गधे पे बैठता तो लोग कहते बेटा बैठा है, अब बाप पैदल चल रहा है। जब बाप बैठ जाता तो लोग कहते कि कैसा बाप है, गधे पर बैठा है और
1: बेटा पैदल चल रहा है,
0: पैदल चला रहा है। तब उन्होंने दुनिया से तंग आकर के दोनों बाप बेटा बैठ जाते हैं तो लोग कहते हैं कैसे निर्दय हैं, दोनों बाप बेटे एक ही जानवर पर बैठ गए हैं। तो भैया ये दुनिया है, कुछ भी करोगे तो कुछ तो सुनना ही पड़ेगा। तो इनका तो ये कहना है, हमारी सखी ये कह रही है कि छोड़ो बेकार की बातें, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी ही है।
1: बिल्कुल, शमशाद बेगम की जो आवाज में गाना है ना, दुनिया का ले लो मजा, दुनिया तुम्हारी है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर आप इस तरह से दुनिया की सुनेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि दिल की सुनना का मतलब हो जाता है बागी हो जाना, कि हम बागी हो गए हैं, हमने विद्रोह कर दिया है ना। और खासतौर से अगर लड़कियां अपने दिल की बात कर लें तो आज भी कहा जाता है देखो कितनी जिद्दी है, अपने माता पिता का कहना ही नहीं मानती, उसको समाज में रहना ही नहीं आता है, समाज की चिंता ही नहीं है।
0: ये बात कहीं ऐसा नहीं है कि छोटे शहर, सब जगह है,
1: सब जगह है, ये हर जगह है कि देखिए माँ बाप ने इसको संस्कार ही नहीं दिए है ना, जाने क्या अपने तरीके से सोच रही है। तो ये जब बातें जब आती हैं तो एक लड़की के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की माने, विशेष बात सोचने लायक है, गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों की बात माननी चाहिए, लेकिन देखना यह है कि कौन सही है कौन गलत। अगर आपको लगता है कि आपका दिल सही है और बेशक दिल की माने, लेकिन कभी कभार दिल गलत हो जाता है, तो आप समाज को देखिए। दुनिया अगर कह रही है दुनिया की माननी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि दुनिया आपको कितना भी रोक ले हमें वही करना है जो हम करना चाहते हैं, तो फिर वो आपको सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं।
0: बिल्कुल। और वही एक और संदेश आया है, ये कहती हैं कि जो लोग दुनिया क्या कहेगी ये सोचकर जीते हैं वो कभी खुश नहीं रह पाते, आगे बढ़ नहीं पाते, और उनकी हालत कुएं के मेंढक की तरह हो जाती है, उनकी जिंदगी सीमित दायरे में सिमट कर रह जाती है। अगर बड़े बड़े समाज सुधारक दुनिया की मानते तो आज महिलाओं का और समाज का जो विकास हुआ है वो शायद नहीं होता। तो इसलिए वो कह रही है कि हम आज एक विकसित समाज में जी रहे हैं जहाँ पे हमें दुनिया के साथ अपने दिल की भी सुनना बहुत जरूरी है।
1: बहुत सही बात। और एक श्रोता लिखते हैं कि हम बोलते जरूर है कि दिल की सुने, लेकिन मुझे जहां तक लगता है हम सभी जमाने के हिसाब से ही चलते हैं, ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, इसमें ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही कहा है। और आप कहें तो एक गीत सुन ले,
0: चलिए।
2: अरे चुपके से दिल दे दे,
3: नहीं ते
2: नहीं ते

0: तो दीपा इस गाने में भी यही कहा था कि भाई दिल दे दे चुपके से, लेकिन डर क्या है कि बदनाम हो जाएंगे तो क्या हो गए।
1: और देखिए कुछ ऐसी बात पर एक हमारी एक सखी ने लिखी कि वैसे एक बात कहें, जब हमारी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजने की बात आई थी तो घर के सारे लोगों ने, दुनिया वालों ने मना कर दिया था कि अरे लड़की को कहाँ भेज रहे हो अकेले इतनी दूर, भेजोगे तो कैसे क्या होगा। पर हमने अपने दिल की सुनी और आज हमें अपनी उस बेटी पर और खुद पर नाज है, जब वो पढ़कर इतने अच्छे पद पर काम भी कर रही है और अपने प्यारे से परिवार को भी संभाल रही है। अगर दुनिया की मानते तो हम शायद कुछ नहीं कर पाते।
0: कितनी बड़ी बात कही है, इससे कितना बड़ा संदेश जाता है कि हम डर के मारे अपनी बेटियों की प्रतिभा का गला घोट देते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, कल क्या होगा, हम किसको क्या जवाब देंगे, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। कितने सारे बेतुके सवालों से हम घिरे रहते हैं।
1: और कभी कभी कोई एक लीक से हटकर कोई लेना चाहता है, कोई
0: डिसीजन
1: लेना चाहता है। अब आज के जमाने में मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है, बच्ची या बच्चा, तो वो कैमरा लेकर के और अपनी लाइट्स लेकर के सब जगह जगह घूम रहे हैं। ऐसे में माता पिता को लगता है कि क्या कर रहे हो तुम ये, लेकिन वो बताते हैं कि इसमें किस तरह से कमाई होती है। हाँ, बेसिक पढ़ाई होना, ये सब चीजें, एक ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर बच्चा कुछ अलग करना चाहता है आप एक मौका तो दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: उसके दिल की सुनिए। अगर अपने दिल की नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने बच्चे का या
0: विश्वास
1: पर विश्वास कीजिए।
0: तुम्हें बताऊं दीपा, मेरी एक दोस्त है, उनकी बेटी इसी तरह का काम करती है और आज फॉरेन में है। वो कैमरा लेके जाती हैं, घूमती हैं, दिल्ली में रहते थे वो, वहां उन्होंने पढ़ाई पूरी की और माता पिता ने अपनी बच्ची को इस मामले में विश्वास दिलाया और छूट दी और बच्ची आज बहुत बड़ी फोटोग्राफर के रूप में अपना काम भी कर रही है।
1: और ये बात जहां पर कि दो बच्चियां हैं तो वहां पे बड़ी बात ये आ जाती है, हम इस बारे में बात और आगे करेंगे।
0: अभी वक्त है एक अंतराल का।
1: जी,

0: इस अंतराल के बाद अभी सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: तो बात हो रही थी कि जहाँ पर दो बच्चियां होती हैं घर में, तो माता पिता को कहा जाता है आप अपने बच्चों को पास में ही रखना, दूर नहीं करना, शादी ब्याह भी करो तो बस आसपास ही होना चाहिए, बच्चों को क्यों दूर भेजना है। अरे भाई वो मम्मी पापा का डिसीजन है, बच्चों का निर्णय है, हम क्यों बोले। लेकिन दुनिया आपको जहाँ सिर्फ बच्चियां होती है ना, बहुत उनको टोका टाकी किया जाता है,
0: बहुत दिक्कत आती है उनको माता पिता को, क्योंकि समाज में दुनिया भर के लोग हैं जो आप पर नजर है, उनकी अपने घर पे नजर नहीं होती, दूसरों के घर पे दूसरों की बेटियों पर निगाह होती है कि वो कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, कैसे जाएगी। तो इस तरह के डिसीजन माता पिता के अपने डिसीजन है, उन्हें लेने दीजिए और बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए। अब देखिए हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि दिल की माने या दुनिया की, दिल की माने तो वो हमें क्या चाहिए, क्या खुशी देता है, कहाँ सुकून मिलेगा, वहीं दुनिया की माने तो हकीकत दिखाती है, जिम्मेदारियां, पैसा, रिश्ता, जोखिम,

0: पैसा फैसला दिल से शुरू करो, लेकिन उसको दिमाग और हकीकत से चेक भी करो।
1: सही बात है। और एक हमारे श्रोता भाई लिखते हैं कि दिल के माने या दुनिया के, भाई समय समय पर दोनों के मान लीजिए ना, क्योंकि रहना तो आपको दुनिया में ही है और दिल ना हो फिर रहेंगे कैसे। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, दोनों की दिमाग से सुन लीजिए, बस इतनी सी बात है। जब जब दुनिया से दिल उब जाए तब दिल की दिमाग के साथ मान लीजिए। आखिर विवेक भी तो कोई बात है ना। तो देखिए बात तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दिल से उब गए तो हम दुनिया की सुन लें और दुनिया से उब गए तो दिल की सुने। जो सही होगा जीवन,
0: डिसीजन लेना बहुत जरूरी। वही कहा ना, विवेक से काम लेना होता है
1: जी।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की, असल में ये कोई सीधा सवाल नहीं है, ये जिंदगी के उन मोड़ों का सवाल है जहाँ दोनों रास्ते अलग अलग दिशा में जाते हैं। दिल अक्सर धीरे से कहता है यही सही है, बस महसूस करो, और दुनिया जोर से कहती है सोचो समझो फिर कदम बढ़ाओ। सिर्फ दिल की मानोगे तो कभी कभी ठोकर लग सकती है, और सिर्फ दुनिया की सुनोगे तो अंदर कहीं खालीपन रह सकती है। शायद सही रास्ता बीच का होता है, जहां दिल की बात सुनी जाए लेकिन दुनिया की समझ भी साथ में रखी जाए।
1: सही कहा आपने।
0: और अब देखिए दीपा, आज एक कहानी लेकर आए हैं हम, बताइए आप।
1: जी बिल्कुल, आज कहानी है एक्ट्रेस जिसका कि हम सुनेंगे भाग 3।
0: तो चलिए पहले सुनते हैं ये कहानी।
1: चलिए,
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। इस कहानी में पिछले भाग में आपने सुना,
4: दोनों तरफ से इस प्रीति को निभाने के वादे हुए एक महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई कई बार आते, उन्हें एक क्षण का वियोग भी असह्य था। कभी दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते, कभी हरी हरी घास पर पार्कों में बैठे बातें करते, कभी गाना बजाना होता, नित्य नए प्रोग्राम बनते थे। सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फांस लिया है और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत देय थी। उधर कुंवर साहब के भाई बंद भी गाफिल न थे, वे किसी भांति उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे। उन्हें ये भय तो न था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे, हाँ ये भय अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम कर दें या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक बना दें। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगे, यहां तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा,
5: मैंने वकीलों से पूछ लिया है, एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं, उसे सिविल मैरिज कहते हैं। मैं प्रातःकाल आ जाऊंगा, तैयार रहना।
4: तारा सिर झुकाए रही, मुंह से एक शब्द ना निकला। कुंवर साहब चले गए पर तारा वही मूर्ति की भांति बैठी रही।
3: कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनिए इस कहानी का तीसरा भाग।
4: विवाह का एक दिन और बाकी है। तारा को चारों ओर से बधाइयां मिल रही हैं। थिएटर के सभी स्त्री पुरुषों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं। कुंवर साहब ने भी आभूषणों से सजा हुआ एक सिंगार दान भेंट किया है। उनके दो चार अंतरंग मित्रों ने भांति भांति के सौगात भेजे हैं, पर तारा के सुंदर मुख पर हर्ष की रेखा भी नहीं नजर आती। वो शुभ्ध और उदास है, उसके मन में चार दिनों से निरंतर

0: अंतर यही प्रश्न उठ रहा है।
1: उफ, क्या मैं कुंवर साहब के साथ विश्वासघात करूं? जिस प्रेम के देवता ने मेरे लिए अपने कुल की मर्यादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा, जिसका हृदय हिम कण के समान निष्कलंक है, पर्वत के समान विशाल, उसी से कपट करूं? उसी से कपट करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी नीचता नहीं कर सकती। मैंने अपने जीवन में कितने ही युवकों से प्रेम का अभिनय किया है, कितने ही प्रेम के मतवालों को वो सब्ज बाग दिखा चुकी हूं, पर कभी मेरे मन में ऐसी दुविधा न हुई थी, कभी नहीं। कभी हृदय ने उसका तिरस्कार न किया था। क्या इसका कारण इसके सिवा कुछ और था? ऐसा अनुराग मुझे और कहीं नहीं मिला। क्या मैं कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती हूँ? हाँ, अवश्य बना सकती हूँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं बना सकती। इस विषय में मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है। भक्ति के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो असाध्य हो? पर क्या मैं प्रकृति को धोखा दे सकती हूँ? ढलते हुए सूर्य में मध्यान्ह का सा प्रकाश हो सकता है? असंभव, असंभव है। वो स्फूर्ति, वो चपलता, वो विनोद, वो सरल छवि, वो तल्लीनता, वो त्याग, वो आत्मविश्वास, मैं कहां से लाऊंगी? मैं कहां से लाऊंगी वो आत्मविश्वास जिसके सम्मिश्रण को यौवन कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं कितना भी चाहूं पर कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। नहीं नहीं नहीं बना सकती। आह, ये नौबत ही क्यों आने दी मैंने? क्यों क्यों कृत्रिम साधनों से, बनावटी श्रृंगार से कुंवर साहब को धोखे में डाला? अब इतना सब कुछ हो जाने पर मैं किस मुंह से कह सकूंगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूं? जवानी मुझसे कब की विदा हो चुकी है? अब केवल उसका पदचिन्ह रह गया है। हाँ, केवल पदचिन्ह।
0: रात के 12 बज गए थे। तारा मेज के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी थी। मेज पर उपहारों के ढेर लगे हुए थे, पर वो किसी चीज की ओर आंख उठाकर भी ना देखती थी। अभी 4 दिन पहले वो इन्हीं चीजों पर प्राण देती थी। उसे हमेशा ऐसी चीजों की तलाश रहती थी जो काल के चिन्हों को मिटा सके, पर अब उन्हीं चीजों से उसे घृणा हो रही है। तारा ने सोचा,
1: प्रेम सत्य है, सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सोचती हूं क्यों ना यहां से कहीं भाग जाऊं, किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां कोई मुझे जानता भी ना हो। कुछ दिनों के बाद जब कुंवर साहब का विवाह हो जाए तो फिर आकर उनसे मिलूं और ये सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाऊं। इस समय कुंवर साहब पर वज्रपात सा होगा, न जाने उनकी क्या दशा होगी। पर इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। मुझे कितना ही दुख क्यों ना हो, मैं अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती। नहीं नहीं कर सकती। मेरे लिए इस स्वर्गीय प्रेम की स्मृति, इसकी वेदना ही बहुत है, और इससे अधिक मेरा अधिकार नहीं।
0: दाई ने आकर कहा,
2: बाई जी चलिए कुछ थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, अब तो 12 बज गए।
1: हाँ, नहीं नहीं, जरा भी भूख नहीं है। सुनो, ऐसा करो तुम जाकर खा लो।
2: देखिए मुझे भूल ना जाइएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
1: अरे मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा एक बात बता, अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना?
2: अरे बाई जी, मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है,

0: आप अपना कोई उतारा दे दीजिएगा।
1: दाई चले गई। तारा ने घड़ी की ओर देखा, सचमुच 12 बज गए थे। केवल 6 घंटे और हैं। प्रातःकाल कुंवर साहब उसे विवाह मंदिर में ले जाने के लिए आ जाएंगे।
2: हे भगवान, जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों तक मुझे वंचित रखा, वो आज क्यों सामने ले आए? वैसे ये भी तुम्हारी ही क्रीड़ा है।
1: तारा ने एक सफेद साड़ी पहन ली, सारे आभूषण उतार कर रख दिए। गर्म पानी मौजूद था, साबुन और पानी से मुंह धोया और आईने के सम्मुख जा खड़ी हो गई। कहां थी वो छवि, वो ज्योति जो आंखों को लुभा लेती थी? रूप वही था पर कांति कहां? अब भी वो यौवन का स्वांग भर सकती है? तारा को अब वहां एक क्षण भी और रहना कठिन हो गया। मेज पर फैले हुए आभूषण और विलास की सामग्रियां मानो उसे काटने लगी। ये कृत्रिम जीवन असह्य हो उठा। खस और बिजली के पंखों से सजा हुआ शीतल भवन उसे भट्टी के समान तपाने लगा। उसने सोचा,
2: कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहां भाग जाऊं? रेल से भागती हूं तो भागने ना पाऊंगी। सवेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। ऐसे रास्ते से जाऊं जिधर किसी का ख्याल भी ना जाए। हाँ, ऐसा ही करती हूं।
1: तारा का हृदय इस समय गर्व से छलका पड़ता था। वो दुखी ना थी, निराश ना थी। फिर कुंवर साहब से मिलेगी, किंतु वो निस्वार्थ संयोग होगा। प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है, फिर दुख क्यों हो और निराश क्यों हो? सहसा उसे ख्याल आया,
2: कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसा ना हो कि कुंवर साहब मुझे वहां ना पाकर शोक विवलता की दशा में अनर्थ कर बैठे। डर लगता है, कुछ भी अनिष्ट हो सकता है।
1: इस कल्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उसका मन कातर हो उठा।
2: ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसा ना हो कुंवर साहब मुझे वहां ना पाकर शोक विफलता की दशा में अनर्थ कर बैठे। कुछ अनिष्ट हो सकता है। ऐसा करती हूं, पत्र लिखती हूं।
1: वो मेज पर जा बैठी और ये पत्र लिखने लगी।
2: हे प्रियतम, मुझे क्षमा करना, मैं खुद को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वो स्वरूप दिखा दिया जिसकी इस जीवन में मैं आशा न कर सकी थी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जब जीऊंगी तुम्हारे प्रेम में मगन रहूंगी। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि प्रेम की स्मृति में प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद है। प्रीतम, मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे। और यही मेरे लौटने की शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण, नाराज न होना। और ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे, अपनी ओर से वधु के लिए छोड़े जाती हूं। हाँ, केवल वो मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है, अपने साथ लिए जाती हूं। और तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, मेरी तलाश न करना। मैं तुम्हारी हूं और सदा तुम्हारी रहूंगी। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी, तारा।
1: ये पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया, मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकल आई। थिएटर हॉल से संगीत की ध्वनि आ रही थी। एक क्षण के लिए उसके पैर बंध गए। 15 वर्षों का पुराना संबंध आज टूट रहा था। सहसा उसने मैनेजर को आते देखा। उसका कलेजा धक से हो गया। वो बड़ी तेजी से लपक कर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई। ज्यों ही मैनेजर निकल गया, वो हाथे के बाहर आई और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का रास्ता पकड़ा। गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। 10-5 साधु बैरागी

0: आदमियों के सामने लेते थे। 10-5 यात्री कंबल जमीन पर बिछाए सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सर्प की भांति रेंगती चली जाती थी। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी। मल्लाहा नौका में बैठा हुआ था। तारा ने मल्लाहा को पुकारा,
1: माँ जी उस पार नाव ले चलेगा क्या?
2: इतनी रात गए नाव न जाई?
1: हाँ रात है इसीलिए दूनी मजदूरी दूंगी, अब बोल चलेगा?
0: मगर दुगुनी मजदूरी की बात सुनकर उसने डांड उठाया और नाव को खोलता हुआ बोला,
2: सरकार उस पार कहाँ जाई है?
1: उस पार एक गांव में जाना है, चलो ना।
2: मुदा इतनी रात गए कौनो सवारी शिकारी न मिली?
1: कोई हर्ज नहीं, बस तुम मुझे उस पार पहुंचा दो मांझी। हाँ उस पार पहुंचा दो।
0: मांझी ने नाव खोल दी। तारा उस पर जा बैठी और नौका मंद मंद गति से चलने लगी, मानो जीव स्वप्न साम्राज्य में विचर रहा हो। इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी से उस पार अपनी उज्जवल नौका खेता हुआ निकला और व्योम सागर को पार करने लगा।

सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस। आज आपने सुना इस कहानी का तीसरा भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार जी श्याम, कुंवर निर्मलकांत, जयंत पात्रीकर, अभिनेत्री तारा देवी, रेणु चतुर्वेदी, दाई संगीता श्रीवास्तव, माझी राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: तो दीपा, कहानियाँ तो हमारे जीवन को हमेशा से प्रेरित करती रही हैं, है ना?
1: और वो एक अलग ही दुनिया में ले जाती
0: हैं। हाँ, और कभी जब हमें लगता है कि हम कहानीकार बन सकते हैं, वहाँ दिल की बहुत चलती है, पता है? कोई लेखक जब लिखता है, समाज को देखता है, लेकिन उसका दिल क्या कहना चाहता है, दिल क्या कल्पना करता है, ये लेखक अच्छे से जानता है।
1: सही कहा आपने। और देखिए, एक संदेश ले ले क्या दिल की मानी?
0: हाँ, वही तो
1: है ना। ये संदेश कह रहा है कि
2: संसार के रचयिता ने हमें सभी को एक बहुमूल्य भेंट दी है, वो है शरीर। इसमें दिल भी है और दिमाग भी। हम सभी अपने अच्छे और बुरे का निर्णय क्यों नहीं ले सकते? मेरे जीवन में कई ऐसे निर्णय हुए हैं जहां मैंने दुनिया की न सुनकर अपने दिल की सुनी और दिमाग की सुनी और सफलता भी हासिल की है। जैसे कि कहते हैं कि मेरी सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी के साथ मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से विवाह करने का निर्णय भी है, और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर कठिन समय में हमेशा साथ चलती हैं। इसलिए सुनो सबकी, दुनिया की भी सुनो, पर करो अपने दिल और दिमाग की।
0: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल की माने या दुनिया की विकल्प थोड़ा पेचीदा है। कई बार हम दिल की सुनते हैं तो दुनिया वाले सुनने नहीं देते, और अगर दुनिया की सुने तो बस सुनते ही रह जाएंगे और किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। मैं तो सुनता दुनिया की हूं, लेकिन करता हूं अपने दिल की आवाज सुनकर।
2: क्या बात है। एक संदेश कहता है कि जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें दिल की सुननी चाहिए या दुनिया की, यह तय करना कठिन हो जाता है। तब समझदारी इसी में है कि हम दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बनाकर निर्णय ले। ऐसा फैसला जिसमें सब अपनी खुशी भी हो और किसी का अहित ना हो, वही सबसे उचित और सही निर्णय है।
0: बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की गाड़ी चलाने के लिए दिल का इंजन और दिमाग, दुनिया का अनुभव का स्टेयरिंग होना जरूरी बहुत है। जहां बात जुनून, खुशी और सुकून की हो, वहां दिल की सुननी चाहिए। जहां बात व्यवहारिकता और जिम्मेदारी की हो, वहां दुनिया के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। अंत में दुनिया तो केवल आपके परिणामों को देखती है, लेकिन आपका दिल उस पूरी यात्रा को जीता है। इसलिए ऐसी राह चुने जिसे कल मुड़कर देखने पर आपके चेहरे पर पछतावा नहीं हो, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान हो।
2: बिल्कुल। यानी कि जब आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार दिल की, लेकिन अगर दुनिया में कौन शामिल है, आपके परिवार वाले या आपके शुभचिंतक, तो उनकी भी सलाह जरूर लें और जीवन में आगे चलते रहें।
0: बिल्कुल। अब तो हमें आगे बढ़ना है इस गीत के जरिए।
2: चलिए।

वो चांद मुस्काया, सितारे शर्माए, हमारा भी दिल ना मचलने लगे।

0: हाँ तो दीपा, अब हम बिहार के सैर पर चलते हैं।
1: चलिए।
0: देखिए, हमारी एक श्रोता लिखते हैं दीपा कि आज लिट्टी चोखा पर बात होगी तो बिहार का ऐसा साधारण सा पौष्टिक भोजन है जिसके लालच में मैं 2023 में एक हफ्ते पटना में रहने चला गया। मुझे रहने का मौका मिला और वहाँ की एक होटल की कर्मचारी से पूछकर हम भी एक दिन राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के सामने लिट्टी चोखा के स्टॉल पर पहुंच गए। क्या स्वाद था पूछिए मत। और इसलिए दूसरे दिन भी वहाँ लिट्टी चोखा खाने पहुंच गए, जहाँ होटल की थाली के 200 देना पड़ता था, मात्र 30 रुपए में पेट भर जाता था। सस्ता भी, पौष्टिक भी और सुपाच्य भी। अब और क्या चाहिए बताइए।
1: क्या बात है भाई। अगर ऐसा पौष्टिक और स्वाद से भरा हुआ कोई व्यंजन मिल जाए तो क्या बात है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसको बनाने का भी अब तरीका जान लेते हैं। इसको लेना है आपको 500 ग्राम गेहूं के आटे में 2-3 बड़े चम्मच घी और थोड़ा सा नमक मिलाकर सख्त आटा गूंथ लीजिए। और सत्तू की स्टफिंग के लिए आप कीजिए कि 1 कप सत्तू में बारीक कटी प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अजवाइन, कलौंजी, नींबू का रस, अचार का मसाला, सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह से मिलाइए। और स्टफिंग को, और इसको कैसे करना है, आटे की लोई में सत्तू का ये जो मिश्रण आपने बनाया ना, इसको भरना है और फिर बाटी की तरह बंद कर देना है, जैसे दाल बाटी की बाटी
0: बनाते हैं
1: उस तरह। अच्छा। से इसको बंद कर देना। अब इसे आप या तो कढ़ाई में धीमी आंच पर सेक सकते हैं, आप कुकर पे भी रख सकते हैं, या फिर आप जो ओवन होता है दाल बाटी बनाने वाली बाटी उसमें भी आप इसको रख करके सेक सकते हैं।
0: अच्छा।
1: तो धीमी आंच पर ही 20-25 मिनट में खूब अच्छे से सुनहरा होने तक सिक जाएगा। अब चोखा कैसे बनाना है, बैंगन और टमाटर को भी भून लेना है। जो बारीक जाली होती है ना, हम बैंगन के भरते के लिए जो
0: अच्छा,
1: बैंगन के लिए जो जाली रखते हैं, उस जाली को रखिए, उस पे बैंगन रख दीजिए और टमाटर रख दीजिए। तो टमाटर भी जैसे ही ऊपर से सिकने लगेगा तो उसकी छिलके आप हटा
0: निकाल लीजिए।
1: इसी तरह से हम बैंगन के भरते के लिए किस तरह से बनाते हैं वैसा ही बनाना है। फिर इसमें हमें अब इसमें छौंक न लगा करके इसे अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद आप भुना हुआ आलू भी इसमें मिला दीजिए, उबला हुआ। अब यहाँ इसमें डालिए कटा प्याज, लहसुन, मिर्च, धनिया, सरसों का तेल इसमें अच्छे से मिलाना है और ये सब चीजों को मिला करके अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए सब कुछ, और धनिया पत्ती डाल दीजिए। अब आप सर्व कीजिए कि लिट्टी के, लिट्टी को खूब अच्छे से गर्म घी में डुबो करके थाली में साइड में रखिए, चोखा रखिए, चाहे तो आप हरी चटनी बना सकते हैं, टमाटर की चटनी भी बनती है।
0: ये आपका अपना स्वाद है।
1: हाँ, ये आपका अपना स्वाद है, आप चाहे वैसे इसको
0: बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है तुमने जिस खूबसूरती के साथ बनाना बताया है ना, अगली बार जब तुम आओगी तो तुम्हारे टिफिन में लिट्टी चोखा जरूर होगा।
1: बिल्कुल, चलिए, पक्की बात।
0: तो इसी खुशी में मैं आपको सुनवाती हूँ ये गीत।
1: चलिए।

0: हाँ तो दीपा, सखी सहेली कार्यक्रम में बस आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी और
1: दीपा माहेश्वरी को
0: आज्ञा दीजिए,
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस जी मूर्ति से। इनसे बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। आज के इस प्रोग्राम में बातचीत का विषय है त्वचा के रोग और उपचार। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर एस जी मूर्ति से अमरकांत दुबे की ये बातचीत।
1: दोस्तों नमस्ते, सेहतनामा प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एस जी मूर्ति का स्वागत कर रहे हैं सेहतनामा प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
2: थैंक यू वेरी मच। श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी हाँ,
1: स्किन स्पेशलिस्ट हैं आप,

0: का मामला ऐसा है, पूरा शरीर इससे ढका हुआ है। रोग कहां से, कैसे, कितनी जगह से होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से फैलेगा, बड़ा विस्तृत सा इसका दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है। त्वचा रोग के बारे में एक जनरल सी जो बात आपको लगती है कि कहनी चाहिए।
1: त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है और दिखता हुआ है बाहर से, इसीलिए उस पर कोई भी बीमारी होती है तो दिखाई देती है और मरीज उससे थोड़ा टेंशन में आ जाता है। शरीर के अंदर की कोई बीमारी हो, समझिए लीवर में समझिए छोटा सा दाग हो या कुछ हो, तो उसे दिखाई नहीं देता, तो थोड़ा दिन चल जाता है। चमड़ी पे जो भी होगा वो दिखाई देता है, और चमड़ी जो है बहुत बड़ा ऑर्गन, इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, और वो भी कुछ काम करते हैं। चमड़ी सिर्फ हमारे शरीर को ढकने की या सुंदरता का एक कवर नहीं है, वो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, सेंसेशन के लिए काम करता है, बाद में ब्यूटी के लिए तो है ही उसका काम। तो इट इज गॉट अ मल्टीपल फंक्शन, एंड उसकी जो बीमारियां भी उतनी ही ज्यादा है। देर आर बीमारियां जो चमड़ी के लिए खास चर्म रोग होती है, और दूसरी बीमारियां जो अंदर से जो बीमारियां है वो चमड़ी में दिखाई देती है। जैसे समझिए प्लेटलेट कम हो गई तो ब्लीडिंग होने लगी, चमड़ी पे ब्लीडिंग दिखने लगा, तो हमें समझ में आता है कि ये अभी कुछ अंदर का बीमारी है। लीवर की कोई प्रॉब्लम हो तो चमड़ी पे दिखाई दी हो, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम हो तो दिखाई दी हो।
0: डॉक्टर साहब, अब इतना बृहद इतना विस्तृत विषय है, तो हम हर चीज को थोड़ा छूते छूते चलेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वही हो सकता है।
0: कोशिश करेंगे लोगों की जो गलत धारणाएं हैं, गलत मान्यताएं हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट में आप बताएं कि किस तरह की बीमारियां, अंदरूनी बीमारियां जो कुछ ऐसी जिनका असर चमड़ी पर दिखाई देता है।
1: अगर समझे खून की कमी हो तो चमड़ी जो है पेल दिखाई देता है, मतलब
0: पीली पीली
1: पीली या फीकी दिखाई देती है, जैसे फीकी। जॉन्डिस है जिसमें पीली दिखाई देती है
0: जी।
1: ब्लड के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है जैसे प्लेटलेट की कमी होने से, जैसे डेंगू आजकल बहुत ही
0: नाम
1: हो गया है, तो उसमें प्लेटलेट कम होती है तो ब्लीडिंग जब होती है चमड़ी में दिखाई देती है। तो अगर चमड़ी में ब्लीडिंग स्पॉट्स दिखाई दिए तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट यस, इसमें थोड़ा ब्लीड हो रहा है तो प्लेटलेट कम हो सकता है। एंड देर आर अदर डिसीज जैसे लिवर के प्रॉब्लम्स में है, वायरल इन्फेक्शन में वायरल रैश आते हैं, एलर्जी हो जैसे अल्टीकेरिया बोलते हैं, एलर्जी कुछ खाने पीने में एलर्जी हो तो ऊपर पित्ती जैसे निकलती है ददोड़े, वो ददोड़े भी अंदर की प्रॉब्लम से हो सकती है। एंड देर आर सो मेनी लाइक दैट। गर्मी ज्यादा बढ़ गया तो मलेरिया बोलते हैं,
0: गमोरिया
1: उसको ही मलेरिया बोलते, तो वो कुछ दवाई खा रहे हो आप, समझे स्टेरॉइड खा रहे हो तो उससे जो चमड़ी पे इन्फेक्शन हो सकती है। डायबिटिक पेशेंट में चमड़ी में इन्फेक्शन हो सकती है जो हील नहीं होती है, विटामिन की कमी से चमड़ी की सेंसेशन कम हो सकती है। आई थिंक लेप्रेसी है, लेप्रेसी में सेंसेशन कम हो सकता है, तो जख्म हुआ तो हील नहीं होगा वो भी।
0: अच्छा, लेप्रेसी में तो दाग भी आ जाते हैं,
1: दाग भी आते हैं चमड़ी पे।
0: थोड़ा सा रुकते हुए इस पर ही बात करते हैं कि लेप्रेसी में शुरुआत में जो दाग दिखाई देते हैं, लोग उसे सफेद दाग जैसा समझने लगते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं। तब इस तरह का कोई पेशेंट जब आपके पास आता है, तब आपका शुरुआती जो इलाज होता है या पेशेंट को समझाने की जो बातें होती हैं वो किस तरह से और क्या होती
1: है? देखिए क्या है, सफेद दाग जो है ना हमारे भारत में थोड़ा सा अलग नजरिए से देखा जाता है, हालांकि हर सफेद दाग कुछ खराब नहीं होता, कोई भी सफेद दाग खराब नहीं होता। इनफैक्ट सफेद दाग की 3-4 वजह है, एक तो लेप्रेसी, दूसरी विटिलिगो, थर्ड फंगल इन्फेक्शन, ये 3 मेन कारण है। उसमें जो पहले जो लेप्रेसी कुष्ठ रोग बोलते थे उसमें जो सफेद चमड़ी आती थी, और तभी के जमाने में पहले, मैं तो बोलूँ 50-60 साल 70 साल पहले, इसका इलाज इतना नहीं था, ये ऐसे पेशेंटों को थोड़े आउटकास्ट कर दिए जाते थे और कुछ तो भगवान का या कुछ कर्स माना जाता था और
0: ईश्वर का क्रोध समझकर उसको थोड़ा सा
1: उस चीज से ये सफेद दाग सभी उसी नजरिए से देखने लगे लोग अभी। वेदर इट इज विटिलिगो जो सफेद दाग की बीमारी है,
0: ये विटिलिगो को थोड़ा सा समझाएंगे।
1: विटिलिगो
0: सफेद दाग ही
1: बोलते हैं, जो जिसमें कोई सेंसेशन का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, उसमें तो मेलानिन जो रहती है जो कलर बनाने की पेशी है वो कम काम करती है, बस जैसे हमारे सफेद बाल हुए वैसे ही सफेद चमड़ी हुई, इतनी सिंपल बीमारी है वो विटिलिगो। लेकिन लोगों के नजर में वो इतनी खराब लगती है, लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि ये कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए किसी को, अगर इन्फेक्शन नहीं होता है, अगर ये लोगों के मन में जो इसके बारे में गलतफहमी है विटिलिगो के बारे में।
0: कई बार हम देखते हैं कि बहुत सफेद सफेद से लोग हैं जिनके बाल भी पूरे सफेद रहते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो विटिलिगो है।
1: वो नहीं, वो एल्बिनिज्म है, विटिलिगो का एक्सटेंशन एल्बिनिज्म, अलग है वो, उसमें भी मेलानिन का ही प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल लेवल पे अलग चीज है, पूरे शरीर में कलर बनना बंद हो गया रहता है, वो एल्बिनिज्म है, पूरे शरीर उनकी मतलब पुतली भी व्हाइट है, बाल भी व्हाइट है, वो उनको कलर नहीं बनती उसमें। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ छोटी छोटी सफेद दाग की बीमारी जो कोड बोलते हैं, मेरे ख्याल से नॉर्मल लैंग्वेज में कोड बोलते हैं, उसको भी लेप्रेसी के साथ जोड़ दिया जाता है, तो वो वैसा नहीं है। लेप्रेसी अलग चीज है, कोड अलग चीज है। विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा जिसको सफेद दाग कहा जाता है, उसमें सेंसेशंस नहीं जाते हैं
0: जी।
1: सेंसेशंस बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं। मैंने जैसे बताया वो सफेद बाल जैसी चीज है।

0: उससे ना किसी को इन्फेक्शन होने वाला है, ना कुछ अंदर फैलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ दिखने में वो सफ़ेद दिखता है। और अगर हम लोग उसे एक्सेप्ट करने लगे तो इसको ट्रीट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरी जो सफ़ेद दाग की बीमारी है, जो लेप्रसी बोलते हैं हम, उसमें सेंसेशन कम होता है, वो एक इन्फेक्शन है, वो किसी को फैल सकता है, शरीर के अंदर भी फैल सकता है और दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान भी पहुंचा सकता है।
1: किस तरह का नुकसान हो?
0: ये अंदर के ऑर्गन्स में जाएगा तो लीवर में प्रॉब्लम कर सकता है, समझे, स्किन में जब वो सेंसेशंस को लॉस होते तो जख्म हो जाता है, जख्म होता है वो बोन्स खा जाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं, तो बोन्स सब छोटे हो जाते, जैसे आपने देखा होगा कुछ स्ट्रोक के, जैसे हाथ वगैरह गलने लग जाते हैं, तो ये सब चीजें हो जाने लगती है, जगह जगह पे फोड़िया आना, नोज का ब्रिज टूट जाना, एक टिपिकल
1: मवाद और ये सारी
0: टिपिकल लियोनाइन फेस बोलते हैं उसे, चेहरा जो शेर जैसा हो जाता है ऐसा, तो ये सब बोन्स गलने से और अंदरूनी थोड़ी इन्फेक्शन फैलने से होता है ये लेप्रसी के जो।
1: अब लेप्रसी का इलाज कहाँ?
0: लेप्रसी का इलाज बहुत ही सिंपल है, इतने सालों से हो रहा है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, अभी तो लेप्रसी मेरे ख्याल से मुक्त हो सकते हैं हम लोग थोड़े सालों में अगर ट्रीटमेंट बराबर चले तो। ये जो लेप्रसी की जो डिसीज है वो चली जाएगी, लेकिन उसके साथ में जुड़ी हुई जो अन्यथा है वो उसके वजह से, हाँ उसके वजह से ये सफेद दाग
1: गलत नजरों से
0: देखा जाता है। तो सफेद दाग में एक फंगल इन्फेक्शन भी है जो टीनिया वर्सिकुलर बोलते हैं, उसमें भी सफेद दाग होता है, बट लोगों को सब लगता है कहीं ये लेप्रसी तो नहीं है, बाकी कुछ भी चल
1: जो फंगल इन्फेक्शन है
0: वो भी इजीली ट्रीटेबल है,
1: ठीक होता है, लेकिन सफेद दाग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन जो है उससे कोई प्रॉब्लम होता है?
0: बिल्कुल नहीं होता, वो भी एक दूसरे को फैल सकता है, बट ट्रीटेबल है, वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लोगों के मन में क्या होता है, ट्रीटमेंट नहीं किया तो लोगों को देखने का नजरिया उस पर अलग हो जाता है, इलाज तो करेंगे लेकिन कोई कोई डर के आते हैं
1: जी
0: कि कोई वो बीमारी तो नहीं है कहीं, दे हैव टू बी टोल्ड दैट इट इज नॉट लेप्रसी। वापस अगर मैं उसको बराबर से पुटअप करूँ तो लोगों के मन में सफेद दाग पहले से शुरू आई है लेप्रसी, वो लेप्रसी तो नहीं है, करते करते सब सफेद दाग को लेप्रसी के नजरिए से देख रहे हैं, अभी जो सफेद दाग फंगस की वजह से हो या विटिलिको की वजह से हो वही चीज में उनका ध्यान रहता है कि मैं कहीं ये गलत बीमारी तो नहीं है। कोई भी सफेद दाग होगा तो उसका एक्सेप्टेंस पोर है, वही अगर काला दाग होगा तो कोई टेंशन नहीं है,
1: तो सर नजर का टीका,
0: हाँ कितना भी काला दाग होने दीजिए आप, चेहरे पे पूरा पिगमेंटेशन हो जाता है, छाई आती है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन सफेद दाग ये भी बर्थ मार्क भी रहेगा तो बहुत टेंशन होता है,
1: धारणा
0: निकलनी चाहिए। कोई भी सफेद दाग मेरे ख्याल से अभी लेप्रसी तो खत्म हो जाएगा थोड़े सालों में, इलाज करना चाहिए, और जिस चीज का इलाज नहीं होता उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जैसे विटिलिगो से कुछ नहीं होने वाला।
1: तो दोस्तों आप सुन रहे थे कि सफेद दाग जो है उससे घबराने की जरूरत नहीं है, कुष्ठ रोग कोढ़ ये भी अब बिल्कुल आसानी से इस पर काबू पा लिया जाता है, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कुछ ही समय में ये हमारे देश से पूरी तरह से इसका उन्मूलन संभव है। किसी भी त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलकर सही जानकारी ले लें और निश्चिंत हो जाएं। आपको अभी तुरंत मैं एक निश्चिंत होने का एक और तरीका बताता हूं, कोई म्यूजिकल तरीका भी होता है?
0: म्यूजिकल तरीका तो गाना सुनना ही है, तो एक गाना सुन लेते हैं।
1: कौन सा?
0: दिलवाले फिल्म का गेरुआ सुना दीजिए।

0: डॉक्टर साहब, ये गाना अभी सुन रहे थे जब, मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर सुन रहा था, सफेद रंग की बात कर रहे थे, ये थोड़ा गेरुआ होने की बात कर रहे थे,
1: कलरफुल हो रहा है अभी थोड़ा।
0: अब मोहब्बत में तो आदमी किसी भी रंग में रंगने के लिए तैयार हो जाता है, बस शर्त इतनी होती है कि उसका महबूब उसके करीब होना चाहिए, आप किसी भी तरह के चर्म रोग से पीड़ित हो। अब डॉक्टर साहब बात करते हैं उस रोग के बारे में जो नॉर्मली अंदर से नहीं तकलीफ उठती है, हमारी त्वचा को बाहर से कोई आक्रमण हुआ उससे त्वचा डैमेज हो गई, यानी कोई वायरस लग गया किसी तरह का। अगर एलर्जी की बात करें तो कई लोगों को कुछ खुजली के जैसे झाड़ पेड़ भी होते हैं,
1: बिल्कुल, बिल्कुल
0: कुछ चीजें होती हैं, तो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं त्वचा को, ये किस किस तरह की बीमारियां होती हैं नॉर्मली, मतलब जो आपके पास पेशेंट आते होंगे और फिर उसके लिए किस तरह से आपकी?
1: ये जो टॉपिक आपने बोला ये बहुत वास्ट है, लेकिन मैं उसे बहुत सिंपल चीज में डिवाइड कर दूंगा। ये आप जो बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स से स्किन पे कौन सी बीमारियां हो सकती है, अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक तो इरिटेंट डर्मेटाइटिस या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं इसे, जो कि किसी चीज के लगने से या इरिटेट होने से होता है। ये कोई एलर्जन लग गई हो, जैसे हम साबुन यूज करते हैं एकदम ही स्ट्रॉन्ग सोप्स यूज किए तो हाथ को इरिटेट होना, टीका जो इरिटेट करता है वो, या जिस चीज की एलर्जी हो, समझो किसी को सिंदूर की एलर्जी हो और लगा रहे हो तो एलर्जी हो रही है, ये डर्मेटाइटिस की बात हुई। दूसरी जो बाहर से होती है वो इन्फेक्शन होती है। अब इन्फेक्शन भी तीन प्रकार के हैं, एक तो बैक्टीरियल है, फंगल है और वायरल है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो फोड़ियाँ फुंसी वो होती है, वो बाहर से जो बैक्टीरियाज एंटर कर लेती है उससे होती है, और आजकल फंगस बहुत फैला हुआ है जिसे हम दाद कहते हैं। और वायरल इन्फेक्शंस में है जैसे वॉर्ट्स है, मोलस्कम कॉन्टेजियोजम है, हर्पीज है, हालांकि हर्पीज तो अंदरूनी वायरस से होता है बट हर्पीज भी वायरल इन्फेक्शन भी है। फिर चिकन पॉक्स है, मीजल्स है।
0: चिकन पॉक्स के दाग नहीं जाते हैं अगर ऐसी मान्यता है?
1: या चिकन पॉक्स के दाग वो नहीं जाएंगे जो बहुत ही खराब तरीके से इन्फेक्टेड हो गई हो, एकदम सुपरफिशियल हो तो दाग तो चले जाएंगे। वो हम पहले के जमाने के स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे हैं, पहले जमाने में स्मॉल पॉक्स हुआ करता था जो बहुत अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं होता है, वो जो स्मॉल पॉक्स के दाग वो नहीं जाते थे। चिकन पॉक्स के दाग ओवरऑल इतने नहीं रहते हैं,
0: वो नेचुरली चले जाते हैं,
1: नेचुरली चले जाते हैं, और अगर कुछ नहीं नेचुरली चले जाते हैं और बहुत डीप स्कार रहेगा तो उसको इलाज कर सकते हैं।
0: किस तरह का इलाज होता है?
1: इलाज राइट फ्रॉम मलम से लेकर लेजर तक अभी अवेलेबल है, तो यू कैन डू एनीथिंग।
0: अब आपने जैसे लेजर की बात की, तो जब त्वचा पर लेजर से कोई इलाज किया जाता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं?
1: नहीं, नहीं बिल्कुल का? बिल्कुल नहीं, लेजर का कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिकॉज लेजर जो है वो स्किन के बहुत डीप जाता नहीं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लेजर, तो जो स्किन में हम लेजर यूज करते हैं वो चमड़ी से बहुत नीचे जाता ही नहीं है, तो जो भी होगा स्किन पे ही है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप बोलेंगे मुझे कुछ तो साइड इफेक्ट बताइए अभी, तो मैं एक ही बता सकूं, चमड़ी जल सकती है, वो तो जल से ही तो ऐसे भी जलती है, जल सकती है किसी भी चाय गिरने से भी जल सकती है, और उसका इलाज तो वैसे भी स्किन स्पेशलिस्ट कर सकते हैं। तो द वर्स्ट दैट कैन हैपन विद लेजर इज लेजर बर्न्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता।
0: टैटू वगैरह बनाने से निशान बनते हैं, तो लेजर से जब आप इस तरह की कोई दाग निकाल रहे हैं तो वो तो निकल जाएगा दाग, लेजर का किसी और तरह का कोई दाग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
1: लेजर में स्कारिंग होना इज नॉट अ कॉमन थिंग, कॉम्प्लिकेशंस आर नोन इन एनी मेडिकल प्रोसीजर्स, तो ये एक तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि चमड़ी जल गई हो, ये हालांकि बहुत रेयर है। तो ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली अगर कोई स्किन स्पेशलिस्ट के पास लेजर कराता है तो उसे कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं।
0: तो आप बात कर रहे थे बाहर से होने वाले,
1: पहले तो बताया कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, फिर इरिटेंट डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वाली चीजें जो समझिए हम, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और इरिटेंट डर्मेटाइटिस है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वो एलर्जी होती है कुछ बाहरी चीज की, और इरिटेंट डर्मेटाइटिस है उसके इरिटेशन से हो, जैसे आपने सोप यूज किया, आजकल बहुत अच्छे अच्छे सोप्स आते हैं जो बर्तनों को दिखा दो तो पूरी तेल वेल सब बर्तन की साफ कर देती है, बट हम ये नहीं सोचते कि हमारी चमड़ी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है वो, तो वो चमड़ी के ऊपर की थर को भी छिल सकती है वो, सो दैट्स एन इरिटेंट डर्मेटाइटिस बोलते हैं उसे हम। तो वो नॉर्मली हाउसवाइफ जो बर्तन का घर का सब काम करते हैं उनके हाथों में पाया जाता है, तो उनको हम बोलते हैं या तो स्ट्रॉन्ग सोप्स नहीं यूज करें या तो ग्लव्स डाल के काम करें। और वो जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस वो तो एलर्जी एक तरह का, जैसा निकल है वॉच स्ट्रैप का, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज है, किसी किसी को बिंदी के जो गम रहती है जो स्टिकर की गम है उसकी हो सकती है, डाइस की हो सकती है, हेयर डाई।
0: डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे हेयर डाई पे, लेकिन इस समय ये अब यहाँ हम कौन सा गाना सुन सकते हैं?
1: थ्री इडियट्स की जुबी डुबी सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: चलिए ये जूबी डूबी के गाने के बाद जो आप बात कर रहे थे हेयर डाई के,
1: हेयर डाई एलर्जी,
0: अब हम आ गए एक ऐसी चर्चा पे जो बड़ी कॉमन सी, मतलब लोगों के बीच में बहुत सी बालों को लेके और बालों की चमड़ी को लेके और फिर उससे जुड़ी बहुत सी चीजें हैं। डॉक्टर साहब, ये हेयर डाई लगाने से स्किन और आंख तक, कई बार लोग ये कहते हैं कि अरे तुम ये हेयर डाई यूज करोगे तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी, और तू ये हेयर डाई यूज करोगे तो तुम्हारा माथा काला हो जाएगा, ये हेयर डाई यूज करोगे तो तुम्हारे पीछे फोड़े हो जाएंगे।
1: ये आपका बात सही है। ये देखिए, हमने शुरू किया था एक्सटर्नल फैक्टर जो स्किन को अफेक्ट करे, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था बहुत वास्ट है और हम अटके हुए इरिटेंट डर्मेटाइटिस या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस पे ही अटके हुए। आपकी बात सही है कि ये जो हेयर डाई वाला है, पीपीडी एलर्जीज बोलते हैं उसको, पैराफिनिलीन डायमाइन करके एक डाई होती है जो हेयर डाई में यूज होती है,
0: उसके बिना हेयर डाई नहीं बनती।
1: उसके बिना हेयर डाई 99% आई वुड से, कोई भी आप लीजिए, काली मेहंदी से लेकर आप कोई भी हेयर डाई लीजिए, बेस्ट से बेस्ट ब्रांड लीजिए या सिंपल लोकल ब्रांड लीजिए, ये काला कलर पीपीडी से ही होता है
0: जी।
1: थोड़ी बहुत अभी पीपीडी फ्री हेयर डाई आने लगे हैं जो थोड़ी सी महंगी है, बट वो पीपीडी फ्री है, लेकिन उसकी एलर्जी नहीं है, वो टेस्ट करके देखना पड़ेगा। तो इन जनरल जो हेयर डाई एलर्जीज होती है वो पैराफिनिलीन डायमाइन की एलर्जी होती है
0: जी।
1: ये जो एलर्जी होती है इससे चमड़ी थोड़ा सा इरिटेट होता है, लाल हो जाती है, चेहरा आंखें ऐसे सूज सकती है, फोड़िया ऐसे होगी कि अगर चमड़ी छिल गई वगैरह तो इन्फेक्शन हो जाएगा। कितनी इरिटेट होती है स्किन उसके ऊपर डिपेंड होती है। किसी किसी को सिर्फ थोड़ी सी खुजली होगी, किसी किसी को थोड़ी रेडनेस होगा, किसी किसी को चमड़ी पील होगा। क्या होता है जैसे अभी हेयर डाई डाले तो फिर आंखों के ऊपर सब जगह पे थोड़ी थोड़ी उसकी इफेक्ट रहती है,
0: भले उसका आंखों से कॉन्टेक्ट
1: ना हो, तो उसके आंखें सूज जाना, आंखों के अंदर नहीं बट बाहर की जो आईलेट्स है वो सूज जाना। हेयर डाई डाला और अगले दिन उसने देखा कि आंखें सूजी हुई, आईलेट्स एकदम आंखें खोलने को नहीं पा रहा है वो, और सर खुश आ रहा है, लाल हो गया है। यस, बट इट कैन प्रोग्रेस टू अ वेरी बैड थिंग। इसीलिए उन लोग बोलते हैं कि टेस्ट करके डालिए, टेस्ट करके डालिए करके। हेयर डाई से नजर कमजोर होगी ये सब तो मैं नहीं मानता हूँ, इतना नहीं होगा। अगर कंटिन्यूस एलर्जी है तो पेशेंट 2-3 बार में तो फिर लगाना बंद ही कर देगा
0: जी।
1: देन देयर आर अदर पीपीडी फ्री हेयर डाइज है, बहुत सारी अलग है।
0: और ये जो माथे का काला होना,
1: ये सब एलर्जी का एक साइड इफेक्ट है। कोई भी चीज़ का जब स्किन इरिटेट होता है ना तो पिगमेंटेशन ज़्यादा होने लगती है, तो जब ये इरिटेट होता है हेयर डाई से तो वो भी काला होने लगता है चेहरा भी, वो जो कलर है उससे नहीं, वो इरिटेट होता है इसीलिए।
0: मान लीजिए किसी ने लॉन्ग रन तक इसको यूज किया, उसका माथा काला पड़ गया, उसका इलाज है कि भाई अब आगे यूज मत करो।
1: बिल्कुल।

0: और वो कलर जाने में मदद करेंगे, लेकिन उसको हेयर डाई अवॉइड करना बहुत जरूरी है। हेयर डाई के बारे में भी ये है कि ये जो सफेद बाल है, अगेन इट्स जस्ट अ परसेप्शन आई फील, सफेद बाल में क्या प्रॉब्लम है अभी, तो वो भी देखने का नजरिया है सिर्फ। अभी फॉरेनर्स लोग सफेद बाल आते हैं तो हम तो खुश होते हैं, हमारे यहाँ सफेद बाल को बुढ़ापा की नजर मानी जाती है, मतलब बुढ़ापा की वोट निशानी मानी जाती है। तो अगर हम वापस ये परसेप्शन बदल दे कि कल को अगर समझिए सफेद बाल की फैशन आ जाए तो डाई की जरूरत ही नहीं पड़े। वी हैव टू बी हैप्पी विद अवर बॉडी, अवर कलर, अवर हेयर, क्वांटिटी ऑफ हेयर, कलर ऑफ हेयर, ये सब चीजें जो है नैसर्गिक है, नेचुरली दिया हुई चीज है, तो उसको जरा खुश
1: अभी खुश होने की बात हम और भी करेंगे। फिलहाल एक खुश होने का एक और नुस्खा है,
0: ये इसके लिए एक गाना होना चाहिए, डियर जिंदगी वाला, लव यू जिंदगी,
1: लव यू जिंदगी।

0: पता होनी चाहिए। फिटनेस का आजकल डेफिनेशन अलग हो गया है। फिटनेस तो मतलब सिक्स पैक फिटनेस, शोल्डर्स ऐसे होने चाहिए या बाल काले होने चाहिए, घने बाल होने, ये फिटनेस नहीं होती है
1: जी।
0: फिटनेस वो होती है जो अपने काम करने की क्षमता बनाए रहे। जो अगर टीचर रहेगा तो उसकी फिटनेस है कि उसका बुद्धि शक्ति जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। वो अगर सिक्स पैक बना के खड़ा हो जाएगा वहां, तो उसको और कुछ पढ़ाई नहीं किया तो वो फिट नहीं रहा।
1: फिटनेस का मतलब ये है कि आप सुबह से एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ निकलें, अपने काम को खुशी खुशी करें। तो डॉक्टर साहब, अब असंतुलित जीवन जीता है उसका असर कई जगहों पे पड़ेगा। त्वचा पे कौन कौन सा असर पड़ता है?
0: त्वचा भी एक ऑर्गन है, जैसे लिवर है, स्प्लीन है, किडनी है। और अगर हम लोग, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो ये सभी ऑर्गन्स पे इफेक्ट होगा। जैसे अभी लाइफस्टाइल में बोलेंगे तो बराबर से नहीं सोना, विच इज नाउ बिकम अ फैशन। अभी जो ड्यूटीज रहती है वो अलग अलग ड्यूटीज होती है, किसी को अमेरिकन शिफ्ट, किसी को ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट। तो 3 बजे रात को जाता है और 7 बजे आता है और 3 घंटा सोता है, फिर खाना खाते हुए 2 घंटा, टोटल मिला के 6 घंटा सोता है। ऐसा नहीं चलेगा। जंक फूड खाना, अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाना, जैसे स्ट्रेस में रहना, ये सब चीजों से सभी ऑर्गन्स पे राइट फ्रॉम हार्ट टू द स्किन अफेक्ट होता है। अब स्किन पे आप पूछेंगे क्या इफेक्ट होता है, तो पहले तो झुर्रियां पड़ जाएंगी और फिर थोड़े दिन का परेशान चेहरा ही दिखेगा, वो रिंकल्स आ जाएंगे शरीर पे, थोड़े धब्बे पड़ने लगेंगे, जो ब्राइटनेस है वो चली जाएगी, ग्लो चली जाएगी। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मुझे ग्लो चाहिए, ग्लो चाहिए। उनको लगता है कुछ मलम दे दूंगा तो ग्लो आ जाएगा। पहले अंदर से ग्लो होनी चाहिए। बहुत ही फिलोसॉफिकल लगता है ये बात, लेकिन अंदर से नींद अच्छी रहनी चाहिए, विचार अच्छे रहने चाहिए, खाना खुराक अच्छी रहनी चाहिए।
1: आंखों के नीचे कालापन आ जाता है।
0: यस, आंखों के नीचे काला, ये अंडर आई डार्क सर्कल्स की बात कर रहे हैं। और पोल्यूशन से थोड़ा सा बचे, धूप से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करे अपने आप को।
1: कुछ चीजें ऐसी हैं, अब कोई धूप में काम करने वाला बंदा है उसके लिए फिर वो क्या कर सकता?
0: नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है धूप। एक्चुअली अभी धूप में जो काम करता है बंदा, उसके लिए वो काम ही है, तो ही इज यूज्ड टू दैट, तो उसको चलेगा। लेकिन धूप में ऐसा है ना कि फॉरेन कंट्रीज में धूप से कैंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी क्या हो गया, ये जो इन्फॉर्मेशन है इतना वाइड स्प्रेड हो गया है, और आई वुड से पूरी ग्लोबल इन्फॉर्मेशन एक साथ आ जाती है। तो किधर अमेरिका में अगर धूप में कोई काम करता है उसे कैंसर होती है, तो इंडिया वाला बेचारा जो खुदाई करता है वो भी सोचता है कि मुझे कैंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। इंडिया में जो स्किन बनी है वो थोड़ी अलग टाइप की है, तो उसमें कैंसर, स्किन के कैंसर बहुत कम चांसेस है। तो धूप में जो काम करते हैं उसका चमड़ी काला हो सकता है, कैंसर होने के चांस बहुत कम है।
1: स्किन कैंसर, ये एक बड़ा अलग सा शब्द है।
0: यस,
1: स्किन कैंसर एक ऐसा है कि वो तो पूरा शरीर स्किन से ढका है। अब वो बंदे को मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं
0: ये क्या हो रहा है। नहीं, कैंसर शब्द सुनते ही मुझे एक डर पैदा हो जाता है। जैसे मैंने बताया स्किन कैंसर, तो आपके मन में यही आ गया होगा कि स्किन कैंसर पूरी स्किन में फैल जाएगा, स्किन जल जाएगी एंड ऑल दैट। फॉर्चुनेटली इट इज नॉट लाइक दैट। स्किन कैंसर्स आर, आई वुड से, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, बट दे आर द सेफेस्ट कैंसर। जैसे अभी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हुआ, बेसल सेल कार्सिनोमा हुआ, दो चीज जो है वो उसी जगह पे इफेक्ट करती है जहां पे हुई है, वहीं पे इफेक्ट करती है। मैं आई डोंट नो व्हेदर आई एम पुटिंग इट राइट। जहां पे समझिए एक छोटा सा दाग हुआ
1: जी,
0: स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या बेसल सेल कार्सिनोमा हो, तो वो उतनी जगह को अफेक्ट करता है
1: जी,
0: न कि वो किधर अंदर फैल जाएगा, इतना नहीं फैलता है वो। और उसका ट्रीटमेंट है कि एक इंच उसके अराउंड स्किन को निकाल दिया जाए तो उसकी ट्रीटमेंट 100% हो गई। उसके साथ में मेलानोमास है
1: जी,
0: मेलानोमास करके कैंसर से जो फैल सकती है अंदर,
1: तो ये जो फैलती है तो किस तरह से डैमेज करती है
0: वो डैमेज, फिर अंदर गया तो लिवर में। जैसा हमारे कोई बोन के कैंसर हो या किडनी के कैंसर हो या लिवर के कैंसर हो, कैसे फैलती है वैसे, एक बार फैल गई तो सब एक ही चीज है।
1: ओके,
0: और भी एक हाथ दो कैंसर जो काफी फास्ट फैलते हैं, बट दोज आर वेरी वेरी रेयर। और ये जो स्किन कैंसर है ये फॉरिन कंट्रीज में थोड़ा ज्यादा है, जहां पे उनकी जो स्किन टाइप है टाइप 1 टाइप 2, मतलब गोरी जो चमड़ी रहती है, वो धूप से बचाव के लिए उनके पास कुछ नहीं रहता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्किन जो है धूप से बचने के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है, भगवान ने बनाया हुआ। सो वी नीड नॉट वरी सो मच अबाउट द इफेक्ट ऑफ सन ऑन अवर स्किन।
1: विदेशों में
0: उनका जो सन बात लेने का आइडिया ही डिफरेंट है। वो धूप को देखते नहीं बहुत दिन तक, उनके पास पूरी ठंडी का माहौल रहता है। उनको तो क्या 18-20 डिग्री बोले तो भी गर्मी होने लगी, तो आते हैं आराम से कपड़े पड़े निकाल के बीच पे सो जाते हैं और सन बात लेते हैं, फिर सनस्क्रीन लगाते हैं, धूप का आनंद लेते हैं। ये ज्यादातर ये धूप का आनंद लेने वाली बात है, और अपने आप को टैन करने की थोड़ी प्रयास चलती है उनकी। जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे सब गोरे होना चाहते हैं, वहाँ उन लोग थोड़ा सा रंग लाना चाहते हैं।
1: चलिए इसी विषय पे अगला सवाल होगा मेरा, लेकिन फिलहाल एक सुरीली सी किरण की जरूरत है इस समय।
0: दिल धड़कने दो का वो गाना सुना दीजिए,
1: गल्ला गुड़िया।
0: हाँ हाँ,
1: तो चलिए सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा आपने, जो ईश्वर ने हमें जैसा बना के भेजा है उससे प्यार करो, जिंदगी से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो,
1: सब चीज सही करिए, थोड़ा एकदम डिविएट मत होजिए, और जो शरीर है उसका आनंद लीजिए। एवरीबडी इज मेड इन अ डिफरेंट वे, सभी लोग को एक ही साइज का 38 नंबर का पैंट एंड 42 नंबर का शर्ट फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो एंड डोंट बी अनहैप्पी विथ योर बॉडी, ट्राई टू बी फिट। फिट मीनिंग अपनी जो रोजमर्रा की काम है उसे करने की

0: डॉक्टर साहब, जब हम और आप बात कर रहे थे गोरे और काले की, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की।
1: यस,
0: लो हर कोई गोरा होना चाहता है और काले रंग को बड़े हे दृष्टि से देखते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए,
0: क्योंकि मान्यता बन गई है कि जो गोरा है वो बड़ा अच्छा है।
1: सुंदर दिखने के लिए मैं तो बोलूंगा कोई भी रंग चलेगा
0: जी,
1: सुंदर दिखना है तो स्किन का जो है टेक्सचर और उसकी जो क्वालिटीज है उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन द कलर ऑफ इट।
0: तो आपके पास ऐसे मरीज भी आते होंगे कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कोई लेजर का कोई अगर कोई तरीका हो या कोई दवाई ऐसी हो।

0: कि जिससे हम गोरे हो जाएं।
1: अरे गोरे होने की तो 100% डिमांड होती है, मतलब मेरे पास कोई ऐसा नहीं आता है जो डार्कनेस को एक्सेप्ट कर लेगा। उसको अगर मैं बोलूं ना गोरा होने का दवाई दूं क्या, वो बोलता है मुझे दे दीजिए मैं गोरा होना चाहता हूं।
0: कितने समय तक असर मेरा रहता है?
1: जब तक उसका असर रहेगा 1-2 साल तक, तब तक वो ठीक रहेगा। बाकी जैसे आप धूप में गए और जैसे हमारे शरीर की मेलानोसाइट्स जो है मेलानिन को बना के फेंकने लगी तो कलर वापस आ जाएगा, वो जो शरीर की जो पेशी है वो तो वैसे ही रह गई।
0: अलग अलग जो त्योहार आते हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली है, होली एक ऐसा त्योहार है जिसका सीधा कांटेक्ट आपके स्किन से है, रंग जो है वो आपके पूरे शरीर को खराब कर, तो ये कुछ थोड़ी सी भ्रांतियां एक तो दूर करनी है, दूसरा होली में मान लीजिए इस तरह के कलर हैं उनको क्या करना चाहिए?
1: होली के बारे में तो कलर नुकसान पहुंचाता है जिस तरह से अभी यूज होते जा रहा है। कलर दो तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे मैंने बताया था पहले इरिटेंट डर्मेटाइटिस एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, उस चीज का एलर्जी हो सकता है या तो स्किन को इरिटेट कर सकता है। वो जो कलर्स हवा में उड़ती है अंदर इनहेल किया जाता है तो लंग्स में जाके अस्थमेटिक पेशेंटों को ज़्यादा तकलीफ देगा, खांसी हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकती है, आंखों पे उठ के कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है, स्किन में एलर्जी हो सकती है, खुजली आएगी, फिर लाली होगी और स्किन पीलिंग होने लगेगा।
0: वो क्योर हो जाता है?
1: वो तो एलर्जी जैसा है, क्योर होगा मतलब स्किन जल जाएगी, फिर वो जला हुआ स्किन जैसा हील होगा, 10-15-20 दिन लगेंगे
0: जी।
1: अपने आप हीलिंग प्रोसेस होगी, फिर दाग भी पड़ सकते हैं, नहीं भी पड़ सकते, ऐसा है। जख्म जैसी बात है,
0: वेल्डिंग कर रहा है बंदा उसके ऊपर कुछ खास तरह की रॉड यूज करते हैं।
1: वेल्डिंग का तो क्या ना, छींटे उड़ेंगे तो जलता है, बर्न्स होते हैं वो, इट इज लाइक एनी अदर बर्न्स, बट वेल्डिंग का जो बर्न्स है वो डीप बर्न्स रहते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, बाकी उसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो एक्सटर्नल जो होती है ना वो क्योर हो जाता है, लेकिन दाग कितना छोड़ेगा वो पता नहीं है।
0: और जब बात हमने होली की है
1: तो आज तो
0: एक सज्जन है जो कह रहे हैं कि आज
1: नहीं छोड़ेंगे, फिर तो कटी पतंग वाली आज नहीं छोड़ेंगे।

0: तो डॉक्टर साहब ये होली तो इन्होंने मना ली, चलते चलते आप अपनी त्वचा को आप किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं उसके सिंपल नुस्खे एक डॉक्टर जो है खास तौर पे चर्म रोग विशेषज्ञ क्या देगा?
1: आपका आपका सवाल अगर मैं वापस रिफ्रेश करूँ तो आपका कहना है कि एक हेल्दी स्किन के लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन है? वो इंटरनल फैक्टर्स है हमारी खुराक, अच्छे से खाइए, नींद, हाइड्रेशन, अच्छे से पानी पीजिए और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीए। तो ये सब चीज़ों से अंदरूनी यू नो द स्किन इज मोर हेल्दी फ्रॉम इनसाइड। एक्सटर्नली आप पोल्यूशन को अवॉइड करिए। अभी अवॉइड कैसे करेंगे, आप पोल्यूशन वाली जगह पे मत जाइए ज़्यादा, और अगर आप जा रहे बाइक वगैरह जाते हो एक अच्छे से जैकेट या
0: चेहरे पे भी कुछ
1: ऐसा कुछ कवर कर लीजिए ताकि वो पोल्यूशन आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करे। धूप ऐसी चीज़ है जो फोटो एजिंग बोलते हैं, धूप से थोड़ी सी एजिंग जल्दी होती है धूप की जो इफेक्ट है, बट धूप के प्लस पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। तो जितना हो सके उतना धूप से थोड़ा बचिए, छतरी लेके जाइए, कुछ मास्क डाल लीजिए।
0: तो डॉक्टर साहब आप ये जो धूप से बचने की बात कर रहे हैं, अब कोई अगर मजबूरी में नहीं था, छाता नहीं लगा सकता, उसे काम करना है, अभी आज मुझे जाना ही है, अब मुझे निकलना है, छाता नहीं है, तेज धूप है, तो उसका कोई और उपाय है?
1: धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन एक उपाय है, बट सनस्क्रीन के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि सनस्क्रीन सही मात्रा में लगाया जाए, सही टाइम तक लगाया जाए, सही टाइम तक रखा जाए। सनस्क्रीन को लगाने का आधा घंटा पहले बाहर निकलने के, हर दो दो घंटे में डालना पड़ता है, 30-50 SPF के जितना रहना चाहिए, और ये करोगे तो ही वो धूप से बचाएगा, नहीं तो ये सिर्फ एक ऊपर की क्रीम लगा के आप संतुष्ट होकर जा रहे हो, बाकी उसकी इफेक्ट कुछ भी नहीं होगी। तो सनस्क्रीन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सही मात्रा में, सही टाइम तक और सही तरीके से यूज़ करेंगे तो वो उपयोगी होगा। और धूप से बचना ही है तो कैप्स है, हैट्स है, अम्ब्रेलाज है, दुपट्टा है।
0: दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे त्वचा की देखभाल कितनी ज़रूरी है और किन किन चीज़ों से ज़रूरी है। ये बात सीधे त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस जी मूर्ति से आपने सुनी। और अब डॉक्टर साहब चलते चलते गाना सुन लें, समय तो हमारे पास ज़्यादा है नहीं।
1: ये सुल्तान पिक्चर का जग घूमिया हो जाए।

0: तो दोस्तों जग को घूमना है तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, अपनी त्वचा को भी स्वस्थ रखिए। जैसा कि गाने से पहले डॉक्टर साहब ने सारी चीजें बताई, सारी बातों के साथ अपने आप को निष्फिक्र रखते हुए मजे से जग घूमिए। और अब फिलहाल डॉक्टर साहब आज का वक्त तो यहीं पूरा हुआ चाहता है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने इतने बड़े सब्जेक्ट को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया। हमारे श्रोताओं की बहुत सी भ्रांतियां दूर हुई होंगी, बहुत सी गलतफहमियां दूर हुई होंगी और बहुत सी उपयोगी चीजें उन्हें मालूम हुई होंगी। तो विविध भारती के श्रोताओं की तरफ से और विविध भारती की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू वेरी मच। जाते जाते ये बोलना चाहूंगा कि आप अपनी स्किन का ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए, अच्छे से सोइए, खुश रहिए, अच्छे विचार रखिए, आराम से रहिए।
2: तो दोस्तों ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस जी मूर्ति से। बातचीत कर रहे थे अमर कांत दुबे और बातचीत का विषय त्वचा के रोग और उपचार। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया भावना सिंदल ने और कार्यक्रम

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। लोग भले कहते हों कि प्यार महकती खुशबू है, प्यार है एक खिलता हुआ बाग, पर ये साहब मानते हैं कि प्यार है एक जलती हुई आग, और प्यार की आग में सब जल जाता है, खत्म हो जाता है, खाक हो जाता है। तो सुनिए प्यार की ये धधकती हुई कहानी इन

0: कुछ लोग दीवाने होते हैं प्यार में, पर कुछ लोगों का पैशन होता है फैशन। फैशन वो आग है जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। कैसा है जमाना, हर शख्स फैशन का दीवाना। तो चलिए सुना जाए फैशन का तराना।
1: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये है जापानी। अरे फैशन

कभी मिल सका है क्या आग और पानी? अब जरा सोचिए, जब मिल जाए एक ठेठ हिंदुस्तानी और एक फैशन की दीवानी, तो बनती है कैसी कहानी। एक तरफ संस्कारों का राजा, दूसरी तरफ सजावट की रानी, दोनों को ही है सुनानी अपनी अपनी कहानी।

0: हमारी।
1: चाय गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
0: भूस भर दिया मेरी चाहत में।
1: हम अभी हाजिर हुए

0: भी तो चांटे ही चांटे। प्यार का रास्ता नहीं है आसान, कभी मुश्किलें तो कभी घमासान। चाहत की दुनिया में सोच समझ कर घुस, ये दुनिया भर देती है चाहत में भुस। सारे सपने हो जाते हैं फुस, प्यार का महल भर भरा कर हो जाता है ठुस।
1: भुस भर दिया अयो, भुस भर दिया मेरी चाहत में।

रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएं तो हो जिंदगी आसान। घर मिलता नहीं सब लोगों को, ये सारा है बड़ा उलझा हुआ चक्कर। बड़े शहरों में प्यार करने वालों को नहीं मिलता किराए का घर, ऐसे में कोई क्या करे पहल, कैसे बने हमारे सपनों का महल।

प्यार की राह नहीं है आसान, पर इस पर चलते हैं हिम्मत वाले, आसानी से नहीं हारते ये चाहत वाले, हो कैसी भी राहें प्यार करने वाले हार क्यों माने, वो तो गाएंगे ऐसे ऐसे गाने, आप माने या ना माने प्यार अपना रास्ता बनाना जाने।

0: फिल्म बीवी और मकान,
1: प्यार किया तो मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों,
0: और फिल्म राज। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए, यूनुस खान को नमस्कार।

0: तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें इस खूबसूरत गाने के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मतों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा बड़ी जीत के साथ पहली बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। वहीं असम और पुदुचेरी में सहयोगी दलों के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवी के इतिहास रचने की ओर है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 3 सीट जीत ली है और 2 पर आगे है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों के रुझान और परिणाम मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को 202 सीटों पर बढ़त मिली है, इनमें से वो 20 सीटें जीत चुकी है। तृणमूल कांग्रेस 85 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 8 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1, कांग्रेस 2 और अन्य 3 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से आगे चल रही है। नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी आगे है। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से अब तक 52 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा को 42 सीटें मिली हैं, जबकि उसके सहयोगी एजेपी को 3 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 5 सीटें मिली हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1-1 सीट मिली है। उपलब्ध रुझानों के अनुसार भाजपा 40, एजेपी 7 और बीपीएफ 5 सीट पर आगे है। कांग्रेस ने 18 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। AIUDF रायजोर दल को 2 और TMC 1 सीट पर आगे है। भाजपा उम्मीदवार और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जालुकबाड़ी सीट पर आगे चल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव हार गए हैं। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश दिया है। वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की भारी जीत हर कार्यकर्ता के लिए भावुक क्षण है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने सुशासन के लिए भाजपा को वोट दिया है।
1: वेस्ट बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी आशीर्वाद मिला है। अगेंस्ट दिस वेस्ट बंगाल पीपल हैव गिवन ए वेरी वेरी क्लियर मैंडेट फॉर दी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुशासन के लिए एक मैंडेट मोदी जी के नेतृत्व में दिया है एंड पूरा कम्युनिस्ट मुक्त देश हो गया है।
0: केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम और रुझान मिल गए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को शानदार जीत मिली है। कांग्रेस को 56 सीट मिली है और वो 7 सीटों पर आगे चल रही है। उसके सहयोगी IUML ने 18 सीटों पर जीत हासिल की है और 4 पर आगे है। सत्तारूढ़ CPM को 24 सीटें मिली हैं, 2 पर आगे है। उसके सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 7 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे है। केरल कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली है और 1 पर आगे है। भाजपा ने 3 सीट जीती हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने के लिए तैयार है। टीवी के 87 सीटों पर आगे है और 22 सीटों पर उसे जीत मिल चुकी है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ DMK को अब तक 8 सीटें मिली हैं और 51 पर आगे है। AIADMK को 4 सीट मिली हैं, 41 पर आगे है। PMK 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है। पुदुचेरी में N. रंगास्वामी के नेतृत्व में NDA सरकार बनाने जा रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार N. रंगास्वामी की AINRS पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली है, 2 पर आगे है। भाजपा 2 सीटें जीत चुकी है, 2 पर आगे है। AIADMK और कांग्रेस 1-1 और DMK को 2 सीट मिली है, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी विजय हुए हैं। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 पर दर्ज हुआ। मुंबई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मुंबई अंक तालिका में 9वें और लखनऊ 10वें स्थान पर है। दोनों टीमों के लिए मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: The cat sat on the mat. ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं फिल्म जान तेरे नाम का ये गाना।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मन चाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19,750, मुंबई 400091। मन चाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: ये है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने।

0: इस गाने के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको बता दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोगरकर। भाग दो, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। जयमाला का समय रहेगा वही शाम 7:00। 7:45 पर सुनिए स्मृतियों के स्वर। दिलीप कुलकर्णी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग एक। रात्रि 8:00 हवा महल में सुनिए नाटिका कोरा चेक। लेखक हैं डॉक्टर चंद्रकांत डी पटेल। निर्देशक पुरुषोत्तम थारवेकर। रात्रि 8:15 पर सुनिए चित्रलोक। रात्रि 9:00 सुनिए आपके लिए आज के फनकार। आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी पर। 10:00 का समय रहेगा छाया गीत का। आलेख और स्वर जयंत पात्रिकर का है। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार। सुबह 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरितमानस आप सुनेंगे 6:35 पर। कल प्रसारित होगा भाग 179। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोगरकर भाग 3। गायन सहभाग अनुजा जोगरकर। तबला यति भागवत। हारमोनियम ज्ञानेश्वर सोनावने। निवेदन ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7:00। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। त्रिवेणी का समय रहेगा सुबह 8:15 और दोपहर 2:00। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 पर सुनिए चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार नौशाद पर। सुबह 10:00 पिटारा में सुनिए सेहतनामा। इसमें सुनिए त्वचा रोग और उपचार। डॉक्टर एस जी मूर्ति से बातचीत। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11:00। यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दिन में 1:00 सुनिए सुरीला सफर। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दिन में 3:00 कार्यक्रम होगा सखी सहेली। दिन में 4:00 सुनिए पिटारा के अंतर्गत सेलुलाइट के सितारे। छाया गीत का समय रहेगा शाम 5:00। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। शाम 7:00 जयमाला का प्रसारण होगा। शाम 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8:00 सुनिए हवा महल। कल हवा महल में सुनिए झलकी चक्कर जूने का। लेखक अजीत कुमार शर्मा। निर्देशक गुरमीत रामल मीत। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:00। रात्रि 9:00 सुनिए आपके लिए। रात्रि 9:30 पर सुनिए

आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार नौशाद पर। छायागीत का समय रहेगा रात्रि 10 बजे। आलेख और स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संध्या रंजन। कार्यक्रम का शुरुआत हम कर रहे हैं गोपी फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है मोहम्मद रफी ने, गीत राजेंद्र कृष्ण का है, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। महिला रचनाकारों की बंदिशें इस श्रृंखला को लेकर आज हम फिर उपस्थित हैं। इसकी दूसरी कड़ी आज प्रस्तुत है। कल्पना जी और अनुजा जी एक बार फिर से विविध भारती के स्टूडियो में आपका स्वागत कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी, यति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो इस कड़ी को शुरू करने से पहले कल्पना जी, हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन सा समय था, वो कौन सी बाध्यता हुई कि महिला रचनाकारों की बंदिशें बनाई जाने लगी, क्यों आवश्यकता पड़ी?
2: बहुत पहले जब गुरु शिष्य परंपरा में तालीम दी जाती थी
1: जी,
2: उस समय घरानों का बहुत बंधन था और गुरु ने सिखाई हुई और उनके घराने की बंदिशों को ही गाया जाए, ये एक नियम था और उसके लिए प्रतिबद्ध थे गायक भी और गुरु भी शिष्य भी।
1: जी जी।
2: तो उस समय उतनी आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई क्योंकि वो विचार ही ऐसा था कि जो गुरु ने सिखाया वो शिष्य गाएं।
1: जी।
2: लेकिन जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता गया, सोच में परिवर्तन हो गया, गायकी में भी कुछ बदलाव आना शुरू हुए। हर कलाकार की जो अपनी एक विशिष्ट सोच है, गायकी है, जो उनके मनन चिंतन द्वारा जो वो अर्जित करते हैं उसे एक अलग स्वरूप देने की भी कोशिश होती है। कुछ अलग अलग घरानों या कलाकारों का भी उनकी गायकी पर असर होता है, जो उनको अपने हिसाब से उस गायकी को पेश करने की आवश्यकता या इच्छा महसूस हुई होगी और तभी इस रचनाकार या बंदिशकार के स्वरूप में जो बदलाव आया। और पुरुष स्वर तो हम सुनते ही हमेशा कि वो लोग तो हमेशा ही बंदिशें बनाते आ रहे हैं, लेकिन महिलाओं को भी अपने मन की इच्छा या अपनी गायकी या मधुरता उसके हिसाब से उनको भी कुछ बंदिशों में ऐसा लगा होगा। कुछ साहित्य भी ऐसा होता था पहले कि जो पुरुष प्रधान गायकी भी थी और शब्दों में भी पुरुषों की जो भावना
1: था उनका ही
2: जी, जी। तो उस हिसाब से महिलाओं को भी ये अंदर से महसूस हुआ कि हमें भी कुछ रचनाएं बनाना चाहिए
1: और उनको भी आजादी मिली इस बात
2: जी, आजादी भी और अपने हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से, उस राग की आवश्यकता के हिसाब से वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर सके
1: जी। तो आज की इस कड़ी में क्या डॉक्टर प्रभा अत्रे की चर्चा करना चाहेंगी?
2: जी जी जरूर। डॉक्टर प्रभा अत्रे एक बहुत ही परिचित नाम है संगीत के क्षेत्र में
1: जी।
2: आपने गुरु शिष्य परंपरा में किराना घराने की तालीम पंडित सुरेश बाबू माने और श्रीमती हीराबाई बड़ोदेकर जी से प्राप्त की। उस्ताद आमिर खान साहब की गायकी का प्रभाव आपकी गायकी में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, खास करके सरगम का बहुत अच्छा प्रयोगशील उपयोग करके अपनी गायकी को उन्होंने समृद्ध किया है। आपकी गायकी में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के गायन का भी प्रभाव उनकी ठुमरी गायन में हमें दिखाई देता है
1: जी। तो आज क्या प्रस्तुत करेंगी, कौन सी बंदिश बताएंगे?
2: आज एक प्रभा जी का बनाया हुआ एक तराना पेश करेंगे।
1: अरे वाह।
2: जो कि राग मधुवंती में निबद्ध है
1: जी।
2: तो अब सुनते हैं राग मधुवंती का चलन और उसके बाद प्रभा जी ने बनाया हुआ एक तराना। राग मधुवंती एक बहुत ही सुमधुर राग है। इसकी जाति ऑर्डर संपूर्ण गायन समय दोपहर का करीब 12 से 5 बजे तक के बीच में गा सकते हैं। इस राग में गंधार कोमल एवं मध्यम तीव्र लगता है। इसके आरोह में ऋषभ एवं धैवत वर्ज होता है
1: जी।

0: वाह, बहुत सुंदर तराना आपने प्रस्तुत किया। और अब बताइए क्या सुनवाएंगे, कौन सी बंदिश प्रस्तुत करेंगे?
1: वैसे तो प्रभा जी ने कई बंदिशों का निर्माण किया है, लेकिन आज हम उनका बहुप्रचलित राग मारुबिहाग, उसमें हम आपको एक विलंबित ख्याल सुनवाएंगे और एक द्रुत बंदिश।

0: महिला रचनाकारों की बंदिशें, इस श्रृंखला की ये थी आज दूसरी कड़ी। कल तीसरी कड़ी के साथ कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: महिला रचनाकारों की बंदिशें, आज आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सिंह। तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनवणे। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आपने ट्यून किया है विविध भारती का मुंबई केंद्र। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। शाम के 7 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। आइए समाचारों की प्रतीक्षा करते हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत क्रिमिनल फिल्म से है, इसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। गीत इंदिवर का है, संगीत MM करीम का।

0: भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है अवतार, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अंतराल के बाद जयमाला कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं राखी और हथकड़ी फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत से सवारा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: स्मृतियों के स्वर। स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेवानिवृत्त सहायक निदेशक श्री दिलीप कुलकर्णी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार। आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में दोस्तों हमने बहुत सारी उन लोगों से बातचीत की जिनकी दुनिया में रेडियो शामिल था, या यूं कहें रेडियो ही जिनकी दुनिया थी। तो आज भी हम ऐसी ही शख्सियत से बातचीत करने जा रहे हैं जिन्होंने बरसों रेडियो में काम किया। आप हैं मेरे साथ आकाशवाणी के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक दिलीप कुलकर्णी जी। आपका स्वागत है दिलीप जी।
2: नमस्कार,
1: कैसे हैं आप?
2: ठीक।
1: तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि रेडियो की दुनिया में आपका आना कैसे हुआ?
2: कॉलेज के दिनों में मैं कुछ लेख लिखता था मैं
1: जी,
2: और मुझे रेडियो में बुलाया गया, रेडियो केंद्र में एक विज्ञान की वार्ता के लिए उस लेख के बेस पर, और वो मेरा पहला कदम था आकाशवाणी की ओर। तभी लगा नहीं कि मेरी पूरी जिंदगी आकाशवाणी के लिए जाएगी। उसके पहले मैं कुछ कॉलेज होने के बाद 2-3 इंस्टीट्यूट में मैंने काम किया था, फिर यहाँ आकाशवाणी का कॉल आ गया। आकाशवाणी का कॉल आ गया, मैं सिलेक्ट भी हो गया, और मुझे जाना था दूरदर्शन की ओर।
1: अच्छा।
2: लेकिन वो नसीब अपना विविध भारती की ओर खींच लेके आया। मेरा पहला कदम विविध भारती में हो गया। वो दिन था 4 नवंबर 1988।
1: जी जी, यानी रेडियो में आपका पदार्पण वहां से हो गया।
2: वहां से।
1: हाँ। तो दिलीप साहब, आपने आकाशवाणी की दुनिया में इतना काम किया है, संगीत की दुनिया से भी आप जुड़े रहे, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई गीत हमें बताएं।
2: आकाशवाणी को कोई नहीं भूल सकता। मैं अभी सेवानिवृत्त होने के बाद भी यहाँ आया हूँ
1: जी।
2: तो मुझे लगता है मरते दम तक आकाशवाणी
1: जी
2: मेरे दिल में, दिमाग में तो रहेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो उसी से जुड़ा हुआ एक गाना है, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे।
1: अरे वाह।

0: दिलीप साहब, इतने साल आपने माइक के पीछे रहकर काम किया, आज आप माइक के सामने हमारे साथ बैठे हैं, कैसा महसूस हो रहा है?
1: अजीब सा महसूस हो रहा है। वो जो रिकॉर्डिंग बूथ था उधर मैं बैठा था, आज मैं आर्टिस्ट के बूथ में बैठा हुआ हूँ।
0: तो अपनी भूमिका के बारे में बताइए, आपके जो काम है वो बहुत सराहनीय रहे हैं टेक्निकल साइड में, तो हम जानना चाहते हैं किस तरह की भूमिका आपने रेडियो की दुनिया में, आकाशवाणी की दुनिया में दी।
1: तो एज ए इंजीनियरिंग असिस्टेंट ज्वाइन किया था
0: जी,
1: और हमारे जो टाइम के अफसर थे बहुत टैलेंटेड और डिवोटेड टू डिपार्टमेंट थे
0: जी।
1: उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे। पहले मुझे वो रिकॉर्डिंग का काम दिया गया था, फिर मेंटेनेंस का काम दिया गया था, जो स्टूडियो इक्विपमेंट थे। पहली टेक्नोलॉजी अलग थी, आज की टेक्नोलॉजी बहुत चेंजेस हो गए, वो सारा मैं विटनेस हूँ उसका, और उसमें सक्रिय सहभाग भी है मेरा हर इंस्टॉलेशन में।
0: बिल्कुल।
1: तो वो टाइम रिकॉर्डिंग टेप में होती थी और रिकॉर्डिंग में मैं बहुत एक्सपर्ट माना जाता था वो टाइम की। 78 की जो रिकॉर्डिंग थी उसमें एक लिमिटेशन थी कि 3.5 मिनट का ही उसमें गाना हो जाता
0: बिल्कुल।
1: था। बिल्कुल। तो कोई जो कव्वाली जैसे गाने होते हैं, ये गजलें होती है, वो दोनों साइड में होती थी, तो वो पैच करनी पड़ती थी। तो उस पैचिंग के लिए मुझे खास बुलाया जाता था, उसमें मैं एक्सपर्ट था। पहले कभी कमर्शियल प्रोग्राम बहुत होते थे, वो बीच में कमर्शियल इंसर्ट करनी पड़ती थी टेप में। पहले एक एक महीना पहला प्रोग्राम बन जाता था, तो प्रोग्राम बन गया तो उसके बाद कमर्शियल आती थी, फिर वो इंसर्ट करना था, तो पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था। बीच में जो गैप है वो बराबर एडजस्ट करके उसमें कमर्शियल इंसर्ट करना टेप में, ये काम में माहिर था।
0: बहुत मुश्किल काम था।
1: मुश्किल काम था
0: जी, जी।
1: तो आगे का और प्रोग्राम पीछे का प्रोग्राम कुछ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बीच में वो इंसर्ट करना है कमर्शियल। कभी कभी एब्रप्ट कट होता था गाना, तो उसको फेड आउट करना है। तो फेड आउट करने के लिए हम क्या करते थे, एक पेन लगाते थे हेड के पास, वो धीरे धीरे टेप हेड के नजदीक लेके जाते थे, वो फेड आउट का इफेक्ट उसमें आ जाता था।
0: अच्छा जी। तो पिछले 90 वर्षों में आकाशवाणी की तकनीक में जो बदलाव आए हैं उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले शॉर्ट वेव, मीडियम वेव ज्यादा थे, धीरे धीरे एफएम का जमाना आया है, डिजिटल रेडियो का जमाना आ गया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं?
1: जैसे इस ट्रांसमीटर में बदलाव आ गए वैसे स्टूडियो में भी आ गए। मैं जने जब ज्वाइन किया था तभी वॉल टाइप के कंसोल थे, वॉल टाइप की मशीन्स थी, तो पहला हमारा मेंटेनेंस का काम वही था, सुबह सुबह आते ही पहला वॉल निकाल के उसका बेस साफ करना
0: जी।
1: फिर हाइब्रिड मशीन्स आ गई जो आईसी बेस थी, जैसे मेल्ट्रॉन के CTR CTD थे
0: जी,
1: वो आ गए, टेप पे ही रिकॉर्डिंग होता था वो जमाने में। फिर डिजिटल रिकॉर्ड आ गए, जैसे OB रिकॉर्डर आ गए थे, डिजिटल रिकॉर्डर, और मेमोरी कार्ड में हम उसमें रिकॉर्डिंग करते थे। कंसोल में भी परिवर्तन आ गए, पहले एनालॉग थे सारे, फिर डिजिटल आ गए। एनालॉग में वो केबल का प्रॉब्लम होता था, सोल्डरिंग का प्रॉब्लम होता था, वो सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए अब।
0: बिल्कुल।
1: और कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग आ गई। जब ये सारे बदलाव थे वो हर बदलाव में मेरा इंस्टॉलेशन था, हर टाइप के इक्विपमेंट, ये जो अभी विविध भारत में आप जो इक्विपमेंट देख रहे हैं सारे मैंने इंस्टॉल किए हुए
0: जी, हैं। अच्छा।
1: पहले जमाने में जो विविध भारती थी 36 स्टेशन थे CBS के ऑल ओवर इंडिया, तो टेप डुप्लीकेशन होता था, एक मास्टर टेप बनता था रिकॉर्डिंग का और उसके 40 कॉपीज बनती थी, और वो 36 जो CBS स्टेशन थे
0: ऑल ओवर इंडिया
1: वहां भेजे जाते थे। उसके पहला उसका स्पॉट चेकिंग होता था, हर टेप का स्पॉट चेकिंग होता था, वो इंजीनियर का काम था। वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, लेवल का प्रॉब्लम है, या किसी अनाउंसमेंट में प्रॉब्लम है, तो वो रिजेक्ट होता था। अगर वो सब सही है तो आगे CBS स्टेशन में बाय पोस्ट भेजा जाता था।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए प्रोग्राम एक एक महीना पहले बन जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: यहाँ आने के बाद, बोरीली में आने के बाद, ये चर्चगेट की बात बता रहा हूँ।
0: अच्छा।
1: बोरीली में आने के बाद यहाँ अर्थ स्टेशन इंस्टॉल हो गया, सैटेलाइट अपलिंकिंग, तो करोड़ों रुपए का जो खर्चा था वो सब बच गया। खरीदना, वो भेजना, पोस्टेज का खर्च, उसके लिए मैन पावर लगती थी, वो सब खत्म हो गया। और यहाँ अर्थ स्टेशन आने के बाद यहाँ से अपलिंकिंग चालू हो गया, पहले लाइव नहीं था, तो यहाँ लाइव ट्रांसमिशन चालू हो गया। फिर कंप्यूटराइजेशन चालू हो गया 2000

0: 2002 में, और उसमें भी मुझे चुना गया था इंस्टॉलेशन के लिए।
1: जी
0: तो उस कंप्यूटराइजेशन तो हो गया, लेकिन जो हमारे गाने हैं, पुराने प्रोग्राम है, वो तो सारे टेप में थे या रिकॉर्ड्स में थे।
1: रिकॉर्ड्स में थे,
0: तो उसको कंप्यूटराइजेशन करना था, वो बड़ा काम था,
1: बहुत बड़ा।
0: तो उसके लिए मैंने इनिशिएट किया। फिर हमारे जो प्रोग्राम हेड थे वो टाइम के, उन्होंने मेरा आइडिया पसंद आया, क्योंकि वो टाइम स्टूडियो वगैरह कुछ फ्री नहीं थे, बहुत काम होता था, बहुत रिकॉर्डिंग होती थी, दो दो शिफ्ट में रिकॉर्डिंग होती थी वो टाइम। तो मैंने उनको सुझाव दिया, हमारे पास तो वो भी रिकॉर्डर है ही, तो वो भी रिकॉर्डर से हम लाइब्रेरी में बैठेंगे, हमारे एक इंजीनियर बैठेगा और वहाँ धीरे धीरे एक एक टेप वहाँ से रैक से निकालेगा, वहीं से वही ट्रांसफर करेगा।
1: जी।
0: तो एक हमने कंप्यूटर प्रोवाइड किया और एक वो भी रिकॉर्डर जो यूपीटर था वो टाइम का, वो प्रोवाइड किया और एक एक टेप लगा के हमने वो ट्रांसफर करना चालू हो गया। हमारे डीडीजी थे AK श्रीवास्तव जी,
1: जी
0: वो एक्सपर्ट थे बहुत सॉफ्टवेयर में, तो उन्होंने एक ट्विन प्लेयर नाम का एक प्लेयर डेवलप किया था।
1: ट्विन प्लेयर जी, उसपे काफी आपके बारे में सुना है कि आपने ट्विन प्लेयर पर काफी काम किया है, उसके बारे में हमें बताइए।
0: तो उसमें दो प्लेयर थे, एक्चुअली वर्चुअल प्लेयर थे, और दो साउंड रिकॉर्डर से दो अलग अलग आप सोर्स से उसको कनेक्ट कर सकते थे, दो अलग आउटपुट ले सकते थे उससे, और उसका खर्चा कुछ भी नहीं था, जीरो खर्चा।
1: अच्छा जी।
0: और फेडरस्टार्ट था वो, और उसके बारे में हमें अवार्ड भी मिला। उसके पहले भी एक अवार्ड मिला, एक हेड हमने बनाया था मेल्ट्रॉन का।
1: अच्छा।
0: वो लोकली हेड था, क्योंकि वो टाइम का जो मेल्ट्रॉन का हेड था वो 25,000 रुपीज में मिलता था, और वो भी डॉलर में। तो हमने यहाँ बनाया था 750 रुपए में, सारे पैरामीटर।
1: अच्छा।
0: पैरामीटर सब मैच करके सेम हेड हमने 750 रुपए में यहाँ बनाया था, उसके लिए भी अवार्ड मिला था। तो दो अवार्ड टेक्निकल एक्सीलेंस के मुझे मिले हैं,
1: जी।
0: और शायद इस क्षेत्र में मैं एक ही रहूं
1: जी,
0: रहा हूं।
1: अरे
0: दोनों अवार्ड मुझे मिल गए
1: जी, तो इसके लिए तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज हमारे श्रोता आपको सुन रहे होंगे, उन्हें भी एक नई जानकारी मिली है कि माइक के पीछे काम करने वाले कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं जो सामने नहीं आ पाते हैं।
0: वो टाइम का माहौल ही ऐसा था कि हम एक फैमिली थी, विविध भारतीय फैमिली थी, हम घर में कम रहते थे, ऑफिस में
1: ज्यादा रहते थे।
0: वो एक टीम बनती थी, एक ट्रेक, स्पेक्स, अनाउंसर और इंजीनियर, जो भी रिकॉर्डिंग है कुछ भी है, टीम वर्क होता था वो टाइम। और इसलिए जो प्रोग्राम जो विविध भारती के बने ना, वो अच्छे बने सारे। विविध भारती हमारी दूसरी फैमिली ही थी, दूसरा घर ही था। एक बार जब ये सैटेलाइट अपलिंकिंग जो स्टेशन है, कैप्टिवर स्टेशन जिसे बोलते हैं, वहाँ पे आग लगी थी, और आग कहाँ से शुरू हुई पता ही नहीं चल रहा था। तो मैं अंदर घुस गया था फायर एक्सटिंग्विशर लेके, और पूरी आग बुझाई थी, 20 से 22 फायर एक्सटिंग्विशर लगे थे, और मैं पाँव में पकड़ के वो फायर एक्सटिंग्विश किया था। वो पैरों में अभी भी तकलीफ है, वो पाँव का वहाँ का सेंसेशन उस स्पॉट का मेरा गया हुआ है।
1: दिलीप साहब, इतने वर्ष आपने आकाशवाणी में काम किया,
0: मोर देन 37 ईयर सर्विस हो गई है आकाशवाणी में
1: जी।
0: उसमें 33 साल मैंने विविध भारती में गुजारा
1: जी। और इन 33 सालों में हमने आपके बारे में ये भी जाना कि आप तकनीकी विभाग में रहते हुए प्रोग्राम साइड में बहुत रुचि लेते थे, और अपनी राय बाकायदा बताए करते थे, और उसे माना जाता था। तो ये जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, ये जो रुझान था, ये कैसे पैदा हुआ?
0: उसका तो सारा श्रेय वो टाइम के इंजीनियरिंग हेड, प्रोग्राम हेड, और हमारे जो प्रोग्राम सेक्शन के जो लोग हैं उनको तो देना ही चाहिए कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। जो रहते हैं ना, एक सेक्शन अलग रहता है, प्रोग्राम सेक्शन अलग रहता है, इंजीनियरिंग सेक्शन अलग रहता है, वैसा विविध भारती में कुछ नहीं
1: था।
0: मिलजुल के सब रहते थे। पहले से माहौल ही ऐसा था कि जो एक प्रोग्राम बनाना है वो एक इंजीनियरिंग सेक्शन और प्रोग्राम सेक्शन मिलके ही बनाना है।
1: एक टीम वर्क था
0: पहले से ही माहौल था। वो मैं खुद एडिटिंग करने लगा।
1: अच्छा।
0: तो जो भी मैं रिकॉर्डिंग करता था उसका एडिटिंग मिक्सिंग भी मैं ही करता था।
1: अच्छा।
0: APC बनता है, फिक्स पॉइंट चार्ट, उसमें भी मुझे बुलाया जाता था।
1: बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बात है सर कि एक इंजीनियर साइड के आदमी को प्रोग्राम साइड में बैठाया जाए, पूछा जाए, उनकी राय ली जाए, और वो बराबर की सहभागिता रखे। हमारे श्रोता इस समय आपको सुन रहे होंगे, उन्हें भी लग रहा होगा कि किस तरह से काम होता है आकाशवाणी के अंदर।
0: जी जी, लोगों को सिर्फ प्रोग्राम देखता है, उसके पीछे क्या चल रहा
1: है, जो टीम वर्क एक मिलकर काम करता है, पीछे एक पूरा परिवार लगा होता है कार्यक्रम पहुंचाने के लिए, वो बहुत बड़ी बात है।
2: ये था सेवानिवृत्त सहायक निदेशक श्री दिलीप कुलकर्णी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले सोमवार को। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
3: स्मृतियों के स्वर।

आपने ट्यून किया है विविध भारती का मुंबई केंद्र। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर फिल्म की होती है एक कहानी, और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी, मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमाया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स से। इसे गाया है ज्योति नूरा ने, गीत लिखा राज शेखर ने, संगीत कृष्णा सोलो का है।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए तुम बिन टू का गाना, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। इस गाने को लिखा मनोज मुंतशिर ने, संगीत अंकित तिवारी का है।

0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा है। पार्टी असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं पुदुचेरी में एनडीए ने सत्ता बरकरार रखी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की टीवी के पार्टी ने शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की है। 5 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीट जीती है। एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 294 सीटों में से 208 सीट पर बढ़त बना ली है और इनमें से 148 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत भी हासिल कर लिया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और इनमें से 54 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई है। वाम दल को 1 सीट मिली है और 1 सीट पर आगे है। अन्य को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रहे हैं। नंदीग्राम सीट से भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 101 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 22 सीटों पर बढ़त मिली है और इनमें से वो 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालकुबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने जोरहाट सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को हराया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरकर इतिहास रचने जा रही है। टीवी के 107 सीटों पर आगे है और इनमें से वो 84 सीटें जीत भी चुकी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी दल 74 सीटों पर आगे हैं और इनमें से वो 51 सीट जीत चुके हैं। एआईएडीएमके और उसके सहयोगी दल 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, इनमें से 35 सीट जीत चुके हैं। पीएमके 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तमिलनाडु में चेन्नई से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। जी सुशील, विजय की टीवी के पार्टी की अप्रत्याशित जीत की प्रमुख वजह क्या रही?
1: देखिए लवलीन, जो विजय को सफलता मिली है, उनकी पार्टी टीवीके को सफलता मिली है, ऐसी किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को कम से कम चुनाव परिणामों से पहले तक उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से युवाओं के बीच विजय का क्रेज था, उनकी एक ब्रांड इमेज सोशल मीडिया पर वो जिस तरीके से वायरल हो रहे थे और खासतौर पर जिस तरीके से तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर थे, जिसमें 14 लाख से ज्यादा पहली बार बने वोटर थे, यानी जेंजी हम कह सकते हैं, तो युवाओं का एक जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ उन्हें दिख रहा है। इसके अलावा जो जयललिता के निधन के बाद एक तरीके से एक सिनेमाई करिश्मा की उम्मीद तमिलनाडु के वोटरों को हमेशा रही है, सिनेमा के लोगों को उन्होंने हमेशा हाथों हाथ लिया है, चाहे एमजीआर की बात हो या फिर जयललिता की बात हो, तो एक लंबे वक्त तक सिनेमा के प्रति यहां के वोटरों का आकर्षण रहा है और वो इमेज और पुख्ता हुई है विजय के आने के बाद। तो एक तरीके से उन्हें जबरदस्त समर्थन युवा वर्ग से भी मिला और खासतौर पर जो एंटी इनकम्बेंसी यानी जो सत्ता के विरोधी मत थे, उनमें भी उन्होंने एक बड़ी संख्या में मतों को हासिल किया। हम जानते हैं कि 5 साल से ज्यादा जो है सरकार दोबारा रिपीट होने का यहां पर चलन नहीं रहा है, तो

0: चरण को देखते हुए डीएमके के खिलाफ जो वोट थे, एंटी इनकम्बेंसी जो वोट थे, वो बड़ी संख्या में उनके पक्ष में गए हैं। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया है और जबरदस्त सफलता हासिल की है। जी लवलीन,
1: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उधर केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है, जो सत्ता में उसके निर्णायक वापसी का संकेत है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने 22 सीटें जीत ली हैं। पूरे राज्य में गठबंधन की स्थिति मजबूत है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं, 4 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। कुल 30 सीटों में से 28 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की AINRC ने 12 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। AIADMK को 1 सीट मिली है, कांग्रेस को 1 सीट मिली है, DMK को 5 सीटें मिली हैं। असम से अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश टोले से। जी राकेश, असम में एनडीए उम्मीदों के अनुरूप लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, यही दर्शाता है कि लोगों ने उनके कार्यों पर विश्वास बनाए रखा है।
2: जी, 2026 के असम विधानसभा चुनाव परिणाम राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। देखिए, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की 102 सीटों के साथ प्रचंड जीत के पीछे मजबूत नेतृत्व, राजनीतिक गठबंधन प्रबंधन और विकास के साथ पहचान की राजनीति के संतुलित उपयोग जैसे कई प्रमुख कारक रहे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा इस जीत के केंद्रीय सूत्रधार के रूप में उभरे। इस जीत में लक्षित कल्याणकारी नीतियों की भी अहम भूमिका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े पुलों का निर्माण, सड़क संपर्क में सुधार और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना ने डबल इंजन सरकार की कार्य क्षमता को जमीन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। अवैध घुसपैठ को रोकने और जनसंख्या संतुलन से जुड़े मुद्दों को उठाने की राजनीति मतदाताओं के बीच गहराई से प्रभावी रही। जी
1: धन्यवाद राकेश जानकारी के लिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज का दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
1: श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
3: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है।
3: आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, आज माँ गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी NDA सरकार है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदान के रिकॉर्ड बने और महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही।
3: पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है।
1: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा और एनडीए पर भरोसा जताने और समर्थन देने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं के बलिदान, संघर्ष

0: संघर्ष और शहादत का परिणाम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरलम के लोगों को निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केरलम में प्रतिभा है, क्षमता है और यूडीएफ सरकार इन दोनों का सदुपयोग करेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एम ए बेबी ने कहा है कि पार्टी केरलम में जनता के फैसले का सम्मान करती है और राज्य में हार के कारणों का आत्मनिरीक्षण करेगी। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 356 अंक बढ़कर 77,269 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 122 अंक बढ़कर 24,119 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 95.08 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग ने बदलती परिस्थितियों का विश्लेषण और समझ विकसित कर ली है। उन्होंने कहा कि देश की तैयारी हमेशा अद्यतन उच्च स्तरीय तथा मानक के अनुरूप रहती है और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने मूगा रेशम उत्पादन में मिजोरम को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। श्री सिंह ने दिन में आइजोल के रेमाबॉक क्षेत्र में स्थित सेरिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने रेशम कताई फैक्ट्री का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने बताया कि मिजोरम को मूगा रेशम उत्पादन में अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। UPI दुनिया के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है। UPI से अप्रैल के महीने में 22 अरब 35 करोड़ लेनदेन किए गए। ये 11 अप्रैल 2016 को अपनी शुरुआत के एक दशक बाद दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बन गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत और जमैका के घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों ही ग्लोबल साउथ के विकासशील राष्ट्र होने पर गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों ने वैश्विक समुदाय में अपनी अलग पहचान बनाई है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत उत्सवों, खेलों और मुश्किलों के हर पल में जमैका के साथ खड़ा रहा है। प्रसार भारती के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आज नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्हें पिछले सप्ताह प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले श्री जोशी मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुंबई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 179 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने इस वर्ष होने वाली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान आयोजन के संबंध में योजना बनाने और समन्वित क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भारी जनादेश के साथ इतिहास रचा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। पुदुचेरी में NDA ने सत्ता बरकरार रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। जीत का श्रेय देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने केरलम में शानदार जीत दर्ज की। अभिनेता से राजनेता बने विजय की। TVK पार्टी ने तमिलनाडु में शानदार प्रदर्शन के साथ राजनीति की शुरुआत की। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। NCP की सुनेत्रा पवार ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। और चुनाव परिणामों से घरेलू शेयर बाजार में उत्साह का माहौल। सेंसेक्स 356 अंक बढ़ा और निफ्टी 24,100 अंक के पार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दिली धड़कन, आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म राजकुमार के इस गाने के साथ। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने। गीत लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: छाया गीत लग जा गले। हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: मनाली
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के
2: आप खाए थाली में को दे प्याली में।
3: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज बात करते हैं पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी के बारे में। यही है हमारी आज की

इनका जन्म हुआ 18 जुलाई 1945 को पश्चिम बंगाल के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में। गाने का शौक बचपन से ही था, सो परिवार ने भी इस कला को बढ़ावा दिया। उस समय इनकी उम्र लगभग 14 या 15 साल की रही होगी, जबकि इन्होंने ऑल इंडिया म्यूजिक टैलेंट प्रोग्राम में गाना गाने का फैसला किया और इन्हें मौका मिल भी गया। और तभी तालियों और वहां मिली प्रशंसा ने मन में ये ख्वाहिश जगा दी कि एक दिन मुझे भी हिंदी सिने संगीत में अपना वही मुकाम बनाना है जो लता मंगेशकर का है।

0: बहुत कम उम्र में ही आरती मुखर्जी ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तालीम लेनी शुरू कर दी और उसी का नतीजा था कि आरती मुखर्जी ने जीता मेट्रो मर्फी कॉन्टेस्ट। अब इस प्रतियोगिता की एक खासियत ये थी कि इसे जज कर रहे थे उस जमाने के नामचीन संगीतकार अनिल बिस्वास, नौशाद, वसंत देसाई और सी रामचंद्र। बस यहीं से आरती मुखर्जी के पार्श गायन के क्षेत्र में जाने का रास्ता बन गया और 1958 में आरती मुखर्जी को पहला ब्रेक मिल भी गया। फिल्म मीना कुमारी अभिनीत थी, नाम था सहारा।
1: कन मटकन दही चटो कन धम्मड़ दुस्सा फूट गुस्सा कड़वी कड़वी बात बुलाना मैया से नहीं गाल फुलाना तू मेरा बेटा मैं तेरी मैया हंसते हंसते किशन कन्हैया। बिल्ली बजाए बाजा गाए चुहियों का राजा।

0: आए चूहियों का राजा, नाचे बंदरिया लहंगा डाल के।
1: इस फिल्म के संगीतकार थे हेमंत कुमार, लेकिन बदकिस्मती से फिल्म का संगीत कुछ खास चला नहीं। उसके बाद 1959 में एक बार फिर मीना कुमारी की ही फिल्म थी दो दिल चार राहें। 1961 में एक और फिल्म मिली। इस फिल्म की हीरोइन थी मधुबाला और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था बॉयफ्रेंड।

पहुंचते पहुंचते आरती मुखर्जी को ये बात समझ में आ गई कि हिंदी सिने संगीत के क्षेत्र में इस समय अपने लिए एक अलग जगह बनाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि वो समय लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी पूर्व स्थापित गायिकाओं का करियर का पीक का टाइम था। लिहाजा आरती मुखर्जी ने एक बड़ा ही समझदारी का निर्णय किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान बांग्ला फिल्मों की तरफ लगा दिया और इसका बड़ा पॉजिटिव असर भी हुआ। 70 के दशक तक आरती मुखर्जी बांग्ला फिल्म संगीत की टॉप की सिंगर में शुमार रहीं। यहाँ उन्होंने बांग्ला फिल्मों की तमाम टॉप हीरोइंस के लिए अपनी आवाज दी। शर्मिला टैगोर, संध्या, अपर्णा सेन, देवश्री राय, तनुजा, सभी के लिए आरती मुखर्जी ने गाने गाए। और सिर्फ बांग्ला ही नहीं, उड़िया, असमी, गुजराती और मणिपुरी भाषा के गीतों को भी सफलतापूर्वक आरती मुखर्जी ने गाया। सन 70 से 80 के बीच का समय आरती मुखर्जी की सफलता का समय था, और इसी समय यानी 1975 में आरती मुखर्जी को एक ऐसी हिंदी फिल्म मिली जिसने हिंदी सिने संगीत में भी आरती मुखर्जी का नाम स्थापित कर दिया। फिल्म थी गीत का।

गीत गाता चलका ये गीत भी अन्य गीतों की तरह मकबूल हुआ। राशि प्रोडक्शंस की फिल्म थी, संगीतकार थे रविंद्र जैन। इसी प्रोडक्शन हाउस की अगली फिल्म तपस्या, जिसे एक बार फिर रविंद्र जैन ही स्वरबद्ध कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक बार फिर आरती मुखर्जी को एक गीत दिया और इस बार गाना था किशोर कुमार की आवाज़ में और फिल्म थी तपस्या।

ये गीत भी संगीत प्रेमियों ने खूब सराहा। अब आपको ये भी बता दें कि हिंदी फिल्म संगीत जिसे छोड़कर आरती मुखर्जी चली गई थी, उसी के एक हिंदी गीत ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलाया। लेकिन उस गीत से पहले एक और हिट गाना आपको सुनवाते हैं आरती मुखर्जी ने, जिसे मोहम्मद रफी साहब के साथ गाया 1965 में, और उसे भी आपने बेहद सराहा था। सुनिए दो दिल फिल्म का ये गाना।

तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय पुरस्कार की। बात उन दिनों की है जबकि आरती मुखर्जी को लगभग सभी भाषाओं में गीत गाने के मौके मिल रहे थे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 70 से 80 का दशक आरती मुखर्जी की सफलता का दशक था, तो हिंदी फिल्मों के गीत भी उस समय मिल रहे थे, हिट हो रहे थे। उसी दौरान 1983 में आरती मुखर्जी से राहुल देव बर्मन ने अपनी फिल्म मासूम के लिए एक गीत गवाया। ये था वो।

0: पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले, शोध आलेख और स्वर आपके दोस्त अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, छाया गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

इन बहारों में, इन नजारों में खो गए हैं साथ तुम्हारे। दिल में जो समा बांधा है दिल ने, देखते रह गए हैं नैन हमारे।

नींदे उड़ चली है आंखों से, जाने कैसे बदला है समा। देकर के दर्द दिल हमी से पूछते हो, दिल है कहां और दर्द है कहां।

0: अरे आ जरा आ लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा
1: बस तुम्ही से रोशन है मेरे अफसाने का नाम, क्या नहीं मालूम तो जान लो। सुन के पुकार आ गए हैं जान हथेली पर लेके, अब तो दीवाने का कहा मान लो।

हर सू दिखाई देते हो अब आसमानों में, चांद तारों में, प्यार भी तू बाहर भी तू, नजर में है और तू ही नजारों में।

0: छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया जयंत के साथ, अब इजाजत दीजिए।
1: देखो टर्मरे

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

ये विविध भारती का मुंबई केंद्र है। एफएम 102.8 मेगाहर्ट्ज पर हे विविध भारती मुंबई केंद्र है। रात्रीचे 11 वाजले आहेत। आमची आजची सभा इथे समाप्त होत आहे। पुढे भेटूया उद्या पहाटे याच मीटर्सवर। तोपर्यंत अनुमती द्या। शुभरात्री। जय हिंद।